ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के श्रावण मास की तिथि 3, तदनुसार 25 जुलाई सन 2026। इस समय स्टूडियो की घड़ी में 5:58 हुए हैं। हमारी आज की सभा आरंभ होती है। हम सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत करते हैं।

ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: ले कोई हटकंडे अपनाना ठीक नहीं होगा।
1: अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं, हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
2: सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। NTA ने महाप्रबंधक स्तर पर वरिष्ठ पेशेवर पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए हैं। संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिभा सेतु पोर्टल द्वारा 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। NTA ने बताया कि ये उपाय एजेंसी के संस्थागत पुनर्निर्माण की दिशा में पहला ठोस कदम है, जिसे प्रोफेसर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुरूप लागू किया जा रहा है। NTA ने संविदा आधार पर महाप्रबंधक के 4 पदों के लिए अधिसूचना जारी की है। इनमें से प्रत्येक की प्रारंभिक अवधि 3 वर्ष की होगी। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी CJP के प्रतिनिधिमंडल से वार्ता की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल CJP के प्रवक्ता आशुतोष राका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी 2 मांगों पर सहमति दे दी है। दिल्ली पुलिस ने परीक्षा संबंधी पेपर लीक और अन्य अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल STF का गठन किया है। ये कार्यबल लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत आता है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर लगातार हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के अपार समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त किया है। वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामले की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंटक्कल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रोमानिया की बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। ये सम्मान उन्हें विशिष्ट सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता और भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए दिया गया। राष्ट्रपति ने सम्मान स्वीकार करते हुए इसे भारत की जनता को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि ये सम्मान दोनों देशों के लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 190 किलो भार उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया। और भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा T20 मैच आज शाम 4:30 बजे से हरारे में खेला जाएगा। भारत 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। टीम ने पहले मैच में 7 विकेट से जीत दर्ज की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। अब समय हो गया है कार्यक्रम वंदन वार का, जिसे हम विविध भारती के मुंबई केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और सख्त सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संसद भवन परिसर में मंत्रिमंडल की बैठक में इस मसौदे को स्वीकृति दी गई। ये विधेयक अगले सप्ताह संसद में पेश किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के

आज का चिंतन। महात्मा बुद्ध का कथन है, क्रोध में हजार शब्द बोलने से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाए। ये था आज का चिंतन।

ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। झरोखा के अंतर्गत आपको बता दें कि हमारे केंद्र से आज कौन कौन से कार्यक्रम किस समय पर प्रस्तुत किए जाएंगे।

6:45 पर लेकर हाजिर होंगे संगीत सरिता, 7 बजे सुनना ना भूलिएगा कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, हम है राही प्यार के, ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा 7:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ठीक 8 बजे लेकर हाजिर होंगे समाचार प्रभात, 8:15 ये समय रहेगा कार्यक्रम त्रिवेणी का चित्रलोक, ये कार्यक्रम सुन सकते हैं आप 8:30 पर, और 9:30 पर देश और दुनिया

की ताज़ा तरीन खबरों से करवाएंगे आपको रूबरू कार्यक्रम आज का अखबार में। ठीक 10 बजे हिंदी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। फिल्मी संगीत पर आधारित कार्यक्रम सफर सुरीला सा लेकर हाजिर होंगे 10:05 पर, और आपका पसंदीदा कार्यक्रम पॉप टाइम 10:30 पर लेकर हाजिर होंगे।

11 बजे आप सुनेंगे म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस कार्यक्रम, जो आपकी फरमाइश पर आधारित रहता है। 12 बजे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रस्तुत किए जाएंगे। यादों की महफिल, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 12:05 पर। प्रादेशिक हिंदी समाचार हमारे केंद्र से प्रस्तुत किए जाएंगे 1:05 पर और 1:10 पर। आकाशवाणी के जालंधर केंद्र से प्रादेशिक पंजाबी समाचार आप सुनेंगे 1:15 पर। आप आनंद उठाएंगे फिल्म संगीत का, और 1:30 ये समय रहेगा सुरीला सफर का।

दो बजे आप सुन सकते हैं कार्यक्रम त्रिवेणी। हिंदी में समाचार एक बार फिर लेकर हाजिर होंगे। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रस्तुत किए जाएंगे 2:15 पर। आनंद उठाएंगे कार्यक्रम सदाबहार नगमे का 2:30 पर। मन चाहे गीत आप सुन सकते हैं 3 बजे। और 3:30 पर नाट्य तरंग। 4 बजे पिटारा के अंतर्गत बॉम्बे टॉकीज प्रस्तुत किया जाएगा। 5 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। और 5:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम लम्हे। 5:30 ये समय रहेगा सुहाना सफर आकाशवाणी के संग कार्यक्रम का। छह बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार प्रस्तुत किए जाएंगे। प्रादेशिक हिंदी समाचार 6:10 पर और आकाशवाणी के जालंधर केंद्र से 6:20 पर प्रादेशिक पंजाबी समाचार आप सुन सकते हैं। पंजाबी गीतों का आनंद आप उठाएंगे 6:45 पर। और इसके साथ ही इसके ठीक बाद प्रायोजित कार्यक्रम ऑर्गेन इंडिया आपके लिए लेकर हाजिर होंगे। 7 बजे जयमाला आप सुनेंगे। 7 बजे आप सुनेंगे विशेष जयमाला। पंजाबी गीत आपके लिए लेकर हाजिर होंगे 7:47 पर। 8 बजे हवा महल और आपके लिए कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे 9 बजे। आज के फनकार 9:30 पर। और छाया गीत सुनना ना भूलिएगा 10 बजे। सुर सांझ 10:32 पर। तो ये हैं आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम और उनका प्रसारण समय।

शबरी के प्रेम और भक्ति से प्रसन्न होकर श्री राम ने उसे नवधा भक्ति का उपदेश दिया। भक्ति जिसके अभाव में जात पात कुल धर्म धन ऐश्वर्य सभी निरर्थक और निष्फल होते हैं। इस प्रकार जो गति

के लिए भी दुर्लभ होती है वो शबरी को सहज ही प्राप्त हो गई। क्या उसे जनक नंदिनी सीता का कुछ अता पता है? श्री राम के इस प्रश्न के उत्तर में शबरी उन्हें पंपा नामक सरोवर जाने का परामर्श देती हैं, जहां उनकी भेंट होगी धीर बुद्धि वाले वानर राज सुग्रीव से। श्री राम लक्ष्मण पंपा सरोवर की ओर चलते हैं। अतुलनीय शोभा युक्त वन में सभी जीव जंतु पशु पक्षी अपने जोड़े के साथ विचरण कर रहे हैं, ये देखकर उनका मन क्षुब्ध हो जाता है। राम लक्ष्मण को देखकर हिरण भागने लगते हैं तो हिरनिया मानो उन्हें आश्वस्त करती हैं कि तुम्हें भयभीत होने का कारण नहीं, क्योंकि तुम साधारण हिरण के वंशज हो। ये लोग तो सोने का मृग खोजने आए हैं।

0: रेडियो की तरह। कार्यक्रम की इस श्रृंखला में आज हम आपको सुनवा रहे हैं सिने जगत के सुप्रसिद्ध संगीतकार, गीतकार और गायक रविंद्र जैन से प्रसिद्ध लेखक और गीतकार राजेश जौहरी की बातचीत। आज प्रस्तुत है इस श्रृंखला की पांचवी कड़ी।
1: प्यारे दोस्तों, एक पंक्ति मुझे याद आती है, एक पंक्ति मतलब कुछ पंक्तियां मुझे याद आती हैं। कोश में यूं तो हजारों शब्द हैं, कोश को कविता कहा जाता नहीं है। काव्य उस अनुभूति का सम्यक प्रकाशन, बिन कहे जिसको रहा जाता नहीं है।
2: वाह।
1: शेक्सपियर ने भी कहा है, स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ कॉन्शियसनेस इज पोएट्री। प्यारे दोस्तों, रविंद्र जैन साहब का गायन पक्ष और संगीत निर्देशन का पक्ष जितना सशक्त है, उतना ही सशक्त है उनका लेखन। दादा एक बहुत अच्छे दर्जे के साहित्यिक प्रतिभाशाली कवि और गीतकार हैं। इनकी प्रतिभा में कई बातें जुड़ गई हैं। चूंकि दादा लिख नहीं पाते हैं, दृष्टि मंद है, फिर भी ईश्वर ने इनको इतनी संपदाओं और प्रतिभाओं से नवाजा है कि ये स्पॉन्टेनियस वहीं के वहीं तुरंत वातावरण और माहौल को महसूस करके कविता कह देते हैं। ऐसे कवि बहुत कम होते हैं। और मैं ये कहते हुए बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाऊंगा कि आज की श्रेणी के कवियों में रविंद्र जैन साहब कवि के रूप में बहुत ऊंचे हैं। आपके लेखन के बारे में आपके अनुभव के साथ कुछ जानना चाहते हैं।
2: मुझे साहित्यिक मेरी अभिरुचि बहुत, जैसे मैंने आपसे बताया, प्रारंभ से है
1: जी।
2: लिख कितना पाया हूँ वो तो नहीं कह सकता, लेकिन सुना बहुत अच्छा अच्छा है। हम थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखते हैं तो ऐसे ऐसे कवि हैं, ऐसे लोगों ने रचनाएं की हैं कि बस आदमी पढ़ता रहे। मैं ये मानता हूँ उम्र बहुत कम है ऐसी कलाओं को, ललित कलाओं के लिए, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम पढ़ लें, सुन लें, वही हमारी उपलब्धि है। मैं थोड़ा बहुत जो कहता हूँ वो, जैसा कि आपसे बताया, अलीगढ़, एक तो उसकी उसमें फाउंडेशन में अलीगढ़ मौजूद है, फिर कलकत्ते गया टैगोर का, उनको पढ़ा सुना बहुत,
1: साहित्य पढ़ा टैगोर
2: जी, बहुत अच्छे अच्छे वो तो क्या कहें, लाजवाब लोग हैं। आज आप कविता के किसी मोड़ पे खड़े हो जाइए, गुरुदेव आपको वहाँ मिलेंगे।
1: शिलालेख हैं वो लोग,
2: शिलालेख
1: बिल्कुल।
2: फिर वहाँ के कंपोजर काजी नजरुल इस्लाम और डीएल राय, बड़े बड़े बड़े विशेष लोग,
1: कमाल के लोग हैं ये।
2: जी जी। तो उन वहाँ से मैं मुझे जो गढ़ा गया है, उन सब चीज़ों ने गढ़ा है। तो मैं सिर्फ इतना कहता हूँ आज हम जो कुछ कहें, कम से कम ऐसा कहें कि उन लोगों को शर्मिंदगी ना हो, उनसे अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन उनको शर्मसार ना होना पड़े।
1: कितनी अच्छी बात कही आपने। हम चाहते हैं कि आपकी सृजन की हुई कुछ रचनाएं हम अपने श्रोताओं को सुनाएं।
2: अच्छा,
1: और आपके काव्यात्मक हुनर का भी दर्शन करें।
2: फिल्मों में तो आपने महसूस किया कि मैंने हमेशा उन गीतों की ऊंचाई देना चाहिए है, ऐसे लफ्ज लाया हूँ, संकेत है और इस तरह की, जल जल ना होता तो ये जग जाता जल,
1: जी
2: अलंकारों का भी प्रयोग है, सजना है मुझे सजना के लिए।
1: और बल्कि मैं यह यूं कहूंगा कि आपने फिल्म और साहित्य को बहुत नजदीक लाने की कोशिश की है, जिसमें आप सफल हुए हैं। तो कुछ अपनी रचनाएं आप
2: मैं आपको सुनाता हूं। एक पीछे एक मेरी किताब शाया हुई थी गजलों की
1: जी,
2: उजालों का सिलसिला, उसमें से एक गजल के दो तीन शेर आपको सुना रहा हूं।
1: इरशाद।
2: उफ ये सफर तवील, ये छालों का सिलसिला, उफ ये सफर तवील, ये छालों का सिलसिला, उफ ये सफर तवील, ये छालों का सिलसिला, उस पर मिजाज पूछने वालों का सिलसिला।
1: क्या बात है, वाह वाह।
2: उस पर मिजाज पूछने वालों का सिलसिला, हम ही ना अपनी कैद से बाहर निकल सके।
1: क्या बात है,
2: वरना कहाँ नहीं है उजालों का सिलसिला।
1: वाह वाह वाह वाह वाह।
2: वरना कहाँ नहीं है
1: उजालों का
2: सिलसिला, इंसान को सारी उम्र फिर आता है दर बदर, दो रोटियों का चारने वालों का सिलसिला।
1: क्या कहने, इसमें तो आपने पूरा दर्शन डाल के रख दिया दादा। वाह।
2: तो इसमें बहुत सारी गजलें हैं, नज़में हैं।
1: कुछ और इरशाद करें।
2: एक हिंदी की कुछ रचनाओं का संकलन
1: स्वागत है
2: अभी निकालना चाह रहा हूँ, उसमें से एक गीत आपको सुना रहा हूँ। और उस गीत की विशेषता यह है कि वो गीत मैंने, मेरी जीवन संगीनी दिव्या जो है वो इसी गीत से प्रभावित होकर जीवन में आई, सौदागर की रिलीज पे मुझे मिली थी, लेकिन उसके मेरा साहित्यिक पक्ष उसको बहुत पसंद था।

0: दादा आपके इतने सुंदर गायन और इतनी सुंदर शब्द रचना से ऐसा लगता है कि इस सृष्टि को बनाने वाला जरूर कहीं ना कहीं है जिसने आप जैसा प्रतिभा संपन्न कलाकार इस धरती पर उतारा। अच्छा, आपके लेखन के सफर में आगे चल रहे हैं तो आपने बहुत सी सांकेतिक भाषाएं और तुलनात्मक भाषाएं और अलंकार बहुत इस्तेमाल किए अपने गीतों में, जिससे संगीत का यानी फिल्मी संगीत का स्तर बहुत ऊंचा जा पहुंचा है। कुछ ऐसे गीतों के बारे में जानकारी दें जिसमें आपने कई उपमाएं और कई अलंकार इस्तेमाल किए हैं और कॉमर्शियली भी वो गाने बहुत हिट हुए हैं।
1: सबसे पहले वो सौदागर में आशा जी का गाया हुआ गीत सजना है मुझे सजना के लिए।
0: वाह वाह वाह, क्या उपमा है।
1: एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ। भूषण जो वीरस के कवि हैं आपने उनको जरूर
0: जी जी जी
1: पढ़ा होगा।
0: जी जी।
1: ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं।
0: वाह वाह।
1: तीन बेर खाती थी सो तीन बेर खाती है, नगन जड़ाती थी सो नगन जड़ाती है। तो इसी तरह का प्रयोग इस गीत में है।

0: आशा जी बहुत वर्सटाइल आर्टिस्ट हैं, हर तरह के गीत की गाने की आशा उनसे की जा सकती है। इसी तरह वो गीत गाता चल में ये है ना अपना उसका टाइटल सॉन्ग
1: गीत गाता
0: जल जो ना होता तो ये जग जाता जल।
1: वाह वाह वाह,
0: एक शब्द के दो अर्थ
1: निकलते हैं।

0: जब कोई गीतकार संगीतकार बनता है और जब कोई संगीतकार गीतकार बनता है तो वो रविंद्र जैन बन जाता है। दादा, आपके गीतों में, गीतों की पंक्तियों में शब्दों का इतना अच्छा फैलाव है, इतने अच्छे अर्थ हैं, गेयता के साथ साथ उनमें आध्यात्म भी स्वयं चला आता है जो आपके एक नहीं अनेक गीतों से जाहिर होता है। संगीत सरिता के प्यारे श्रोताओं, आज की इस कड़ी का सफर यहाँ समाप्त करते हैं और अगली कड़ी में रविंद्र जैन साहब के साथ आध्यात्मिक यात्रा पर निकलेंगे।
1: घुंघरू की तरह इस श्रृंखला में आज आपने सिने जगत के सुप्रसिद्ध संगीतकार, गीतकार और गायक रविंद्र जैन से प्रसिद्ध लेखक और गीतकार राजेश जौहरी की बातचीत सुनी।
2: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपाली।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
1: कार्यक्रम भूले बिसरे गीत लेकर आते हैं बस कुछ ही पलों में
2: कम समय में ज्यादा मुनाफा बस एक क्लिक में कमाल है
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए RBI कहता है
4: जानकार बनिए सतर्क रहिए
5: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वज्रतंती भारत का गम एक्सपर्ट

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

द एडवेंचर्स ऑफ रॉबिन हुड, इस फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे। योगेश ने इसे लिखा, जीएस कोहली का संगीत। प्रोग्राम में वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।

पैगाम फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल की आवाज में, हसन कमल ने इसे लिखा था। आज संगीतकार जीएस कोहली की पुण्यतिथि है। आज भूले बिसरे गीत में हमने आपको सुनवाए जीएस कोहली द्वारा संगीतबद्ध गीत।

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत है जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी हो गई। कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 27 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आँखों की आँखों में इशारा हो गया।
4: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बोले बिसरे गीत।

0: सेहतनामा 27 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आंखों की आंखों में इशारा हो गया।
2: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बोले बिसरे गीत।

0: भाभी की चूड़िया, ये था फिल्म का नाम। आशा भोसले मुकेश की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। मैंने नरेंद्र शर्मा ने इसे लिखा और सुधीर फड़के का संगीत था। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम भूले बिसरे गीत यही संपन्न होता है।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही, वीको टर्मर क्रीम। मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।

0: आप पहुंच गए।
1: फिल्म काला पानी से गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। मजरू सुल्तानपुरी ने से लिखा, एसटी बर्मन की तर्ज थी।

0: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
1: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
0: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
1: सच?
0: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
1: समझ गया।

फिल्म लूटमार से अभी आप ये गीत सुन रहे थे लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों में। अमित खन्ना ने इसे लिखा, राजेश रोशन का संगीत था। प्रोग्राम में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का।

0: हाँ ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
1: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
0: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
2: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
3: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हम है राही प्यार के।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हम है राही प्यार के। आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
0: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
0: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। सरकार ने पेपर लीक रोकने और कड़ी सजा के प्रावधान वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। संसद में अगले सप्ताह विधेयक पेश किए जाने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक रोकने के लिए प्रस्तावित सुधारों पर अपने वीडियो पर युवाओं से मिले सुझावों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। कहा, आपसी संबंध और अधिक घनिष्ठता के साथ आगे बढ़ेंगे। सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच आज नई दिल्ली में तीसरे दौर की वार्ता होगी। भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक जहाज एमवी ओमर्फी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। हमले में एक भारतीय नाविक की मौत। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा और ओडिशा के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पहला पदक मिला। झंडू कुमार वेट पैरा भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतें बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है।

0: श्री मोदी ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा।
2: अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
3: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू।
0: वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से जुड़ी मांगों को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज एक और दौर की बातचीत करेगी। इससे पहले कल भी नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी, जिसके बाद श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर सीजेपी की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया है। उन्होंने बताया कि सीजेपी ने तीन प्रमुख मांगे रखी हैं और पेपर लीक रोकने के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं।
4: बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः तीन डिमांड थी और पांच शामिल हुए।
0: दिल्ली पुलिस ने पेपर लीक और परीक्षा संबंधी अन्य अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल एसटीएफ का गठन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये कार्यबल लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत आता है।
5: दिल्ली पुलिस ने कहा है कि अलग अलग प्राधिकारियों की ओर से आयोजित होने वाली पब्लिक परीक्षाओं से जुड़े अपराधों की जांच तेजी से और पेशेवर तरीके से विशेष कार्यबल द्वारा की जाएगी। इनमें संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के साथ साथ केंद्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग और स्टाफ के भर्ती के लिए उनसे जुड़े हुए और अधीनस्थ कार्यालय शामिल है। जांच के अलावा विशेष कार्यबल मुकदमा चलाने वाली एजेंसियों के साथ बेहतर तालमेल भी बनाए रखेगी ताकि तेजी से मुकदमा चलाया जा सके और ये पक्का किया जा सके कि ऐसे मामलों में सुनवाई रोजाना हो। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। एनटीए ने महाप्रबंधक स्तर के वरिष्ठ पेशेवर पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित किए हैं। संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिभा सेतु पोर्टल द्वारा 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर लगातार हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 18 स्टेशन बंद हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
6: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आरजी आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रोमानिया के बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनकी विशिष्ट सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता तथा भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने सम्मान स्वीकार करते हुए इसे भारत की जनता को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों देशों के लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। राष्ट्रपति ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीकी परिवर्तन के इस युग में विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी है कि वे ये सुनिश्चित करें कि ज्ञान का मार्गदर्शन विवेक, नैतिकता और करुणा द्वारा किया जाए।
2: टुडे एज द वर्ल्ड इज बीइंग रिसीव्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड अदर रैपिड साइंटिफिक एडवांसेस, यूनिवर्सिटीज लाइक दिस हैज गिवन ग्रेटर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर दैट नॉलेज इज गाइडेड बाय विजडम, ethics and compassion. India's national education policy reflects this vision by promoting innovation, research, creativity and international academic collaboration.
1: भारत सरकार ने कहा है कि सिंधु जल संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान के उन मीडिया दावों को खारिज किया जिनमें भारत पर जानबूझकर बाढ़ लाने का आरोप लगाया गया था।
3: The recent increase in flows,
4: चेनाब नदी में जल प्रवाह में हालिया वृद्धि 20 से 23 जुलाई के दौरान जम्मू और आसपास के जलग्रहण क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश का परिणाम है। नदी के जल प्रवाह में वृद्धि एक प्राकृतिक जल वैज्ञानिक प्रतिक्रिया है और ये भारत द्वारा जानबूझकर किए गए किसी भी प्रयास का परिणाम नहीं है।
1: भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक पोत एमवी ओमोट्री पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। हमले को अस्वीकार्य बताते हुए भारत ने सभी संबंधित पक्षों से समुद्री नौवहन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 18 जुलाई को काला सागर से गुजरते समय पोत पर हमला हुआ। हमले में एक भारतीय नाविक की मृत्यु हो गई। पोत पर 3 भारतीय नागरिकों सहित चालक दल के 10 सदस्य सवार थे, अन्य 2 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने आज पुष्टि की कि मोजाम्बिक ध्वज वाले एलपीजी टैंकर दिशा पर ईरानी जल क्षेत्र में हुए हमले के बाद जहाज पर सवार भारतीय चालक दल के सभी 28 सदस्य सुरक्षित हैं। दूतावास ने आधिकारिक बयान में एलपीजी टैंकर से जुड़ी घटना की पुष्टि की और कहा कि चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वो स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में हैं। लद्दाख के द्रास में स्थित करगिल युद्ध स्मारक ऑपरेशन विजय में भारत की जीत की स्मृति में मनाए जाने वाले 27वें करगिल विजय दिवस के भव्य समारोहों की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: द्रास का कारगिल वॉर मेमोरियल 27वें कारगिल विजय दिवस समारोह के लिए पूरी तरह से तैयार है। शहीदों की याद में बनाए गए इस स्मारक को विशेष रूप से सजाया गया है। 2 दिवसीय समारोह का आगाज आज युद्ध संस्मरण, गौरव में संस्कृति और शौर्य संध्या जैसे कार्यक्रमों के साथ हो रहा है। कल 26 जुलाई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में श्रद्धांजलि समारोह में शामिल होंगे। द्रास कारगिल से आकाशवाणी समाचार के लिए मैं इनायत अली।
1: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दक्षिण आंध्र कर्नाटक और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी आज मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। राज्य में 1,15,000 से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या 61 हो गई है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता।

0: भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा टी20 मैच आज शाम 4:30 बजे से हरारे में खेला जाएगा। भारत के स्क्वाश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने कनाडा के ओंटारियो में विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। सेमीफाइनल में अनाहत ने मिस्र के बाब सामे को 3-1 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद कनक। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त किए जाने की खबर आज के अखबारों की पहली सुर्खी है। हिंदुस्तान ने इसे नीट को लेकर सरकार की बड़ी कार्रवाई बताया है। अमर उजाला लिखता है आक्रोश का असर, एनटीए से 47 अफसर बर्खास्त। नवभारत टाइम्स की हेडलाइन है पेपर लीक पर होगा 10 करोड़ रुपए जुर्माना, 10 साल की सजा। संशोधन बिल को कैबिनेट की मंजूरी, कड़ी सजा का प्रस्ताव। दैनिक जागरण कहता है कानून बदला कार्रवाई हुई फिर भी सीजेपी टस से मस नहीं, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अटकी बात। दैनिक भास्कर ने लिखा है कानून में संशोधन को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी, एनटीए में बदलाव की तैयारी। राजस्थान पत्रिका ने इसे बवाल थामने का प्रयास बताया है। नवभारत टाइम्स ने एनटी पेपर लीक बिल में संशोधन पर अपने संपादकीय में लिखा है सरकार तेजी से निर्णय लेकर छात्रों को यकीन दिलाने का प्रयास कर रही है कि उनकी आवाज अनसुनी नहीं रह गई है। पत्र लिखता है केंद्र द्वारा नीट में किए जा रहे सुधारों की सर्वोच्च न्यायालय लगातार निगरानी करेगा। छात्र अब मूलभूत बदलाव चाहते हैं और शीर्ष अदालत की निगरानी से इसमें मदद मिलेगी। सोशल मीडिया प्रसारण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जनसत्ता में सबसे ऊपर है। अनुमति के बिना कार्यवाही को पोस्ट करने पर रोक। लोकसत्य लिखता है सोशल मीडिया पर नहीं डाल पाएंगे कोर्ट की वीडियो। कक्षा 6 से 8 में कौशल शिक्षा अनिवार्य करने के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निर्देश को भी पत्र ने स्थान दिया है। अमरीका द्वारा भारत से आयातित वस्तुओं पर 10% शुल्क लगाए जाने को राजस्थान पत्रिका ने ट्रंप का नया दांव बताया है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने पेपर लीक रोकने और कड़ी सजा के प्रावधान वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। संसद में अगले सप्ताह विधेयक पेश किए जाने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक रोकने के लिए प्रस्तावित सुधारों पर अपने वीडियो पर युवाओं से मिले सुझावों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच आज नई दिल्ली में तीसरे दौर की वार्ता होगी। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पहला पदक मिला। झंडू कुमार ने पुरुषों के हेवीवेट पैरा भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। श्रोताओं अब आप सुनेंगे कार्यक्रम त्रिवेणी विविध भारती के मुंबई केंद्र से।
3: आइए सुने त्रिवेणी।

दोस्तों, आजकल दुनिया से भोलापन यानी मासूमियत जैसे गायब होती जा रही है। जरूरत पड़ने पर बहुत चालाक और बड़े व्यवहार कुशल लोग अपने भोलेपन का स्वांग जरूर रच लेते हैं, लेकिन जल्दी ही ओढ़ी हुई मासूमियत गायब हो जाती है। लेकिन हमारा तो ये कहना है कि उम्र के हर पड़ाव में थोड़ी मासूमियत, थोड़ा भोलापन बचा कर रखना चाहिए अपनी जिंदगी के लिए, क्योंकि जो मासूम है वो ही किसी से सच्चा प्यार कर सकते हैं, जो भोले हैं वही किसी की भलाई कर सकते हैं।

हाँ तो दोस्तों, बात चल रही थी मासूमियत की। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे मासूमियत गुम होने लगती है, लेकिन जो लोग छल प्रपंच से अपने को दूर रख पाते हैं, जो लोग दूसरों से कम नफरत करते हैं, जो लोग हर परिस्थिति में अपने आप को खुश रख लेते हैं, जो लोग हमेशा दूसरों में बुराई नहीं ढूंढते, जो लोग मन में कुछ और बाहर कुछ और वाला बर्ताव नहीं करते, वो लोग लंबे समय तक अपनी मासूमियत बचाए रखने में कामयाब हो सकते हैं। तो हमारा भी यही कहना है दोस्तों कि कितने भी हो जाइए समझदार, कितने भी हो जाइए चतुर और व्यवहार कुशल, लेकिन मन के किसी कोने में बचाए रखिए अपनी मासूमियत।

दोस्तों, बच्चों में एक किस्म का भोलापन होता है और इसे उम्र भर कायम रखना चाहिए, लेकिन आज ये भोलापन बच्चों में भी जैसे समाप्त हो रहा है। आजकल के बच्चे इतने सयाने, इतने व्यवहार कुशल और तेज हो गए हैं कि उतने किसी जमाने में नहीं थे। आजकल के बच्चे कम, सयाने ज्यादा लगते।

0: आठ फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
2: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती प्रोग्राम चित्रलोक, लेकर हाजिर होते हैं बस कुछ ही पलों में।
1: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है, घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करने लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस, ते करे हर काम एकदम तेजी नाल, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो, शर्तां लागू।

स्टूडेंट ऑफ द ईयर ये फिल्म का नाम था। शेखर राव जियानी, सलीम मर्चेंट, नीति मोहन और साथियों की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। विशाल शेखर का संगीत, अनीता दत्त ने इसे लिखा।

0: शाहिद माल्या को अभी आप सुन रहे थे, फिल्म का नाम था उड़ता पंजाब, अमित त्रिवेदी ने संगीत दिया था।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
3: और आ गया।
2: एक और आ गया।
3: जल्दी बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती से इस वक्त प्रोग्राम चित्रलोक, वक्त है एक छोटे से अंतराल का।
6: सूट साड़ी लहंगा व रेमंड सूटिंग के डायरेक्ट डीलर बग्गा सारीज नियर रेलवे स्टेशन अंबाला शहर, फोन 8950632224।

0: थाना पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
1: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
2: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
1: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
2: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
2: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
1: आकाशवाणी चंडीगढ़।

जावेद अली और बन ज्योत्सना की आवाज सुनिए गीत। अभी आप सुन रहे थे दे धनाधन, फिल्म का नाम था आशीष पंडित ने इसे लिखा और प्रीतम का संगीत था। दोस्तों आपको बता दें कि आज है वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे, यानी विश्व डूबने से बचाव दिवस। सन 2021 के दिन इसे मनाने की शुरुआत हुई थी और इस दिन का मुख्य उद्देश्य पानी में डूबने की घटनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना और जीवन बचाने के उपाय बताना है। और हमें खासकर छोटे बच्चों को, 5 साल से 14 साल के बच्चों को डूबने के खतरों के बारे में बताना चाहिए और उन्हें इससे बचाव के तरीके भी सिखाने चाहिए। विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम

0: आयुष्मान खुराना को आप सुन रहे थे। इस गीत में विकी डोनर फिल्म का नाम था। वक्त हो चला है छोटे से अंतराल का।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: हाँ, ये हेलमेट अच्छा है, सेफ है क्या?
3: चिंता मत कीजिए, इस हेलमेट पर ISI मार्क है।
2: और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये असली है?
3: BIS केयर ऐप से, जहाँ आपको ये इम्पोर्टेंट डिटेल एक ही क्लिक में मिल जाएगी।
4: बनिए जागरूक ग्राहक और कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी प्रामाणिकता चेक करने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।

0: मोहित चौहान को अभी आप सुन रहे थे तमाशा फिल्म से, इरशाद कामिल ने इसे लिखा और ए आर रहमान का संगीत।
1: कहीं दूर जब दिन ढल जाए,
2: मुकेश के गानों में है सादगी।
3: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल,
2: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
3: कहीं करती होगी मेरा।
2: हम सबके भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
3: जाऊं कहां बताए दिल।
2: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
3: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
2: आज के मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चित्रलोक।

0: आयुष्मान खुराना की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे, नौटंकी साला फिल्म का नाम था। वक्त है एक छोटी सी अंतराल का।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: श्रेया घोषाल और मोहित चौहान की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। किस्मत कनेक्शन फिल्म का नाम था। शब्बीर अहमद ने इसे लिखा। प्रीतम का संगीत।
1: कहीं दूर जब दिन ढल जाए।
2: मुकेश के गानों में है सादगी।
3: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल।
2: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
3: कहीं करती होगी
2: हम सबके भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
3: जाऊं कहां बताए दिल।
2: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
3: जिस देश में गंगा बहती है। जिस देश में गंगा बहती है।
2: आज के मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सुनो जी सुनो हमारी भी सुनो।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चित्रलोक।

हम्प्टी शर्मा की दुल्हन आई था फिल्म का नाम। अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। कुमार ने इसे लिखा और शारिब तुशी का संगीत।

0: ये जवानी है दीवानी इस फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे। इसके साथ ही आज का चित्रलोक प्रोग्राम यही संपन्न होता है। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है, घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करन ली स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलदा है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस ते करे हर काम एकदम तेजी नाल। यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो, शर्तां लागू।
0: श्रोताओ अब आप सुनेंगे कार्यक्रम आज का अखबार।
2: आज का अखबार कार्यक्रम के प्रायोजक हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स।
3: हाँ, ये हेलमेट अच्छा है, सेफ है क्या?
4: चिंता मत कीजिए, इस हेलमेट पर ISI मार्क है।
3: और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये असली है?
4: BIS केयर ऐप से, जहाँ आपको ये इम्पोर्टेंट डिटेल एक ही क्लिक में मिल जाएगी।
5: बनिए जागरूक ग्राहक और कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी प्रामाणिकता चेक करने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
2: आज का अखबार।
0: श्रोताओं आज का अखबार कार्यक्रम में मोनिका ठाकुर करती है आप सभी का तहे दिल से स्वागत। आज का मौसम देखकर तो आपका मन खुश हो गया होगा, क्यों? सही कहा ना, आसमान में काले काले बादल जो उमड़ घुमड़ कर आ गए हैं भाई। मेरी तरह आपका भी मन कर रहा होगा कि इन बादलों को रस्सी से बांध लें और तब तक ना छोड़ें जब तक ये बरसे ना। भाई जब देखो बारिश की आस बंधाकर ये बिन बरसे ही ना जाने कहां भाग जाते हैं। हाँ एक बात और, इन बादलों की लुका छुपी जो है उसको देखकर मुझे एक और बात याद आई है, आपसे वो साझा करते हैं। दोस्तों हमारी जिंदगी में बहुत से लोग आते हैं, कुछ साथ चलते हैं और कुछ बिछड़ जाते हैं, लेकिन एक ऐसा साथी भी है जो ना कभी शिकायत करता है ना कभी साथ छोड़ता है और ना ही बदले में कुछ मांगता है। जान पाए आप कौन है वो? वो साथी है किताबें। किताबें कागज पर लिखे कुछ शब्द नहीं होते बल्कि ये अनुभवों का खजाना होती हैं। ये हमें उन लोगों से मिलवाती हैं जिनसे हम कभी मिले नहीं, उन जगहों की सैर कराती हैं जहां हम कभी गए ही नहीं और उन विचारों से परिचित कराती हैं जिनके बारे में हमने शायद कभी सोचा भी नहीं। जब हम अकेले होते हैं किताबें हमारा साथ निभाती हैं, जब हम उलझन में होते हैं किताबें हमें रास्ता दिखाती हैं, जब हम निराश होते हैं किताबें हमें उम्मीद देना सिखाती हैं और जब हम सफलता की ओर बढ़ना चाहते हैं तो किताबें हमें सही दिशा भी दिखाती हैं। जिस घर में किताबें होती हैं वहां ज्ञान रहता है, जहां ज्ञान रहता है वहां सफलता अपने आप रास्ता ढूंढ लेती है। तो दोस्तों सच्चा मित्र वही होता है जो हमें बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा दे और किताबें बिल्कुल यही काम करती हैं। आज मोबाइल और सोशल मीडिया के दौर में

घंटों स्क्रीन पर समय बिताते हैं, लेकिन अगर हम रोज 20 या 30 मिनट भी किसी अच्छी पुस्तक को दे दें तो ये छोटी सी आदत हमारे व्यक्तित्व, सोच और जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। तो किताबों से दूरी ना बनाएं, बल्कि इसे हमेशा अपने सीने से लगा के रखें।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा

रेलवे की लॉन्ड्री में अब एआई करेगा छिपे दाग की पहचान। रेलवे ने पुणे, जयपुर व जोधपुर डिवीजनों में एआई आधारित दाग पहचान प्रणाली ट्रायल किया शुरू। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक मामलों में फास्ट ट्रैक न्यायालय बनाने के लिए मसौदा विधेयक को दी मंजूरी। असम, गुजरात, जम्मू कश्मीर में बाढ़ से 87 मौतें, बारिश से दो दिन राहत नहीं। स्वदेशी काउंटर ड्रोन सिस्टम भार्गवास्त्र का नागपुर में सेना के सामने सफल ट्रायल। भारत देश में 10 साल में 400 से ज्यादा हुए स्पेस स्टार्टअप। अनाहत लगातार दूसरी बार वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में। यूरोप में आग का तांडव, स्पेन में इमरजेंसी और फ्रांस में 50,000 लोग रेस्क्यू किए गए। ट्रंप ने भारत समेत 17 देशों पर 10% टैरिफ थोपा। आज का अखबार कार्यक्रम में ये थी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबरें।

0: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
1: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
1: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
0: आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: हाँ, ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
3: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
2: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
4: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
5: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आज का अखबार कार्यक्रम और अब रुख करते हैं क्षेत्रीय खबरों की ओर।

पंजाब हरियाणा में 28 से 30 तक भारी बारिश का अलर्ट। हिमाचल में फ्लैश फ्लड के कारण 121 सड़कें हुई बंद। पंजाब में अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन व्यवस्था पूरी तरह होने जा रही है डिजिटाइज्ड। ये जांच कर बताएगा पेंशन के लिए कौन है पात्र। बुजुर्गों के लिए फेस ऑथेंटिकेशन लागू होगा। पंजाब रोडवेज का 3 से 5 अगस्त तक चक्का जाम। टीबी मुक्त भारत ऐप पर पंजीकरण में हरियाणा देश में दूसरे स्थान पर। हरियाणा नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 के लिए 31 जुलाई तक आवेदन किए जा सकते हैं। हरियाणा में एसआईआर के बाद 33 लाख वोटर बाहर। हिसार को छोड़ सभी जिलों में सत्यापन 100% पूरा। 31 को आएगी ड्राफ्ट मतदाता सूची। सूची में नाम नहीं है तो भरें फॉर्म 6। तो ये थी आज का अखबार कार्यक्रम में क्षेत्रीय खबरें।

आज का अखबार कार्यक्रम में अब रुख करते हैं स्थानीय खबरों की ओर। वर्ल्ड कप में भारत को 10 मीटर पिस्टल में मिला पहला मेडल। चंडीगढ़ की संयम ने खोला वर्ल्ड कप शूटिंग में टीम इंडिया का खाता। पीयूसी एफिलिएटेड और कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजों में एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स को 4 दिन की राहत। अब 28 जुलाई तक बिना लेट फीस एडमिशन। चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग प्रशासन बसों में QR कोड से टिकट भुगतान की नई सुविधा कर रहा है शुरू। चयनित रूटों पर हुआ शुरू ट्रायल। उन्नीस देशों के स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने परखा PGI मॉडल। OPD से लेकर अंग प्रत्यारोपण और ग्रीन हॉस्पिटल पहल तक का किया निरीक्षण। आज का अखबार कार्यक्रम में ये थी स्थानीय खबरें और बातें आपसे और भी होंगी, लेकिन अभी लेकर चलते हैं आपको गीत संगीत की दुनिया में।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: आज का अखबार कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं और आज के समय में अगर बात की जाए दोस्तों तो सभी फिट और जवान रहने की चाहत रखते हैं। तो आपको बता दें कि सिनेमा और जो म्यूजियम जाने की आदत है वो उम्र बढ़ने की रफ्तार को धीमी करता है। कला को हम मानते हैं कि ये सिर्फ मनोरंजन के लिए ही है लेकिन ऐसा नहीं है बल्कि आपकी सेहत के लिए भी उतनी ही ये फायदेमंद हो सकती है। एक रिसर्च में उन लोगों की बायोलॉजिकल एज उनकी वास्तविक उम्र से कम पाई गई है जो नियमित रूप से सिनेमा म्यूजियम या नाटक जैसी सांस्कृतिक गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं और नई कहानियां कला संगीत आपके दिमाग को लगातार सीखने सोचने के लिए प्रेरित करता है जिससे आपका संज्ञानात्मक जो क्षमता है वो बेहतर बनती है। आपका तनाव भी इससे कम होता है क्योंकि कला और मनोरंजन से जुड़े रहने पर शरीर में जो कोर्टिसोल हार्मोन है उसका स्तर कम होता है जो तनाव को कम करता है। सामाजिक जुड़ाव भी आपका इससे बढ़ेगा। परिवार दोस्तों के साथ सांस्कृतिक गतिविधियों में शामिल होने से आपका अकेलापन कम होगा और सामाजिक संबंध आपके लगातार मजबूत होंगे और जब आप खुश होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका शरीर भी वैसा ही महसूस करेगा। तो जिंदगी अनमोल है और इससे प्यार कीजिए और हमारे साथ आप भी यही कहिए जो इस गीत में कह रहे हैं।

0: श्रोताओं, आज का अखबार कार्यक्रम में बस इतना ही। मोनिका ठाकुर को अब दीजिए इजाजत कार्यक्रम संपन्न करने की। नमस्कार।
1: आज का अखबार कार्यक्रम के प्रायोजक थे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स।
2: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगा कर भी दिए।
3: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो

0: श्रोताओं, आज का अखबार कार्यक्रम में बस इतना ही। मोनिका ठाकुर को अब दीजिए इजाजत कार्यक्रम संपन्न करने की। नमस्कार।
1: आज का अखबार कार्यक्रम के प्रायोजक थे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स।
2: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए।
3: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
4: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक, जागो।
1: आज का अखबार।
0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
6: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू।
5: श्री मोदी के वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए नया विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में अगले सप्ताह पेश किया जाएगा। इस विधेयक के मसौदे को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से जुड़ी मांगों को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी CJP के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज एक और दौर की बातचीत करेगी। इससे पहले कल भी नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने CJP प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी, जिसके बाद श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर CJP की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया है। उन्होंने बताया कि CJP ने 3 प्रमुख मांगे रखी हैं और पेपर लीक रोकने के अलावा कुछ सुझाव भी दिए हैं।
7: बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 शामिल सुझाव हुए।
5: दिल्ली पुलिस ने पेपर लीक और अन्य अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल का गठन किया है। ये कार्यबल लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2026 के अंतर्गत आता है। दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा कि ये कार्यबल विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा आयोजित लोक परीक्षाओं से संबंधित अपराधों की त्वरित, पेशेवर और व्यापक जाँच करने के लिए जिम्मेदार होगा। सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। नीट पेपर परीक्षा लीक पर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों में 5वें दिन भी कार्यवाही बाधित रही और दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। रोमानिया के बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनकी विशिष्ट सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता और भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने सम्मान स्वीकार करते हुए इसे भारतीय जनता को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों देशों के लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक पोत MV ओमोर्फी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। हमले को अस्वीकार्य बताते हुए भारत ने सभी संबंधित पक्षों से समुद्री नौ

0: पहन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 18 जुलाई को काला सागर से गुजरते समय पोत पर हमला हुआ। हमले में एक भारतीय नाविक की मृत्यु की खबर है। पोत पर 3 भारतीय नागरिकों सहित चालक दल के 10 सदस्य सवार थे। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिन तक स्थगित रही श्री अमरनाथ यात्रा आज से फिर शुरू हो गई है। यात्रा बालतल और पहलगाम दोनों मार्गों से जारी है। इस बीच आज सुबह 6,269 श्रद्धालुओं का नया जत्था जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से रवाना हुआ। प्रशासन ने यात्रियों से सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। उन्होंने 190 किलोग्राम भार उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया है। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी आज मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।
2: सूट साड़ी लहंगा व रेमंड सूटिंग के डायरेक्ट डीलर बग्गा सारीज नियर रेलवे स्टेशन अंबाला शहर। फोन 8950632224।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़ से सुनिए कार्यक्रम म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस। इंस्टाग्राम पर आपकी फरमाइशों का सिलसिला हर शुक्रवार दिन में 11:15 से 12 बजे तक और हर शनिवार दिन में 11 बजे से 12 बजे तक। अपनी फरमाइश का फिल्मी गीत सुनने के लिए हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर हमें अपनी फरमाइश भेजें। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है AIR चंडीगढ़। तो FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़ से सुनना न भूलें हर शुक्रवार दिन में 11:15 से 12 बजे तक और हर शनिवार दिन में 11 बजे से 12 बजे तक म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस। इंस्टाग्राम पर आपकी फरमाइशों का सिलसिला
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
3: श्रोताओ, आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर, और अपने तमाम लिसनर्स के लिए मोनिका ठाकुर लेकर हाजिर हो चुकी है उनका पसंदीदा कार्यक्रम सफर सुरीला सा। और ये सफर फिल्मी गीतों का रहता है, फिल्मी गीतों पर आधारित ये कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम का पहला गीत हम लेकर आए हैं आपके लिए फिल्म बहू बेगम से। आवाजें हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की, संगीत दिया है रोशन ने। इस गीत के लिए हम सिर्फ यही कहेंगे कि उन्हें अंदाजा नहीं है हमारी मोहब्बत के इंतहा का, उनके इंतजार में हम तो अपनी जिंदगी गुजार दें, चाहे कयामत ही क्यों ना आए, पर निगाहें और ये दिल उनके इंतजार की घड़ियां तब भी गिनेगा।

औरों की जिंदगी चलती होगी सांसों की डोरी पर हमारी हर सांस पर बस एक ही नाम बसता है और वो है हमारे पिया का।

बाप रे बाप। इस फिल्म का गीत आपने सुना आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में। संगीत था ओपी नैयर का। भंवरों की गुंजन सा ये दिल हर बाग की बहार में अपने दिलबर का नाम पुकारता हुआ यहां से वहां उड़ता फिर रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसी ख्वाहिश में कि कभी तो उनकी प्यार भरी नजर हम पर भी पड़ेगी।

0: मोहम्मद रफी की आवाज में। संगीत था ओपी नैयर का।
1: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है, घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करन ले स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानु मिलदा है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानु स्मार्ट एडवाइस ते करे हर काम एकदम तेजी नाल। यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो, शर्तां लागू।
2: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
3: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
2: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
3: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
2: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
3: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
2: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
3: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
2: आकाशवाणी चंडीगढ़।
0: जिंदगी के कितने ही मोड़ हम देख चुके हैं, पर वो अभी तक ना मिला जिनसे बिना तकल्लुफ के अपने दिल की बात कह पाते।

एक महल सपनों का। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में, संगीत था रवि का। औरों के चेहरों पर मुस्कान आने की वजह तो हम नहीं जानते, पर इतना बता दें आपको कि इस चेहरे की मुस्कान की वजह कोई और नहीं

आशा भोसले की आवाज में वक्त फिल्म का गीत आपने सुना, संगीत रवि का। एक दूजे बिन हम दोनों वैसे ही अधूरे हैं जैसे फूल बिन खुशबू, दोनों के दिल भी एक हैं और मंजिल भी

0: सफर सुरीला सा कार्यक्रम में आज बस इतना ही। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर, और अब समय हो गया है आपके पसंदीदा कार्यक्रम पॉप टाइम का।

0: पॉप टाइम प्रोग्राम सुनने वाले सभी दोस्तों को रमेश कपूर का प्यार भरा नमस्कार।
1: हेलो मेरे सोने पाजी।
0: हेलो पिंके, और सुनाओ क्या हाल चाल है? आज शन्नो जी नहीं आई?
1: पाजी आपको कहीं देख रही हैं? चली शन्नो जी।
0: नहीं पिंके,
1: आई ही नहीं तो दिखेंगी क्या टीडी टी करके।
0: पिंके बड़े खुश हो आज? ओहो अच्छा, आज शन्नो जी नहीं आई इसीलिए बड़े खुश हो?
1: पाजी आपसे मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही टीडी टी करके।
0: नहीं नहीं पिंके, तुम गलत समझ रहे हो।
1: पाजी सब समझता हूँ मैं। हाँ
0: पर
1: पाजी पार नहीं लगे मुझे। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं यार टीडी टी करके।
0: ओहो पिंके मुझे माफ करो,
1: पहले अपनी गलती बताओ फिर माफ भी कर देंगे टीडी टी करके।
0: पिंके वही तो पता नहीं कि आज मैंने ऐसी क्या गलती की है जो तुम मुझे इतना सता रहे हो।
1: पाजी आप तो ऐसे डर रहे हैं जैसे आपने बैंक से बड़ा तगड़ा कर्जा ले लिया है और आपसे किस्तें नहीं तारी जा रही टीडी टी करके।
0: पिंके सुधर जाओ सुधर।
1: पाजी अब मुझे बाद में सुधारना, पहले दोस्तों को गाना सुना दो नहीं तो फिर कहेंगे बातें ही करते रहते हैं गाना तो सुनाते नहीं टीडी टी करके।

0: पिंके बताओ ना, आज शन्नो जी क्यों नहीं आई?
1: पाजी वो कोई वेली है आपकी तरह, 3600 काम है उनको टीडी टी करके।
0: क्या मतलब?
1: मतलब ये कि निक्का पैसा अपने प्रोग्राम का देना नहीं। फिर पूछते हैं, आज शन्नो जी नहीं आई टीडी टी करके।
0: पिंके ये क्या तुम हर वक्त पैसे के पीछे भागते रहते हो?
1: ओए पैसा ना हुआ, आप जैसा चेन खींचने वाला कोई टेढ़ा सा चैन शनिचर हो गया, जिसके पीछे मैं भागूंगा टीडी टी करके।
0: पिंके मजाक छोड़ो, ये बताओ शन्नो जी ठीक तो है ना?
1: ठीक नहीं बाजी, एन मोटी तगड़ी है टीडी टी करके।
0: ठीक है, फिर कहाँ रह गई आज? प्लीज पिंके बताओ ना।
1: आए पाजी यही तो मेरी कमजोरी है, प्लीज। आपने प्लीज कहा है तो मैं बता ही देता हूँ आपको, आजकल शन्नो जी बैंकों की रिकवरी एजेंट बन गई है टीडी टी करके।
0: अच्छा?
1: हाँ जी पाजी, बैंकों से कर्जा लेके जो लोग किस्त नहीं तारते ना, शन्नो जी अपनी बातों की कला से उनको बेहोश कर देती हैं। ऐसी ऐसी बातें सुनाती हैं, ऐसी ऐसी बातें सुनाती हैं कि बंदा सोच सोच के चकर आगे बेहोश। बस पाजी, बेचारा होश में आते ही कई बार महीने की किस्त ही नहीं पूरा का पूरा पैसा वापस कर देता है टीडी टी करके। लो जी मुझे माफ कर दो, जो मैंने आपके बैंक से कर्जा लिया टीडी टी करके।
0: पर पिंके आजकल सरकार उन बैंकों पर लगाम कसने दी है जो रिकवरी एजेंट्स के द्वारा ग्राहकों को तंग करते हैं,
1: और आप इस बात पे बड़े खुश हो रहे हैं। हमें ना खाने दियो रोटी टीडी टी करके।
0: वैसे पिंके बैंक शन्नो जी को ग्राहकों को बेहोश करने वाली कला की कुछ कमीशन भी देते हैं या यूं ही फ्री में सेवा कर रहे हो आप लोग?
1: लो कर लो बात, बैंक कोई आपकी तरह थोड़े हैं जो निक्का पैसा ही नहीं देंगे प्रोग्राम का। पाजी वैसे अगर कोई बैंक कमीशन देने से मुकर जाए ना, तो शन्नो जी उनका भी वही हाल करती है जो गाहकों का करती है। बैंक वालों को भी ऐसी ऐसी बातें सुनाएंगी, ऐसी ऐसी

0: स्टेशन आएंगी कि बैंक वाले भी चकरा के भी होश।
1: और शर्म करो, जब रिकवरी के एजेंटों को पैसे नहीं देने तो फिर काम क्यों कराते हो?
0: बैंक वाले भी सारी की सारी कमीशन दे देते हैं टीडीटी करके।

0: पिंके, वो तुम्हारे पास लिफाफा सा क्या पड़ा है?
1: पूंडी भाजी की दुकान की जलेबियां हैं, जलेबियां।
0: अच्छा, मेरे लिए?
1: आए भाजी, आ गया ना मुंह में पानी जलेबियों की खुशबू सूंघ के। वैसे ना आपकी नाक भी बड़ी तेज है, जलेबियों की खुशबू दूर दूर से सूंघ लेती है, टीडी टी करके।
0: क्या मतलब?
1: अब कुछ नहीं भाजी, आप कितने तंदुरुस्त हैं, है ना? भाजी लो, इसी खुशी में ये पूंडी भाजी की दुकान की जलेबियां खाओ, टीडी टी करके।
0: हाँ हाँ पिंके, वाह क्या स्वाद है।

0: पिंके, ये तुमने क्या हाल बना रखा है?
1: क्यों बाजी, अब क्या हुआ?
0: तुम आजकल सैर नहीं करते, देखो कितने मोटे होते जा रहे हो।
1: आए, पाजी, आपको मेरे मोटापे का बिल आ रहा है टीडी टी करके।
0: पिंके, तुम्हें पता है ये मोटापा कई बीमारियों की जड़ है।
1: वैसे पाजी, आप कभी पार्क में गए हैं?
0: हाँ हाँ।
1: आजकल तो पार्कों में आप जैसे बरसाती डड्डू ही दिखाई देते हैं टीडी टी करके।
0: क्या मतलब?
1: पहले तो अपनी सेहत का वो लोग ध्यान नहीं देते, पिज्जा खा, बर्गर खा, ये खा, वो खा, और जब तोंद इतनी बड़ी हो जाए कि संभालनी मुश्किल हो जाए, और फिर शुगर, ब्लड प्रेशर और गैस जैसी बीमारियां घेर लें, तो फिर ऐसे लोग पार्कों में आजकल नजर आते हैं टीडी टी करके, और वहां इतनी तेज तेज चलने का ड्रामा करते हैं जैसे इनमें शताब्दी गड्डी की रूह आ गई हो टीडी टी करके।
0: वैसे पिंके, मैं तो यही कहूंगा कि सैर करना सेहत के लिए हमेशा जरूरी है, सेहत के लिए अच्छा है।
1: बिल्कुल पाजी, देखो ना, पहले तो कई लोग सेहत की तरफ ध्यान नहीं देते, खुल के हंसते नहीं, या यूं कह ले लोगों के पास हंसने का भी टाइम नहीं, वो तो सवेरे सवेरे 5-6 बजे 25-30 बंदे पार्कों में इकट्ठे हो के ना रावणों की तरह हंसते हैं। मेरे वर्गा बंदा जिनके घर के पास पार्क हो वो बेचारा डर के बिस्तरे से नीचे गिर पड़ता है।

0: पिंके, कल मैंने तुम्हारे घर फोन किया था, कहाँ थे तुम?
1: पाजी, वो लाली पाजी का मुंडा है ना लट्टू, बीमार हो गया था। मैं उसे डॉक्टर के पास लेके गया था टीटी टी करके।
0: अच्छा?
1: हाँ जी पाजी, आजकल के बच्चे तो ऐसे ही हैं, कमजोर से बेचारे, हड्डियां भी छेने बजाती हैं।
0: पिंके, बच्चों को बीमारियों से बचाने का सबसे आसान और बढ़िया तरीका है बच्चों को माँ का दूध पिलाना।
1: लो कर लो बात पाजी, आजकल की माएं बच्चों को अपना दूध पिलाती ही कहाँ है, वो तो कहती हैं हम पहले जैसी ब्यूटीफुल नहीं रहेंगी।
0: नहीं नहीं पिंके, ऐसा नहीं होता। डॉक्टर भी कहते हैं कि जो माताएं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनकी सुंदरता में निखार तो आता ही है, साथ में बच्चों के शरीर में बीमारियों से लड़ने की ताकत पैदा होती है।
1: पाजी, बीमारियों से लड़ने की ही नहीं, किसी से भी लड़ने की ताकत पैदा होती है। तभी तो पहले लोग जब बड़क मारते थे तो कहते थे, ओ केड़ा है? जिसने माँ का दूध पिया है सामने आए। और पाजी, कुछ सालों बाद मेरे जैसा बंदा बड़क पता क्या मारेगा?
0: क्या पिंके?
1: ओ केड़ा है? जिसने डिब्बे या पैकेट का दूध पिया है वो अपने घर में ही रहे। वैसे पाजी, माँ अपने बच्चों को दूध पिलाएगी, तंदुरुस्त रखेगी, ढंग से पालेगी, तभी तो उसकी ममता देखकर बच्चे

0: कुछ लोग ना अपना ध्यान रखते हैं और ना ही अपने बच्चों का।
1: हाँ जी बाजी, चंगा राशन रगड़ जाते हैं, उनका तो एक ही काम होता है, खाना खाना बस खाना।
0: पर पिंके, जिंदा रहने के लिए खाना होता है, ना कि खाने के लिए जिंदा रहना।
1: भाजी कुछ लोग तो अपने आप ही इतना खाते हैं उनका ढीड़ भर जाता है, पर नियत नहीं।
0: पिंके तुम मुझे देखकर ये बात क्यों कर रहे हो?
1: और मैं दीवारों को देखूं?
0: पिंके सुधर जाओ सुधर।
1: भाजी अब इतना भी ना सुधारो यार।
0: फिर तुम ये कैसी बातें कर रहे हो?
1: भाजी मैं कह रहा था ना कि कुछ लोग खा खा के अपने लिए मुसीबत खड़ी कर लेते हैं, पर कुछ लोग दूसरों को खिला खिला के मार देते हैं।
0: वो कैसे पिंके?
1: पाजी आप देखे ना, कल मैं गुड्डो मासी के घर गया था और रखड़ियों की फड़ी का हिसाब करने, यही 23 सेक्टर में रहती है मेरी गुड्डो मासी।
0: अच्छा
1: पाजी, पैसों का हिसाब तो ठीक ठाक हो गया, पर बाद में मेरा टीट खराब।
0: क्यों, पैसे हजम नहीं हुए तुम्हें?
1: लो कर लो बात, पाजी आपको तो मजाक के सोचती रहती है हर वक्त। जैसे ही मैंने पैसे लिए तो गुड्डो मासी कहने लगी, मेरे हाथ की रोटी खा कर ही जाना पिंके पुत्र। नहीं मासी जी, मैं घर जागना सुन्नो जी के साथ ही खाऊंगा। पर पाजी वो कहां मानने वाली थी, बैठा दिया जबरदस्ती मुझे मासड़ जी के साथ।
0: फिर तो अच्छी सेवा हुई होगी तुम्हारी।
1: सेवा पाजी पूछो कुछ ना, एक एक करके 20-25 रोटियां खिला दी गुड्डो मासी ने।
0: इतनी रोटियां खा ली तुमने?
1: पाजी मैं कहां खाता था इतनी रोटियां, 8 रोटियों के बाद बार बार गुड्डो मासी को रोक रहा था। बस मासी जी और नहीं खानी, पर वो कहती पिंके तेनु मेरी सौ एक खाला मेरा पुत। बस पाजी एक एक करके 20-25 रोटियां खिला दी।
0: ओहो
1: यही बस नहीं पाजी, इतनी रोटियां खिलाने के बाद मासड़ जी हाथ में वड्डा ग्लास लेके आ गए और बोले
2: पिंके तुमने तो कुछ खाया ही नहीं, पुत्र ये ले दूध पी और तगड़ा हो।
1: नहीं मास्टर जी, मैं तो वैसे ही रोटियां खा के बहुत तगड़ा हो गया हूँ, मैंने नहीं पीना दूध शूद, माफ करो मुझे। इस पर गुड्डो मासी बोली पिंके तेनू मेरी सौ पीला चुप करके। मासी जी आपने अपनी सौ पुआ दी है तो ऐसा करें ये दूध मेरे ऊपर छिड़क दें। ढीड़ में तो मेरे जगह नहीं।

0: पाजी कुछ माँ बाप अपने बच्चों की सेहत का पूरा ध्यान रखते हैं, उनके खाने पीने का, सोने जागने का।
1: हाँ पिंके, पर

0: अच्छा भाजी, अब मैं चलता हूँ। ओके बाय
1: बाय पिंके। श्रोताओ, आज का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें अपनी राय जरूर दें। अब आज का पॉप टाइम प्रोग्राम समाप्त करने की अपने दोस्त रमेश कपूर को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पॉप टाइम। आपने ट्यून किया है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर।
1: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है, घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करन ले स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस ते करे हर काम एकदम तेजी नाल। यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो, शर्तां लागू।
0: श्रोताओं, अब टाइम हो गया है आपके पसंदीदा कार्यक्रम म्यूजिक हैशटैग इंस्टा फेस का।
2: FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़ से सुनिए कार्यक्रम म्यूजिक हैशटैग इंस्टा फेस। म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस। इंस्टाग्राम पर आपकी फरमाइशों का सिलसिला।
0: म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस प्रोग्राम लेकर हाजिर हो चुकी है आपकी दोस्त मोनिका ठाकुर। आपके पसंदीदा गीत आप सुन सकते हैं इस कार्यक्रम में अपने नाम के साथ, और अपने दोस्तों के नाम भी इस कार्यक्रम में आप शामिल कर सकते हैं। बड़े लंबे अरसे से इस कार्यक्रम में आप जुड़े हैं, और आपको बता दें जो हमारे नए लिसनर्स हैं कि इस कार्यक्रम को 11 बजे से 12 बजे तक आप सुन सकते हैं, और आपकी फरमाइश पर आधारित ये फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रहता है। और आप अपनी फरमाइश हमें भेज सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जो है AIR चंडीगढ़। तो फिलहाल हमेशा की तरह इस कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले हैं हम आपके पसंदीदा गीत के साथ, जो है ब्लैकमेल फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में। संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने, और इस गीत को सुनना चाहा है महक मेहता ने।

श्रोताओं, अब आप सुनेंगे मुकद्दर का सिकंदर फिल्म से गीत। आवाजें हैं लता मंगेशकर, आशा भोसले, महेंद्र कपूर की, और संगीत है कल्याण जी आनंद जी का। इस गीत को सुनना चाहा है भटिंडा से अशोक ग्रोवर, प्रवीण ग्रोवर, नीति ग्रोवर, पवनीत ग्रोवर और विक्रमाजीत ग्रोवर ने।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस प्रोग्राम और अब आप सुनेंगे सबक फिल्म से गीत मुकेश की आवाज में। संगीत है उषा खन्ना का।

0: आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
1: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
1: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
0: आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: श्रोताओ, विनीता मिश्रा की आवाज में अब आप सुनेंगे मासूम फिल्म से गीत। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने। इस गीत को सुनना चाहा है पंचकुला सेक्टर 9 से आशु चुग, अश्विनी चुग, गोविंद चुग, टोनी दीवान, लव दीवान, राधे भाविक और भाविक ने। तो लीजिए आपकी पसंद पर यह गीत।

आप आनंद उठा रहे हैं म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस प्रोग्राम का और अब आप सुनेंगे दिल है बेताब फिल्म से गीत उदित नारायण की आवाज में, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत को सुनना चाहा है पवन कन्नौजिया, वंदना कन्नौजिया, गरिमा कन्नौजिया ने श्री आनंदपुर साहब से। इसी गीत की फरमाइश लिख भेजी है छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा ने।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
1: श्रोताओ अब आप आनंद उठाएंगे नसीब फिल्म के गीत का आवाजें हैं अनवर सुमन कल्याणपुर डॉक्टर कमलेश अवस्थी की संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और इस गीत को सुनना चाहा है ललिता पाल हुकुमचंद सूरज कुमार धुंधला मंडी अंबाला कैंट से ये फरमाइश लिख भेज रहे हैं

श्रोताओं, आप आनंद उठा रहे हैं अपनी पसंद के गीतों का। प्रोग्राम है म्यूजिक हैशटैग इंस्टा फेस। अब आप सुनेंगे प्यासा सावन फिल्म का गीत, लता मंगेशकर सुरेश वाडेकर की आवाजों में। संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, और इस गीत को सुनना चाहा है रमेश गुलाटी, स्नेह गुलाटी, हिमांशु गुलाटी, दिवांशु गुलाटी। और ये गुलाटी जी, आपने नाम जो लिखा है, आई थिंक अगर हम गलत नहीं पढ़ रहे हैं, हित्रांशु गुलाटी है, सेक्टर 9 पंचकुला से। और बड़ी रिक्वेस्ट इन्होंने की है कि कल मेरी फरमाइश पूरी नहीं हो पाई थी और आज मेरी फरमाइश ज़रूर पूरी करें। तो कोशिश हमारी यही रहती है कि अपने तमाम लिसनर्स की जितने हो सकें इस कार्यक्रम में फरमाइश पूरी करें। तो लीजिए, आज आपका नंबर जल्दी आ चुका है, तो आपकी फरमाइश आप तक पहुँच रही है। कार्यक्रम में एक और नाम शामिल करना चाहेंगे, सेक्टर 18 जगाधरी जिला यमुनानगर हरियाणा से विनय मोहन खारवन, मीनाक्षी प्लोमा और डॉक्टर ईशानी भी यह गीत सुनना चाहते हैं।

श्रोताओं, अब आप सुनेंगे शागिर्द फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और इसे गीतबद्ध किया है मजरू ने। इस गीत को सुनना चाहा है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप ने। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज ने।

0: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है, घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करने लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस ते करे हर काम एकदम तेजी नाल, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो, शर्तां लागू।
1: श्रोताओं, अब आप सुनेंगे धर्मवीर फिल्म का गीत। आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत को सुनना चाहा है दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और डब्बू बब्बू ने।

श्रोताओ, अब आप सुनेंगे आशा भोसले मोहम्मद रफी को नागिन फिल्म में, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत को सुनना चाहा है हरमनजोत कौर, मनजोत कौर, जुबनप्रीत सिंह, सुखचैन सिंह पवर ने, और सनौर से ये अपनी फरमाइश भेज रहे हैं।

कार्यक्रम का अंतिम गीत आपके लिए लेकर आए हैं आया सावन झुमके फिल्म से। आवाजें हैं लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी व साथियों की। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत को सुनना चाहा है कुंडी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी और बेबी बॉय हिमाक्ष ने। इसके अलावा कुछ नाम और कार्यक्रम में शामिल कर लें, मोहम्मद जाकिर, मोहम्मद कादिर, मोहम्मद रफीद, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद अली हुसैन सेक्टर 12A पंचकुला से फरमाइश लिख भेज रहे हैं, और बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया, अपार ढिंगिया भी फरमाइश भेज रहे हैं। तो कार्यक्रम का अंतिम गीत आपके नाम।

0: फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम म्यूजिक हैशटैग अभी आपने सुना। इस कार्यक्रम में आज बस इतना ही।
1: म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस, इंस्टाग्राम पर आपकी फरमाइशों का सिलसिला।
0: श्रोताओं, अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: इंस्टाग्राम पर आपकी फरमाइशों का सिलसिला।
1: श्रोताओ, अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
3: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू।
2: वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए नया विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में अगले सप्ताह पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है। सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से जुड़ी मांगों को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज एक और दौर की बातचीत करेगी। इससे पहले कल भी नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी। श्री नड्डा ने बैठक को सकारात्मक बताया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि संसद के बाहर मीडिया को दिए गए बयान के साथ एआई का दुरुपयोग कर छेड़छाड़ की गई और एक डीप फेक वीडियो तैयार कर उसे गलत सूचना फैलाने के उद्देश्य से प्रसारित किया गया। सोशल मीडिया पर साझा किए गए पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि इस मामले में आज सुबह चाणक्यपुरी पुलिस थाने में FIR दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि फर्जी वीडियो बनाने, प्रसारित करने या उसे बढ़ावा देने में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने सोशल मीडिया चल रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल NS राजा सुब्रमणी ने कहा है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शनों के कारण 30,000 सेना के जवानों ने इस्तीफा दे दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि ये वीडियो फर्जी और AI से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 400 से अधिक युवा प्रतिभागी प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे। भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक पोत MV ओमोरफीम पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। हमले को अस्वीकार्य बताते हुए भारत ने सभी संबंधित पक्षों से समुद्री नौवहन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 190 किलोग्राम भार उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथलीट झंडू कुमार को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कुमार के प्रदर्शन को शानदार बताया और कहा कि ये उपलब्धि उनकी अदम्य शक्ति, अटूट दृढ़ संकल्प और वर्षों के अनुशासित प्रयासों का सशक्त उदाहरण है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिनों तक स्थगित रहने के बाद वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा आज से दोबारा शुरू हो गई है। कश्मीर के संभागीय आयुक्त अंशुल गर्ग ने आकाशवाणी समाचार को ये जानकारी दी। वहीं असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। राज्य में 1,15,000 से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है। सबसे अधिक प्रभावित जिले शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट हैं। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या 61 हो गई है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। वहीं गुजरात में तेज बारिश के बाद बचाव और राहत कार्य युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य के 265 क्षेत्रों में बारिश हुई है। राज्य राहत आयुक्त ने 5 मौत की पुष्टि की है। मौसम विभाग ने कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, दिल्ली

0: हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

रामजान के बोल आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। डॉन फिल्म के इस गीत को संगीत से सजाया कल्याण जी आनंद जी ने। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल। और आपको ये बता दें कि आज शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत बॉम्बे टॉकीज में आप सुन सकते हैं फिल्मी दुनिया के संगीतकार दिलीप सेन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: सीता और गीता फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन की तर्ज और आवाजें आशा भोसले मन्ना डे की। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल।
1: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बाशु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, आप वही करते रहोगे।
2: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन,
3: कौन लाया, कौन लाया।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती पर कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: अमर अकबर एंथनी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज और आवाजें किशोर कुमार, मुकेश, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। और इस वक्त कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, निशा और चश्मे बदूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
3: और आ गया।
4: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
5: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सुनिए
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

हसरत जयपुरी की रचना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में। अप्रैल फूल फिल्म का ये गीत शंकर जयकिशन ने संगीत से सजाया। आपको बता दें कि आज शाम 4 बजे से आप सुन सकते हैं बॉम्बे टॉकीज के अंतर्गत फिल्मी दुनिया के मशहूर संगीतकार दिलीप सेन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। और इस समय विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, और अभी आपने सुना हम किसी से कम नहीं फिल्म का ये गीत। किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। और अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, लता मंगेशकर की आवाज में सुनिए ये गीत।

गुलजार के बोल आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। राहुल देव बर्मन का संगीत गोलमाल फिल्म के इस गीत में आपने सुना। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल, और अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। घर फिल्म से ये गीत सुनिए।

0: किशोर कुमार की आवाज में पड़ोसन फिल्म का गीत आपने सुना, राजेंद्र कृष्ण के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत, और इसके साथ ही आज का चित्रपट संगीत कर माफ कीजिएगा यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम यादों की महफिल। ये कार्यक्रम हम विविध भारती मुंबई से रिले कर रहे थे। जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हम सफर FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों तक,
1: घर घर जन जन तक चंडीगढ़ के साथ साथ देश के 5 राज्यों तक पहुंचने वाला चंडीगढ़ का एकमात्र रेडियो चैनल,
2: आपका अपना FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़,
1: जो चंडीगढ़ के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यूपी और उत्तराखंड में बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
2: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान।
3: ना वो अखियां रूहानी कहीं, ना वो चेहरा नूरानी कहीं,
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ दुनिया के हर कोने में पहुंचाए आपका ब्रांड।
3: जग घूमे आधार जैसा ना कोई,
2: तो देर क्यों जनाब, अपने कारोबार की एडवर्टाइजमेंट बुक करवाएं।
1: चले आएं आकाशवाणी चंडीगढ़ Sector 34D या हमें फोन करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846, चंडीगढ़ का STD कोड है 0172,
2: और हमारा ईमेल आईडी है akashwanichandigarh@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी चंडीगढ़।

ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए अब सुनिए अब से लेकर रात 11 बजे तक प्रसारित होने वाले हमारे मुख्य कार्यक्रमों का विवरण।

विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए अब सुनिए अब से लेकर रात 11 बजे तक प्रसारित होने वाले हमारे मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, पहले 1:05 पर हिंदी में, उसके बाद 1:10 पर

1:15 पर और शाम 5:05 पर 1:30 पर सुनिए कार्यक्रम सुरीला सफर। कार्यक्रम त्रिवेणी प्रसारित होगा दिन में 2 बजे। 2:30 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम सदाबहार नख में। 3 बजे कार्यक्रम होगा मन चाहे गीत। 3 कार्यक्रम में बाद दोपहर 3:30 पर नाटक सुनिए वो मंजिल कहां। शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत आज सुनिए कार्यक्रम बॉम्बे टॉकीज। आज इस कार्यक्रम में संगीतकार दिलीप सेन से बातचीत का पहला भाग प्रसारित होगा। प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे आप सुन सकते हैं शाम 5:20 पर। शाम 5:30 पर सुनिए कार्यक्रम सुहाना सफर आकाशवाणी के संग। आज इस कार्यक्रम में एक्टर, पॉडकास्टर और एक सफल उद्यमी श्री सुप्रीत सिंह से बातचीत का दूसरा भाग प्रसारित किया जाएगा। कुछ पंजाबी गीत हम आपको सुनवाएंगे शाम 6:30 पर, रात 7:47 पर और फिर सुरसांझ कार्यक्रम में रात 10:32 पर। शाम 6:45 पर प्रायोजित कार्यक्रम सुनिए ऑर्गन इंडिया। शाम 7 बजे पार्श्व गायक अनूप जलोटा द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। हवा महल कार्यक्रम में रात 8 बजे सुनो कहानी के अंतर्गत मुंशी प्रेमचंद की कहानी पीसनहारी कुआं का भाग पहला प्रसारित किया जाएगा। कार्यक्रम चित्ररूप होगा रात 8:15 रात 9 बजे सुनिए।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारी आज रात तक प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, पहले 1:05 पर हिंदी में हमारे केंद्र से, उसके बाद 1:10 पर पंजाबी में आकाशवाणी के जालंधर केंद्र से।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप आशुतोष से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
2: जो फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा।
1: वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने महाप्रबंधक स्तर के वरिष्ठ पेशेवर पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित किए हैं। संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिभा सेतु पोर्टल द्वारा 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने पेपर लीक और परीक्षा संबंधी अन्य अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल एसटीएफ का गठन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये कार्यबल लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत आता है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि इस विशेष कार्यबल द्वारा अलग अलग प्राधिकारियों की ओर से आयोजित होने वाली पब्लिक परीक्षाओं से जुड़े अपराधों की जांच तेजी से और पेशेवर तरीके से की जाएगी। इनमें संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के साथ साथ केंद्र सरकार के मंत्रालय या विभाग और स्टाफ की भर्ती के लिए उनसे जुड़े हुए और अधीनस्थ कार्यालय शामिल हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तथा केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल गुरुग्राम में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं वायु गुणवत्ता सुधार उपायों को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली के विस्तार, इलेक्ट्रिक वाहनों एवं बसों को बढ़ावा देने, पुराने वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई, नो PUCC नो फ्यूल व्यवस्था, निर्माण एवं विध्वंस व अपशिष्ट प्रबंधन, ठोस कचरा निस्तारण, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर कार्रवाई तथा धान की पराली के प्रभावी प्रबंधन सहित विभिन्न विषयों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में हरियाणा के वन पर्यावरण एवं वन्य जीव मंत्री राव नरबीर सिंह भी उपस्थित रहे। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि एनसीआर में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच और अधिक बेहतर समन्वय के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। हरियाणा ने क्षय रोग के खिलाफ अभियान में टीबी मुक्त भारत ऐप पर 35,229 पंजीकरण के साथ देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ ही राज्य में टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट TPT का कवरेज बढ़कर 49%, NAAT आधारित मॉलिक्यूलर जांच का कवरेज 67% तथा पात्र मरीजों के लिए डिफ्रेंशिएटेड टीबी केयर का कवरेज 71% तक पहुंच गया है। यह जानकारी मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान की बैठक में दी गई। हरियाणा साइबर अपराध के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई में देश के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शुमार हो गया है। साइबर ठगी के पीड़ितों को धनवापसी तथा अंतर्राज्यीय तालमेल के मामलों में राज्य का प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से कहीं बेहतर रहा है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक साइबर चारूबाली ने बताया कि

22 जुलाई 2026 तक प्राप्त 14,731 साइबर अपराध मामलों में हरियाणा ने 38% मामलों में पीड़ितों को धन वापसी के आदेश जारी किए, जबकि राष्ट्रीय औसत मात्र 8% है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 28 से 30 तारीख तक कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि आज और 27 तारीख को कुछ जगहों पर और कल इक्का दुक्का जगहों पर बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने हरियाणा में 28 और 29 तारीख को इक्का दुक्का जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान भी लगाया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: आइए अब सुनते हैं फिल्म धनवान का ये गीत लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाजों में।

आइए अब सुनते हैं फिल्म 1942 अ लव स्टोरी का ये गीत कुमार सानू की आवाज में। गीतकार जावेद अख्तर और संगीतकार हैं आर डी बर्मन।

0: तो इसी गीत के साथ आज का कार्यक्रम फिल्म संगीत को समाप्त करने की दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है, घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करने लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जेड़ा समझे तुहाड़ी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस, ते करे हर काम एकदम तेजी नाल, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा च ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो, शर्तां लागू।
2: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुरीला सफर। ये कार्यक्रम हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे।
3: इंसान पर निर्भर करता है कि उसमें कितना आत्मबल है कि वो संसार के रचयिता पर विश्वास करते हुए नकारात्मकता को छोड़कर उस निराशा को आशा में बदलते हुए फिर से हिम्मत करके कदमों को आगे बढ़ाते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं, और जो निराशा का ही दामन थामे रहते हैं वो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाते। इसलिए आशावान रहना ही जीवन की सच्चाई है। हमारे कौर साथी कहते हैं कि जीवन की निरर्थकता का बोध ही घोर निराशा और नकारात्मकता है। कभी कभी मनुष्य अर्थहीनता की स्थिति से जूझता है तो मनुष्य का चेतन और अवचेतन दोनों ही पीड़ा से घिर जाते हैं। जीवन इच्छाओं और संभावनाओं का अनंत सागर है, इसलिए जीवन में दुख और निराशा उत्पन्न होती है। मनुष्य का अवचेतन मन दमित इच्छाओं का मार्ग है। जागृत अवस्था की नकारात्मकता जब मानसिक प्रतिरोध तोड़ देती है तो स्वप्न में दबी हुई पीड़ा अवसाद और आंसुओं के माध्यम से बाहर निकलती है। तो जरूरी तो यही है कि उस पीड़ा, उस निराशा, उस नकारात्मकता को बाहर निकाल दिया जाए, और जरूरत तो ये भी है कि बातों के साथ साथ गीतों का सिलसिला भी जारी रखा जाए। तो चलिए ये गीत आपको सुनवाते हैं, और इस गीत को हमने लिया है सीमा फिल्म से। ये बताइए कि इसमें नजर कौन आती है।

0: पुराना पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: जरूरत हो सकता है वो ज्यादा उन्हें आरामदायक लगते हों या कुछ बातें हों, उनके मन के बारे में भी जानना जरूरी है। कभी कभी हम दूसरे ने क्या किया ये बात जब देखते हैं तो इससे जो दुख हमारे मन में आता है या बहुत सी असंतोष पैदा जब होता है तो ये भी दुख का बड़ा कारण होता है, जिसका निवारण हमारे हाथ में ही होता है। हमारे

साथ ही कह रहे हैं कि जब मन दुखी, उदास और निराश होता है, किसी भी काम में मन नहीं लगता और चारों तरफ अंधेरा या खालीपन सा महसूस होता है, तब मुकेश जी का गाया गीत याद आता है, जाऊं कहां बताए दिन, दुनिया बड़ी है संग दिल। वहीं हमारे साथी का कहने कि अपने से बिछड़ने का दुख सबसे ज्यादा निराश करता है, पर ये गीत उसके लिए परफेक्ट है। किसी जो भी गीत उन्होंने सुना उसमें से एक गीत के बारे में ये कह रहे हैं। हमारे एक और साथी का कहना है कि दूसरों का दुख दर्द देखकर मेरा दिल गहराई से भर उठता है। जब भी किसी को तकलीफ में देखता हूं तो उसकी वेदना जैसे मेरी अपनी बन जाती है। मन इस कदर भावुक होता है कि पूरे दिन उदासी की गहरी परत सी छाई रहती है। सोचता हूं कि काश मैं हर किसी के आंसू पोंछ पाता। आज भी ऐसा ही हुआ, किसी की पीड़ा ने भीतर तक झकझोर दिया और पूरा दिन एक अनकहे भारीपन और उदासी में बीत रहा है। अति संवेदनशीलता भी कभी कभी हमारे दुख का कारण होती है, तो उनके लिए अगर हम जो कर सकते हैं वो करना चाहिए। और ये देखिए, एक बात हमें याद रखनी चाहिए हमेशा कि भाई, हर एक व्यक्ति का दुख दूर करना या हर एक व्यक्ति की परेशानी दूर करना तो ईश्वर के हाथ में भी नहीं है। तो इस वजह से हम तो केवल मानव हैं, तो ये सोचना चाहिए कि हर चीज कर लेना हमारे बस की बात नहीं है, और इसलिए दुखी होना भी ये हमारे बस में है कि हम इसलिए दुखी ना हो। हमारे एक और साथी कहने कि जीवन में सुख और दुख दोनों आते ही रहते हैं। सुख के क्षणों में साथ देने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन जब कठिनाई आती है तब परिवार ही है जो हर परिस्थिति में हमारा हाथ थामे रखता है। गीत उन्होंने बताया, बाहरो मेरा जीवन भी संवारो। हमारे एक और साथी कहने कि जब भी मन किंग कर्तव्य मूड की स्थिति में हो जाता है तो ये गीत हौसला बढ़ाते कि समझौता गमों से कर लो। हमारे एक और साथी कहने की आवाज देकर मुझे तुम बुलाओ, बहुत उदास हूं मैं, मुझे गले लगा लो। जब भी ये दिल उदास होता है ये गीत इन्हें काफी पसंद है। जो सैड गीत कौन से पसंद है हमने पूछा था। हमारे एक और साथी कहने की कबीर सिंह फिल्म का गाना तुझे कितना चाहने लगे हम, जुबिन नौटियाल ने सिखाया है, ये गाना इन्हें बहुत पसंद है। हमारे एक और साथी बता रहे हैं कि यूं ही दिल ने चाहा था रोना रुलाना, ये गीत इन्हें पसंद है। और हमारे कुछ साथी बता रहे हैं कि उनकी लिस्ट में से गीत शामिल हो गए हैं। एक और साथी का कहना है कि निराशावादी लोगों की जगह हंसमुख स्वभाव वाले लोगों के साथ समय गुजारना चाहिए। भाई ये तो एक अच्छी बात है कि अच्छी संगति हो या खुश मिजाज लोगों के साथ अगर जब हम होते हैं तो हम भी खुश रहते हैं ऐसा लगता है। लेकिन कभी कभी जो ये हम सोचते हैं कि निराशावादी लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, ये जो दिन भर ये उदास रहते हैं इनके साथ नहीं रहना चाहिए, ऐसे वक्त में ही उस व्यक्ति को ये लगता है कि जब हम निराश हैं या हम उदास हैं तो लोगों को हमसे कोई मतलब नहीं और उन्हें और ज्यादा निराश कर सकते हैं। तो हम कोशिश कर सकते हैं कि उनके साथ उनकी जो दुख तकलीफ हैं उन्हें बांटने की कोशिश कर सकते हैं और उनके वो दोस्त बन सकते हैं जो जिसकी उन्हें तलाश है ना। तो चलिए अब सुनवाते हैं कार्यक्रम का एक ऐसा ही गीत। आपको ये बताना है कि किस फिल्म से ये गीत हमने लिया।

0: कालिया फिल्म का ये गीत।
1: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है, घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करने लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जेड़ा समझे तुहाड़ी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस, ते करे हर काम एकदम तेजी नाल, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो, शर्तां लागू।
0: पसंद है ऐसा कहा हमारी कॉल साथी, कह रहे कि मुकेश जी के दर्द भरे गीत बहुत अच्छे लगते हैं। एक साथी कहते हैं मेरे महबूब कयामत होगी, ये गीत उन्हें बहुत पसंद है। और हमारे और साथी उन्हें गीत कौन सा बताया बताएं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि धूप बहुत है राहों में, पर छांव भी कभी मुस्कुराएगी, गम का मरुस्थल लंबा सही पर हरियाली लौट कर आएगी, तारे सुन सुनकर थके पैर अब ताने सुन सुनकर थके पैर अब मंजिलों की ओर बढ़ेंगे, सुख दुख के ताने बाने में सहयोग के धागे बुन लेंगे। ये इन्होंने लिख भेजा है सकारात्मक लघु काव्य आज की भारत से संबंधित। और उन्होंने कहा कि मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना है। इस तरह से उन्होंने अपने पसंदीदा गीतों की लिस्ट भेजी। हमारे एक और साथी कहते हैं कि निराशा या नेगेटिविटी इंसान को जब आती है उसके मन को यह एहसास होता है कि अब मुझे हर कोशिश कार्य में असफलता मिल रही है, पर उसी इंसान को जब कोई आशा की किरण किसी विचार से या किसी व्यक्ति से मिलती है तो वो पुनः निराशा छोड़ कार्य करने लगता है। जीवन में आशा और निराशा आती रहती है। कुछ गीत जो इस विषय में है, मन रे तू काहे न धीर धरे, और भी बहुत से गीतों के बारे में इन्होंने लिख भेजा है। वहीं हमारे एक साथी हैं वो कहते हैं ऐ मेरे दिल कहीं और चल, ये गीत उन्हें बहुत पसंद है। निराशा की राह छोड़ो, आशा का दीप जलाओ, हमारे एक साथी कह रहे हैं। एक और साथी कहते हैं कि अंधेरा कभी प्रकाश को नहीं हरा सकता, एक छोटा सा दीपक भी अंधेरे को दूर कर देता है। उसी तरह एक सकारात्मक विचार अनेक नकारात्मक विचारों पर भारी पड़ सकती है। तो हमारे एक और साथी का कहना है देख सकता हूं मैं कुछ भी होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए, ये गीत उन्हें पसंद है। इस तरह से जब कोई चुप करवाने वाला हो या समझाने वाला हो तो भी निराशा बहुत जल्दी दूर हो जाती है, जैसे कि इस गीत में। बताइए कि ये गीत किस फिल्म का है।

जाने तू या जाने ना फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। राशिद अली की आवाज, अब्बास टायरवाला के बोल या रहमान का संगीत, और फिल्म का नाम बिल्कुल सही आपने बताया। तो कभी कभी अगर कोई हो ऐसा जो हमें बता दे कि भाई इतना फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से रह सकते हैं और हम सभी आपके साथ हैं, तो उस दुख से ऐसा मत कहिए कि बिल्कुल ये दुख भूल जाओ और कल से तुम्हें बिल्कुल हंसते रहना है। ऐसा कहना तो बड़ा ही अजीब होता है, क्योंकि भाई ऐसा कहने से तो कोई फायदा नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी अगर दुख में डूबा है, निराशा में डूबा है, तो अचानक से उठ खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन आपका साथ उसे धीरे धीरे उस चीज से बाहर ला सकता है। हमारे एक साथी कहने की वैसे तो मैं आशावादी ही हूँ, माता रानी की असीम कृपा है। जब भी कभी उदास या दुखी होता था या कभी कभी उदास होता हूँ, तो शादी से पहले मेरी माता जी हमेशा मेरी हिम्मत बढ़ाती थी, शादी के बाद और अभी तक मेरी धर्मपत्नी मेरे उत्साह और हिम्मत बढ़ाती, और तो और मेरी दोनों बेटियां मेरी परेशानियों में कहती हैं कि पापा जी हमें बेटियां ना समझकर अपने बेटे समझो, हमें परेशानी बताइए, हम हैं ना। तो भाई बेटियों को भी परेशानी बताई जा सकती है, जरूरी नहीं है कि परेशानी सिर्फ बेटों को बताई जाए, लेकिन फिर भी ये उनका अपना एक तरीका है बात करने का। हमारे एक और साथी कह रहे हैं, सुख और दुख तो दुख छांव धूप छांव की तरह है जो जीवन में आते ही रहते हैं, जैसे हमारा एक पैर आगे चलता है और दूसरा पीछे। लेकिन क्या कभी किसी ने सुना है कि रात में रोक ली हो सूरज की रोशनी? तो हमेशा आदमी को पॉजिटिव सोचना चाहिए, और इस मामले में गीत हमारा बहुत साथ देते हैं। और जब मैं टेंशन में होती हूँ तो अपने पसंदीदा गीत सारे गीत गा लेती हूँ और मेरी टेंशन 80% तक दूर हो जाती है। आप इसे ट्राई कर सकते हैं, अगर आपके पास अच्छा मित्र हो तो क्या कहना, और क्या हर सफर आसानी से कट जाता है। वहीं हमारे एक साथी का कहना है कि दुखी होना सिर्फ समय नष्ट करता है, कुछ हाथ तो आता नहीं, इसलिए लगता है कि दुखी होने से फायदा ही क्या है, जो है गुजर जाएगा, ये एक बात बहुत ज्यादा मन को सुकून देती है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जीवन की जटिलता से जुड़ी चीजें आज की इबारत में शामिल है। इस बेहद चुनौतीपूर्ण जिंदगी से गुजरते हुए आदमी का मन कभी कभार बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, कुछ लोग तनाव के कारण बीमार पड़ जाते हैं। आज इस कार्यक्रम के लिए मुझे दिलीप की दुकान फिल्मों की याद आ रही है, दिलीप कुमार की बात वो कह रहे हैं, उनकी फिल्म दिल दिया दर्द दिया का एक गाना, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, ये गीत भी आज के कार्यक्रम के लिए उन्हें लगता है कि बिल्कुल सटीक बैठता है। और बहुत सी बातें हमारे साथी कह रहे हैं कि हमें लेकिन ये बताइए कि वो कौन सा हैप्पी या कहें कि उम्मीदों भरा गीत है जो आपको दुख जब बहुत ज्यादा होता है और आप दुखी गाने सुन सुनकर परेशान हो जाते हैं और ज्यादा दुख में डूब जाते हैं, तो वो कौन सा एक उत्साहवर्धक गीत है जो आपका उत्साहवर्धन करता है और आपको उस दुख से बाहर आने में मदद करता है। हो सकता है कोई दुखी गीत ही हो जो आपको आगे आने के लिए मदद करता हो और वापस उठ खड़े होने के लिए और एक आशा उम्मीद रखने के लिए मदद करता हो, हमें बताइए। तब तक हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का ये गीत। फिल्म का नाम बताइए।

नया दौर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और फिल्म का नाम बिल्कुल सही बताया। और जाने तू या जाने ना फिल्म का जो गीत हमने सुनवाया था, हमारे बहुत से साथियों ने कहा कि भाई हम तो हैं सीनियर सिटीजन और हमें तो इस के बारे में पता नहीं, सिलेबस से बाहर की चीज है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे कि मुकेश से अपनी दोस्ती शुरू से रही, अब तो पत्नी भी नहीं रही, तो मुकेश के गाने ज्यादा अच्छे लगते हैं। परिवर्तन नियति है, हर रात के बाद सवेरा होता ही है, इसी तरह दुख का भी अंत होता है, सुख भी आता है, पतझड़ के बाद नई कोपलें भी आती हैं, ऐसा हमारे साथी कह रहे हैं। हमारे साथी ने बताया कि वो देर से शामिल हुए तो तेरी आंखों के आंसू पी जाऊं, ऐसी तो मेरी तकदीर कहां, ये गीत उन्हें पसंद है। फिल्म जाने तू या जाने ना का गीत के बारे में हमारे साथियों ने बताया। और हम ये बताना चाहते हैं कि जब आप कह रहे हैं कि बिल्कुल कभी कभी पुराने गीतों को ही ज्यादा जानते हैं और नए गीत सिलेबस से बाहर के जब लग रहे हैं, आप ऐसा कह रहे हैं, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको जिस तरह से सुख और दुख के बारे में बता रहे हैं, उसी तरह से पुराने जमाने और नए जमाने दोनों से अपडेट रखें। तो एक गीत फिर से आपके लिए नए जमाने का, ये बताइए कौन से फिल्म का गीत है।

दोस्तों, आजकल दुनिया से भोलापन यानी मासूमियत जैसे गायब होती जा रही है। जरूरत पड़ने पर बहुत चालाक और बड़े व्यवहार कुशल लोग अपने भोलेपन का स्वांग जरूर रच लेते हैं, लेकिन जल्दी ही ओढ़ी हुई मासूमियत गायब हो जाती है। लेकिन हमारा तो ये कहना है कि उम्र के हर पड़ाव में थोड़ी मासूमियत, थोड़ा भोलापन बचा कर रखना चाहिए अपनी जिंदगी के लिए, क्योंकि जो मासूम है वो ही किसी से सच्चा प्यार कर सकते हैं, जो भोले हैं वही किसी की भलाई कर सकते हैं।

हाँ तो दोस्तों, बात चल रही थी मासूमियत की। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे मासूमियत गुम होने लगती है। लेकिन जो लोग छल प्रपंच से अपने को दूर रख पाते हैं, जो लोग दूसरों से कम नफरत करते हैं, जो लोग हर परिस्थिति में अपने आप को खुश रख लेते हैं, जो लोग हमेशा दूसरों में बुराई नहीं ढूंढते, जो लोग मन में कुछ और बाहर कुछ और वाला बर्ताव नहीं करते, वो लोग लंबे समय तक अपनी मासूमियत बचाए रखने में कामयाब हो सकते हैं। तो हमारा भी यही कहना है दोस्तों, कि कितने भी हो जाइए समझदार, कितने भी हो जाइए चतुर और व्यवहार कुशल, लेकिन मन के किसी कोने में बचाए रखिए अपनी मासूमियत।

दोस्तों, बच्चों में एक किस्म का भोलापन होता है और इसे उम्र भर कायम रखना चाहिए, लेकिन आज ये भोलापन बच्चों में भी जैसे समाप्त हो रहा है। आजकल के बच्चे इतने सयाने, इतने व्यवहार कुशल और तेज हो गए हैं कि उतने किसी जमाने में नहीं थे। आजकल के बच्चे कम, सयाने ज्यादा लगते।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, मरने वालों की संख्या 61 हुई। 1,00,000 से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर संभव सहायता का आश्वासन। वर्षा प्रभावित गुजरात में बचाव और राहत कार्य जोरों पर, 40,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिन तक स्थगित रहने के बाद श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू। सरकार और सीजेपी के बीच परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर आज तीसरे दौर की बातचीत। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पेपर लीक और उससे जुड़ी अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालत गठित की। स्क्वैश में भारत के अनाहत सिंह विश्व जूनियर चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। और क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 1,00,000 से अधिक लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित जिले शिवसागर, चराई

0: देव और जोरहाट हैं। ताजा रिपोर्ट के अनुसार बाढ़ से संबंधित मामलों में 14 और लोगों की मौत हुई। इनमें चराईदेव में 7, शिवसागर में 6 और जोरहाट में 1 व्यक्ति की मृत्यु हुई है। एक रिपोर्ट।
1: राज्य में बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 61 हो गई है। प्रमुख नदियां दीखो, देसंग और धनसरी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इससे ऊपरी असम में बाढ़ की स्थिति और भी गंभीर हो गई है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। आपदा मोचन बल, जिला प्रशासन और अन्य एजेंसियां राहत सामग्री उपलब्ध कराने, फंसे हुए लोगों को निकालने और बाढ़ प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करने में लगी हुई है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और प्रभावित जिलों राहत उपायों को तेज कर दिया गया है। गुवाहाटी से राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा से टेलीफोन पर बातचीत कर बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें राहत पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों में केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शर्मा ने कहा कि असम के लोग इस कठिन समय में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन और अटूट समर्थन के लिए उनके प्रति अत्यंत आभारी हैं। इस बीच गुजरात में मॉनसून की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है।
2: जीआरएफ की 32 प्लांटों और सेना की 6 टुकड़ियां भी विभिन्न जिलों में तैनात की गई है। लगातार हो रही बारिश से राज्य के जलाशय में जल स्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। सरदार सरोवर नर्मदा बांध में जल भंडारण क्षमता का लगभग 69% पानी भर चुका है, जबकि राज्य के 21 बांधों के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है। जल भराव के कारण यातायात और विद्युत सेवाएं भी प्रभावित हुई है। 34 स्टेट हाईवे समेत राज्य के 600 से अधिक सड़कें एहतियातन बंद कर दी गई है। वहीं मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न जिलों के लिए भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: भारतीय तटरक्षक बल ने 22 जुलाई के मध्यरात्रि से चलाए गए 11 बचाव अभियानों के माध्यम से दमन, दादरा और नगर हवेली तथा दक्षिण गुजरात के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे 170 लोगों को बचाया है। वहीं सिक्किम के नामची जिले के फामतम गांव में आज भूस्खलन के कारण 2 लोगों के मारे जाने की आशंका है। नामची के एसएसपी ने बताया कि बचाव अभियान चलाया जा रहा है। 2 घायलों को नामची जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिनों तक स्थगित रहने के बाद वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा आज फिर से शुरू हो गई है। कश्मीर के संभागीय आयुक्त अंशुल गर्ग ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि बालतल और पहलगाम दोनों मार्गों से यात्रा फिर से शुरू कर दी गई है। यात्रियों को सुरक्षित तीर्थ यात्रा के लिए प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी गई है। इस बीच 6,269 तीर्थ यात्रियों का एक नया जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से रवाना हुआ। जम्मू कश्मीर में तेज बारिश के कारण लगातार 6 दिन तक निरस्त रही श्री माता वैष्णो देवी यात्रा आज फिर शुरू हुई। इस मार्ग पर लगातार बारिश, भूस्खलन और अचानक बाढ़ आने के जोखिम के कारण यात्रा को निरस्त कर दिया गया था। तीर्थ यात्रियों को अपनी यात्रा के दौरान श्राइन बोर्ड और सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशों तथा सुरक्षा परामर्श का पालन करने और मौसम संबंधी जानकारी से अवगत रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश हो सकती है। वहीं असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार आज दोपहर नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी CJP के प्रतिनिधिमंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता करेगी। इस बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार और प्रश्न पत्र लीक की घटनाओं को रोकने के उपायों पर प्रतिनिधिमंडल की मांगों पर चर्चा होगी। ये बैठक दोपहर 3:30 बजे कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में आयोजित होगी। इससे पहले केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में CJP प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी CJP की मांगों को गंभीरता और धैर्यपूर्वक सुना है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने परीक्षा प्रश्न पत्र लीक और उससे जुड़े अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों को नामित किया है। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि आरोप पत्र दाखिल होने के 3

0: महीने के भीतर इन मामलों का निपटारा किया जाए। उच्च न्यायालय ने कहा है कि ये अदालतें राज्य और केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा भेजे गए संबंधित मामलों की भी सुनवाई करेगी। इनका अधिकार क्षेत्र आसपास के जिलों तक विस्तारित रहेगा। न्यायालय ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना तथा ऐसे मामलों में त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार अब इस घोषणा को अमल में लाते हुए 4 प्रमुख शहरों में विशेष अदालतें स्थापित कर रही है। ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के हित में शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए की थी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कल मध्य कोलकाता में कई वामपंथी संगठनों द्वारा नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में आयोजित रैली के दौरान पत्रकारों पर हुए कथित हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा में कहा कि इस घटना के संबंध में 7 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले में सख्त कानून लाने को लेकर जारी किए गए अपने वीडियो संदेश पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
1: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा।
0: वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए नया विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में अगले सप्ताह पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को भी मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि संसद के बाहर मीडिया को दिए गए बयान के साथ एआई का दुरुपयोग कर छेड़छाड़ की गई और एक डीप फेक वीडियो तैयार कर उसे गलत सूचना फैलाने के उद्देश्य से प्रसारित किया गया। सोशल मीडिया पर साझा किए गए पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि इस मामले में आज सुबह चाणक्यपुरी पुलिस थाने में FIR दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि फर्जी वीडियो बनाने, प्रसारित करने या उसे बढ़ावा देने में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर वो सोशल मीडिया पर लगातार नजर रख रही है। आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए मध्य दिल्ली के पुलिस उपायुक्त रोहित राजवीर सिंह ने बताया कि फर्जी खबरें और AI द्वारा निर्मित सामग्री फैलाने वाले 400 से अधिक सोशल मीडिया हैंडल की पहचान कर उन्हें ब्लॉक दिया गया है।
2: दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की कि बिना पुष्टि वाले दावों पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। हमारी जांच में यह भी सामने आया कि पाकिस्तान से चलाए जा रहे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स फेक कंटेंट फैला रहे हैं। दिल्ली पुलिस संबंधित एजेंसियों के एक साथ मिलकर ऐसे और अकाउंट्स की पहचान करने पर लगातार काम कर रही है। ऐसे 400 से अधिक हैंडल्स की अब तक पहचान कर ली गई है और उन्हें AI जनरेटेड कंटेंट, डीपफेक वीडियो, एडिटेड तस्वीरें और प्रदर्शन से जुड़ी अन्य झूठी सामग्री फैलाने के कारण ब्लॉक किया गया है।
0: और अभी अभी समाचार मिला है कि नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंपा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि संसद में बिताया गया हर दिन, हर घंटा, हर मिनट और हर सेकंड लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए समर्पित होना चाहिए। नई दिल्ली में आज राज्यसभा के नव निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के लिए आयोजित 2 दिवसीय ओरिएंटेशन और प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सदन में होने वाली बहस हमेशा किसी सार्थक निर्णय तक पहुंचनी चाहिए। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल NS राजा सुब्रमणि ने कहा है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शनों के कारण 30,000 सेना के जवानों ने इस्तीफा दे दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि ये वीडियो फर्जी और AI से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 400 से अधिक युवा प्रतिभागी प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने आज राज्य विधानसभा में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG की 28 लंबित रिपोर्टें पेश की हैं। इन लंबित रिपोर्ट को पेश करके पश्चिम बंगाल सरकार ने अपना किया गया वायदा पूरा किया। वित्त मंत्री स्वपन

0: विकास गुप्ता ने ये रिपोर्ट पेश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर नागरिकों को शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत की स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने आज कनाडा के ओंटारियो में खेले गए सेमीफाइनल में मिस्र के बार्ब सामेह को 3-1 से हराया। वहीं फाइनल में अनाहत का सामना आज मिस्र की रुकैया सलीम से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात करीब 10:30 बजे शुरू होने की उम्मीद है। अनाहत सिंह जोशना चिनप्पा के बाद विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 190 किलोग्राम भार उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया। इस उपलब्धि के बाद उन्होंने खुशी व्यक्त करते हुए अपने कोच और प्रशिक्षकों का आभार व्यक्त किया।
1: बहुत अच्छा लग रहा है, पहला मेडल है हमारा। हमारे पीछे कोच हैं राजेंद्र सिंह और हमारा JP सर हैं, वो भी बहुत सहयोग किए हैं। आज उन्हीं सब बदौलत हमें आज मेडल प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हम पे आज इतना प्रैक्टिस करवाए, प्यार दिए और भी आगे हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथलीट झंडू कुमार को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कुमार के प्रदर्शन को शानदार बताते हुए कहा है कि ये उपलब्धि उनकी अदम्य शक्ति, अटूट दृढ़ संकल्प और वर्षों के अनुशासित प्रयासों का सशक्त उदाहरण है। क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार 4:30 बजे शुरू होगा। आकाशवाणी कार्यक्रम पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत हम करगिल युद्ध के जाबाज योद्धा और भारत के पहले ब्लेड रनर सेवानिवृत्त मेजर DP सिंह से बातचीत करेंगे। इस बातचीत को आज शाम 5:10 से 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। श्रोता कार्यक्रम को न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम का पुनः प्रसारण कल दोपहर 12:30 से किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दिया। सरकार और CGB के बीच परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर आज तीसरे दौर की बातचीत। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पेपर लीक और उससे जुड़ी अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालत गठित की। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, मरने वालों की संख्या 61 हुई। 1 लाख से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर संभव सहायता का आश्वासन। वर्षा प्रभावित गुजरात में बचाव और राहत कार्य जोरों पर, 40,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिन तक स्थगित रहने के बाद श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू। और खेलों में स्क्वैश में भारत के अनाहत सिंह विश्व जूनियर चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। वहीं क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

जी एस कोहली का संगीतबद्ध किया ये गीत आप सुन रहे थे फारूक कैसर के बोल्ड शिकारी फिल्म के। इस गीत में आवाजें लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और आपको बता दें कि शाम 4 बजे आज बॉम्बे टॉकीज में आप सुन सकेंगे फिल्मी दुनिया के मशहूर संगीतकार दिलीप सेन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत।

जीएस कोहली का संगीतबद्ध ये गीत आपने सुना नमस्ते जी। फिल्म के इस गीत को लता मंगेशकर ने गाया और अनजान के बोल थे। कार्यक्रम सदाबहार नक में विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। आइए अब सुनते हैं उजाला फिल्म से ये गीत। मोहम्मद रफी और मुकेश की आवाजें, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यहाँ भी दिल है यूँ हमसे न कतराओ, यहाँ भी दिल है यूँ हमसे न कतराओ, यारो सूरत हमारी पे मत जाओ।

0: यहाँ भी दिल है यूँ हमसे न कतराओ, यहाँ भी दिल है यूँ हमसे न कतराओ, यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यारो सूरत हमारी पे मत जाओ।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
3: और आ गया।
4: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
5: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: सुनिए
7: विविध भारती पर, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

गूंज उठी शहनाई फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीता दत्त और लता मंगेशकर की आवाजें, भरत व्यास के बोल, वसंत देसाई का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर सुन रहे हैं।

दिल वाले का सवाल सुनो, वहां खड़े तुम यहां खड़े।

मजरूह सुल्तानपुरी के बोल उषा खन्ना का संगीत कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। और अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और सुबीर सेन की आवाजों में ये अगला गीत। छोटी बहन फिल्म के इस गीत को हसरत जयपुरी ने लिखा और शंकर जयकिशन ने संगीत से सजाया।

छोटी बहन फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। सुबीर सेन और लता मंगेशकर की आवाजें, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। आपको याद दिला दें कि आज शाम 4 बजे बॉम्बे टॉकीज में आप सुनेंगे फिल्मी दुनिया के संगीतकार दिलीप सेन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। और कार्यक्रम सदाबहार नगमे में आइए अब सुनते हैं मुगले आजम फिल्म से ये गीत, लता मंगेशकर की आवाज, शकील बदायूनी के बोल, नौशाद का संगीत।

0: मन चाहेगी।
1: मन चाहेगी
0: मन चाहेगी।
1: विविध भारती पर मन चाहे गीत कार्यक्रम के साथ हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और कार्यक्रम में आगे बढ़े, आपकी फरमाइशी गीतों की फरमाइश पूरी करें, उससे पहले जानते हैं आज के जो ये कार्यक्रम है मन चाहे गीत, उसमें पत्र भेजने का क्या तरीका है और क्या है नियम।
0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।

0: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
1: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
0: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है। कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी। कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें। अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
1: कार्यक्रम मन चाहेगी,
0: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400

0: की कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है। कृपया धैर्य बनाए रखें।
1: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी। कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें। अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
2: कार्यक्रम मन चाहेगी,
0: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
1: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
3: तो कार्यक्रम मनचाहे गीत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और कार्यक्रम का पहला गीत किसकी फरमाइश पर सुनवाने वाले हैं ये तो बताएंगे ही, लेकिन वो गीत है मेरे हुजूर फिल्म से, ये आपको पहले बता रहे हैं। और इसकी फरमाइश आई है न्यू ईदगाह कॉलोनी कानपुर उत्तर प्रदेश से, मोहम्मद अहमद रायनी, अबरार अहमद रायनी, शकीला बेगम रायनी, बद्री प्रसाद यादव, सौरभ सोनवानी, एम ए कानपुरी, आर के कानपुरी ने भी इस गीत की फरमाइश यहीं से भेजी है। और दतरंगी भाटापारा से नोखिलाल वर्मा, पारस मणि वर्मा और पुष्पेंद्र मणि वर्मा भी सुनना चाहते हैं मेरे हुजूर फिल्म से गीत। मोहम्मद रफी की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। अपनी पसंद पर सुनिए ये गीत।

मेरे हुजूर फिल्म का ये गीत आपने सुना। मन चाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और अब कार्यक्रम का अगला गीत जिनकी फरमाइश पर जिनकी पसंद पर हम सुनवा रहे हैं उनके नाम है न्यू मार्केट टीटी नगर भोपाल से अजय शीतल जो कि अपनी पत्नी के लिए ये गीत सुनना चाहते हैं। चार डोंगरी पिपरिया जिला कबीरधाम से दुर्गा राम साहू अजय कुमार साहू किशन साहू जय कुमार श्रीमती कुमारी साहू श्रीमती इंद्राणी माया साहू आप सभी की पसंद पर जहां आरा फिल्म से ये गीत सुनिए आवाज तलत महमूद की।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: जल्दी बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए
6: विविध भारती पर, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत, और जिसके मन चाहे गीत को हम सुनने वाले हैं उनके नाम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको गीत सुनवा दें। लीडर फिल्म से एक गीत सुनिए, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें, शकील बदायूनी के बोल, नौशाद का संगीत, और गीत के बाद बताएंगे कि किसकी पसंद पर सुनवाया ये गीत।

0: मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में शकील बदायूनी के बोल आपने सुने। नौशाद का संगीत, फिल्म लीडर से गीत आपने सुना और इस गीत की फरमाइश हमें आई थी जोधपुर राजस्थान से मोहम्मद अफजल, मोहम्मद इजान, सनोवर रानू, हुमेहानी और साथ ही नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त केरव, ज्योति रानी, गुरमनंत ने भी इसी गीत की फरमाइश की थी। कार्यक्रम मनचाहे गीत विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और अगला मनचाहा गीत है सगीना फिल्म से और इस गीत को सुनना चाहा है आप सभी ने मछली गोदाम कैदी मुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह, ऋषभ सिंह, प्रियंका, पूजा सिंह, लीलू और रितु सिंह, सेक्टर 18 जगाधरी हरियाणा से विनय मोहन, मीनाक्षी प्लोमा और डॉक्टर ईशानी, आप सभी की पसंद पर सभी को सुनवा रहे हैं सगीना फिल्म से गीत और इस गीत में आवाज किशोर कुमार की।
1: साला मैं तो साहब बन गया, अरे साला मैं तो साहब बन गया, ए साहब बन के।

0: फकीरे वाह फकीरे सूट पहन कर कैसा कूदे फांदे वाह फकीरे वाह फकीरे सूट पहन कर कैसा कूदे फांदे कौआ जैसे पंख मयूर का अपने दुम में बांधे अपने दुम में बांधे
1: अपने दुम में बांधे
0: अरे क्या जाना हम इस भेजा में क्या क्या नक्शा खींचा क्या जाना हम इस भेजा में क्या क्या नक्शा खींचा लीडर लोग की ऊंची बातें क्या समझे तुम नीचा क्या समझे तुम नीचा मेरा वो सब जाहिल बन गया इस साला में तो साहब बन गया
1: Attention!
0: साला में तो साहब बन गया ए साहब बन के

तेली या गंगू तेली, तुम लंगोटी वाला ना बदला है ना बदलेगा, तुम लंगोटी वाला ना बदला है ना बदलेगा, तुम सब काला लोग का किस्मत हम साला बदलेगा, हम साला बदलेगा।

सगीना फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार और पंकज मित्रा की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन की तर्ज, और कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मन चाहे गीत। तो किसी की पसंद पर वो गीत तो हमने सुनवा दिया, लेकिन अगला गीत किसकी पसंद पर है ये आपको बताते हैं। अगला गीत है गिरधारी लाल दुआ, महितपुर जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से इन्होंने अपनी पसंद भेजी है। साथ ही सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता सुनीता पिंकेश साक्षी मनन और तानिया इन्होंने भी अपनी पसंद भेजी है। और आप सभी की पसंद पर हम सुनवाने वाले हैं सिंग इज किंग फिल्म से गीत। लव जैन जुनेजा ने इसे और सुजी क्यू की आवाजें हैं, मयूरपुरी के बोल प्रीतम का संगीत। तो सुनिए आप सभी की पसंद पर ये गीत।

सुजैन डिमेलो और लव जंजुआ की आवाजों में आपने सुना सिंह स्किंग फिल्म का ये गीत। मयूर पुरी ने से लिखा, प्रीतम का संगीत। अब कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाते हैं। मनचाहे गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर। इतिहास फिल्म से ये गीत सुनने की फरमाइश आई है। मन्नत खान, समारा खान, मोहम्मद अजान, सैफ अली खान, मोहब्बत अली, रजाक अली, नथु खान सेमपुरा बीकानेर से आप सभी हैं, और बाबा बैजनाथ धाम झारखंड से मनोज केशरी, पूजा केशरी, महादेव केशरी, श्रद्धानंद केशरी, रोशनी केशरी की पसंद भी है चोरी चोरी। ये गीत सुनना चाहते हैं इतिहास फिल्म से। अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजें, समीर के बोल, दिलीप सेन, समीर सेन का संगीत। तो सुनिए ये गीत आपकी पसंद पर।

0: इस गीत के साथ ही आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा, मुझे दीजिए इजाजत।
1: मन चाहे गीत
2: मन चाहे गीत
1: मन चाहे गीत।

0: विविध भारती।
1: नाट्य तरंग कार्यक्रम में लीजिए सुनिए डॉक्टर रणवीर सक्सेना का लिखा नाटक वो मंजिल कहाँ, निर्देशक स्वतंत्र कुमार ओझा।

0: हेलो, रीता स्पीकिंग। जी हाँ, मैं रीता बोल रही हूँ। आप? अरे सचिन, हाँ हाँ मैं हूँ रीता। क्या कहा? कब? अस्पताल? अच्छा अच्छा, मैं अभी आती हूँ।
1: क्या बात है रितु, किसका फोन था?
0: सचिन का फोन था। पापा हरीश आ गया है, मैं जा रही हूँ।
1: कहाँ आ गया हरीश? रितु,
2: प्रिय महोदय, आपके प्रार्थना पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि हमारे यहाँ भी कोई स्थान रिक्त नहीं है। आप क्या फरमाते हैं? डियर सर, आई रिग्रेट टू से दैट द पोस्ट ऑफ द पब्लिक रिलेशन ऑफिसर एडवर्टाइज्ड बाय अस हैज सिंस बीन फिल्ड अप। हाउएवर, सम पोस्ट ऑफ लोअर डिवीजन क्लर्क्स आर स्टिल लाइंग वेकेंट। लोअर डिवीजन क्लर्क? और आपके सिंहासन पर बैठाने वाले हैं जनाब चंद्रा साहेब। हमारे मदरसे में अंग्रेजी के मुदर्रिस की जगह खाली है, लेकिन हमें अफसोस है कि हमारी माली हालत इस वक्त नाजुक है, इसलिए हम आपको फिलहाल 100 रुपया महीना से ज्यादा तनख्वाह नहीं दे सकेंगे। हिंदुस्तान की मशहूर यूनिवर्सिटी के एमए पीएचडी को 100 रुपया महीना की मास्टरी?
3: क्या मैं अंदर आ सकता हूँ?
2: तुम भी आ गए कंगाली में आटा गीला करने।
3: वो तो आना ही था।
2: पहले सिगरेट तलब करोगे, थोड़ी देर मेरा दिमाग खाओगे और फिर चाय की मांग करोगे।
3: ओफो, तो इसमें परेशानी की क्या बात है? तुम्हारे ऑस्कर वाइल्ड ने ही तो कहा था कि जब मैं कर्ज में होता हूँ तो हर खर्च बर्दाश्त कर सकता हूँ।
2: मेरी हालत तो इससे भी बदतर है जाने मन। मुझे 100 रुपये महीने की मास्टरी मिल रही है। जो लोग इस उम्मीद में कर्ज दिए जा रहे थे कि डॉक्टर हरीश चंद्र आज नहीं तो कल किसी बड़ी कुर्सी पर बैठेंगे, वे भी मेरी मास्टरी देखकर कर्ज देना बंद कर देंगे।
3: अच्छा, वेरी गुड। क्यों हरीश, कोई कारोबार क्यों नहीं कर लेते?
2: कारोबार के लिए पूंजी कहां से लाऊंगा? तुम्हें तो मालूम है अख्तर, पिताजी जो कुछ छोड़ गए थे वो सब पढ़ाई में खत्म हो गया। अब सिवा कर्ज के मेरे पास कुछ नहीं है।
4: अरे अच्छा, क्या साजिश हो रही है?
2: अभी तो नहीं हो रही थी, लेकिन अब आप तशरीफ लाए हैं तो जरूर होगी। क्यों
4: जरूर होगी? ओहो जनाब अख्तर साहब, 100 टाइम
3: आधा वर्ष। मियां
4: मैं पूछता हूँ, आखिर बात क्या है? कोई पार्टी वार्टी है क्या?
3: अरे मियां, पार्टी वार्टी कुछ नहीं है। हरीश की बेकारी पर मातमपुरसी करने चला आया था।
4: भाई देखो अख्तर भाई, अगर बेकारी के लिए मातमपुरसी होने लगे ना, तो ये देश मातमपुरसी के सिवाय और कुछ नहीं कर सकेगा। ये मेरी अपनी राय।
3: तो और करता भी क्या है?
4: देखो हरीश, ये बेकारी का सवाल तुम व्यक्तिगत सवाल मत समझो, ये पूरे समाज और सारे देश का सवाल है।
2: सचिन, व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत सवाल नहीं, तो और क्या है? बेकार इंसान को जिन कमियों का सामना करना पड़ता है, समाज में जिन अपमानों का शिकार होना पड़ता है, वे सब इंसान भोगता है, क्योंकि इंसान के मन होता है, आत्मा होती है।
4: हाँ, मैं मानता हूं ये सही है कि व्यक्ति के मन होता है, आत्मा होती है, और समाज का कोई मन नहीं होता, कोई आत्मा भी नहीं होती। लेकिन मैं फिलॉसफी की चर्चा नहीं कर रहा, मैं ये कहना चाहता हूँ हरीश के इस समस्या का इलाज व्यक्तिगत रूप से नहीं हो सकता, सामाजिक इलाज से ही समस्या को सुलझाया जा सकता है। ये मेरी अपनी राय।
3: यानी आपकी नेक सलाह ये है कि डॉक्टर हरीश चंद्र इनकलाब का परचम ऊंचा कर सड़कें नापने का काम शुरू कर दे।
4: जी हाँ, पर अकेले नहीं, बल्कि और बेकारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, क्योंकि इनकलाब के बिना बेकारी खत्म नहीं हो सकती।
2: सचिन, तुम्हारे विचार में जानता हूं, तुम हर मर्ज का इलाज अपनी पार्टी के इशारे पर होने वाली क्रांति में देखते हो, लेकिन ये तो बताओ

0: कि क्रांति होने तक बेकार इंसान क्या करेगा।
1: सचिन ये भी गौरतलब है कि इनकलाब गुत्थियां सुलझाने से ज्यादा नई गुत्थियां पैदा करता है, और अक्सर होता यह है कि बुलंद इरादों से शुरू किए इनकलाब बेहाथ होकर ऐसे रास्तों पर चल निकलते हैं कि मंजिल दूर के दूर रह जाती है।
2: अख्तर तुम ये क्या बातें कर रहे हो, तुम बिल्कुल रिएक्शनरी हो, तुम इनकलाब का ना मतलब समझते हो और ना ही उसकी ऐतिहासिक अनिवार्यता।
3: अरे अरे ये तुम दोनों ने क्या राजनीतिक अखाड़ेबाजी शुरू कर दी
2: है?
3: यहाँ रोटी रोजी के लिए परेशान है और आप लोग हैं कि सिद्धांत बगाड़ रहे हैं।
1: करेक्ट सर। सचिन भाई सुलह की दरख्वास्त करता हूँ,
2: बशर्ते कि उसकी घोषणा चाय के प्याले से हो।
1: करेक्ट।
3: अरे वो तो अख्तर के आते ही मैंने कह दिया था कि हजरत पहले सिगरेट मांगेंगे, फिर सर खाएंगे और आखिर में चाय पर पहुंचेंगे। चलो चलो बाहर चलो
2: चलो चलो आप।
0: रितु क्या मंगवाए?
4: बस कॉफी।
0: बारा
5: जी सर,
0: दो कोल्ड कॉफी।
4: तुम्हारी अर्जियों के कोई जवाब आए?
0: आए, जितनी अच्छी जगह थी सब भर चुकी है, बची है क्लर्की और मास्टरी की जगह, वे खाली है। तनख्वाह भी काफी शानदार है, 100 रुपया महीना।
4: अच्छी नौकरियां भी आखिर किसी न किसी को तो मिलती हैं।
0: जरूर मिलती है।
4: फिर मैं पूछती हूँ कि तुम्हें क्यों नहीं मिलती?
0: प्रोफेसर डॉक्टर मिस रीता सिन्हा, आप बड़ी भोली है।
4: अच्छा
0: रितु, जानती हो नौकरियां किन्हें मिलती है? चाचा भतीजे को सबसे अधिक नंबर देता है।
4: तुम भी जाति प्रदेश और रिश्ते की सीढ़ी पर पैर रखकर ऊंची कुर्सी पर पहुंचने की कोशिश क्यों नहीं करते?
0: क्योंकि मैं न जाति मानता हूँ और न प्रदेश से बंधा हूँ, रिश्तेदार कोई है नहीं।
4: तुम मजाक कर रहे हो।
0: मजाक मैं नहीं, मेरी तकदीर कर रही है। चूंकि मैं न जाति से बंधा हूँ और न प्रदेश से, इसलिए सिर्फ हिंदुस्तानी हूँ।
4: हरीश, बेकारी तुम में कड़वाहट पैदा कर रही है। ये मत भूलो कि हर रात के बाद सुबह होती है।
0: मेरी सुबह तुम्हारे एक शब्द के इंतजार में रुकी हुई है रीता।
4: फिर वही बात।
0: रीतु, शादी के लिए हाँ क्यों नहीं कर देती? मेरा सारा खालीपन दूर हो जाएगा, जिंदगी जीने के लायक बन जाएगी। मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है, वो एक खाली प्याला है।
4: जिंदगी के प्याले में कई चीजें पी जा सकती हैं, उसे शादी के लिए खाली छोड़ देना क्या उचित है?
0: हर आदमी को अलग अलग समय पर अलग अलग प्यास होती है। आज मेरी प्यास दूसरी है, मुझे स्नेह चाहिए। किसी के प्रेम की उंगली पकड़कर मैं ऊपर उठ सकता हूँ, जिंदगी की निराशा और दुख को जीत सकता हूँ, इंसान की तरह खड़ा हो सकता हूँ, लड़ सकता हूँ।
4: अगर मेरे स्नेह से सब मिल सकता हो तो तुम जानते हो वो तुम्हारा है। रहा शादी का सवाल, उसके लिए भी ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। साल दो साल में शादी का मुहूर्त भी निकाल लिया जाएगा।
0: साल दो साल, ये सजा क्यों?
4: ये सजा नहीं, ये परीक्षा है, कसौटी है, ये देखने के लिए कि क्या तुम्हारा प्रेम साल दो साल के इंतजार को सह सकता है।
0: तब तक मैं क्या करूँ?
5: सर बिल।
4: तब तक बिल चुकाओ।
6: अख्तर, हरीश के मामले में तुम कहां तक पहुंचे हो?
7: मेजर, हरीश को दल में लाना आसान नहीं है।
6: आसान होता तो तुम्हें यह नहीं सौंपा जाता। और ये मत भूलो कि हरीश का नाम तुमने ही सुझाया था।
7: इस इज्जत अफजाई के लिए शुक्रिया।
6: शायरी नहीं, मुझे रिपोर्ट चाहिए।
7: हरीश ने भी नाउम्मीदी के दौर में पैर रखा ही है, गहरे में पहुंचते ही हम उसे अपने पास घसीट लाएंगे।
6: एक बात ध्यान रखना, जब तक हरीश दिमागी तौर से तैयार नहीं हो जाता तब तक उसके सामने इनकलाब की बातें मत करना, वो कहीं भागने खड़ा हो।
7: मैं बचपन से उसके साथ पढ़ा हूं मेजर, उसकी नस नस पहचानता हूं। एनसीसी में भी हम दोनों साथ थे, अपने जमाने का वो सबसे बढ़िया कैडेट था, निशानेबाजी में बेजोड़।
6: यही तारीफ सुनकर तो मैं उसे दल में लेने के लिए राजी हुआ हूं। उसके जीवन में कहीं कोई लड़की है?
7: जी
6: मैं पूछ रहा

0: था वो किसी लड़की के चक्कर में तो नहीं है। ऐसे लोगों को खतरे के काम में लाना कठिन होता है।
1: समझ गया, अभी उस पर मोहब्बत की लगाम नहीं लगी है मेजर।
0: फिर ऐसा करो, पुराना नुस्खा ही काम में लाओ।
1: वो क्या मेजर?
0: अलका से उसकी मुलाकात करा दो, अलका इस काम में उस्ताद है। जयंतीलाल को वही तो दल में लाई थी।
1: नथिंग लाइक ट्राइंग इट मेजर, लेकिन साकी के साथ सागर भी चाहिए।
0: यू आर राइट, एंड दैट मींस मनी।
1: ऑफ कोर्स,
0: ये लो 100 रुपए, वेस्ट मत करना, अलका से भी कह देना।
1: जी।
0: अरे सुनो सुनो, अलका को हरीश की पूरी बैकग्राउंड समझा देना, और देखो दोनों का परिचय कराकर तुम स्टेज से हट जाना।
1: आप फिक्र मत करें मेजर।
0: ऑलराइट, बेस्ट ऑफ लक।
1: थैंक्स।
2: कहो हरीश। अरे भाई क्या हो रहा है?
3: आओ आओ, बहुत दिन बाद दिखलाई पड़ रहे हो, कहाँ थे?
2: अरे यहीं था यार, वो रबर फैक्ट्री की हड़ताल में बुरी तरह बिजी था।
3: बाजार में अफवाह गर्म थी कि हड़ताल समाप्त होने को।
2: हाँ, वो तो समाप्त हो गई है। खैर छोड़ो इस बात को, ये बताओ कि तुमने ऐसा हुलिया क्यों बना रखा? कपड़े मैले, चेहरे पर कई दिन पुरानी दाढ़ी, बाल रूखे। अरे भाई अच्छे खासे मजनू दिखाई दे रहे हो।
3: सचिन, एक बेकार नौजवान से तुम क्या उम्मीद करते हो?
2: अरे यार मैं तो बहुत कुछ उम्मीद करता हूँ। मेरा ख्याल है कि ये लक्षण बेकारी के नहीं, बेकरारी के हैं।
3: मैं समझा नहीं।
2: बनो मत, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हारी इस हालत का कारण बेकारी से अधिक रीता है। मालूम पड़ता है रीता से कोई झगड़ा हो गया है।
3: तुम तो मुझे और रीता दोनों को अच्छी तरह जानते हो। हम में कभी झगड़ा नहीं होता। हाँ सचिन, रीता चाहती है तो मेरे वजन को हल्का कर सकती थी।
2: वो कैसे?
3: हम शादी कर लें तो मेरा अकेलापन चला जाएगा। रीता के साथ रहकर मैं समाज से लड़ सकूंगा, बेकारी जैसी बीमारियां पैदा करने वाले सामाजिक अन्याय से लोहा ले सकूंगा।
2: अच्छा,
3: लेकिन मुझे आत्मिक शांति चाहिए जो रीता ही दे सकती है।
2: मेरा ख्याल है हरीश, प्रोफेसर सिन्हा तो पहले ही तुम दोनों का संबंध मंजूर कर चुके हैं, फिर रुकावट कहाँ है?
3: यही तो समझ में नहीं आता, जब ये बात उठाता हूँ तो रीता रुकने को कहती है।
2: क्या रीता बदल रही है? मैं पूछता हूँ क्या वो भूल गई कि अगर तुमने जानबूझकर अपनी इंटरव्यू खराब ना कर ली होती तो नेशनल कॉलेज की लेक्चरशिप उसे नहीं तुम्हें मिलती।
3: छोड़ो इस बात को।
2: पर हरीश तुमने ये बेवकूफी क्यों की? औरत के लिए नौकरी इतना महत्व नहीं रखती, पर मर्द के लिए वो सिर्फ आमदनी का जरिया ही नहीं, उसके सोशल स्टेटस की बुनियाद भी है।
3: जो कुछ मैंने किया उसका मुझे कोई अफसोस नहीं, रीता के लिए मैं क्या नहीं कर सकता।
2: लेकिन वही रीता आप तुमसे इंतजार करने को कह रही है। मैं पूछता हूँ क्यों? क्योंकि तुम बेकार हो, तुम्हारे पास ना कोई ओहदा है और ना कोई आमदनी।
3: नहीं सचिन, तुम रीता के साथ अन्याय कर रहे हो, उसके फैसले के पीछे जरूर कोई अच्छा कारण होगा।
2: ये कारण अख्तर तो नहीं?
3: अख्तर?
2: हाँ, उसे रीता के घर और कॉलेज के चक्कर लगाते अक्सर देखता।
3: नहीं, वो नहीं हो सकता, रीता उसे हल्का आदमी समझती है।
2: देखो हरीश, तुम हमेशा जल्दबाज रहे हो और शायद जरूर से ज्यादा भोले भी, नारी इतनी सरल नहीं होती।
3: पुरुष ही कहां इतना साफ होता है, स्त्री और पुरुष के गुण दोषों का वजन बराबर बराबर है। मैं क्या खुदगर्ज नहीं हूं जो अपनी आत्मिक शांति की बात सोचकर शादी पर जोर दे रहा हूं? मुझे रीता और उसके पिता की भावनाओं का भी ख्याल करना चाहिए।
2: ठीक है। अच्छा हरीश, मैं रीता से बात करूंगा।
3: नहीं सचिन, इसकी कोई जरूरत नहीं।
2: देखो भाई, ये मत भूलो कि रीता मेरी भी फ्रेंड है, उससे बात करने का मुझे भी अधिकार है। खैर चलो तैयार हो जाओ। अरे भाई चलो ना, कॉफी हाउस तक चलेंगे।
3: अच्छा चलो
2: चलो।
4: हरीश ऐसा
3: नहीं? नहीं सचिन।
5: हेलो हरीश। हाय सचिन।
3: हेलो हेलो।
5: किस बात पे खफा है हुजूर कि हम आ रहे हैं और आप जाने की तैयारी कर रहे हैं? अरे मैं तो भूल ही गया, आपसे मिलिए मिस अलका, और आप हैं डॉक्टर हरीश चंद्र, MA PhD वगैरह वगैरह, और आप हैं मिस्टर सचिन मेहरोत्रा, मशहूर पॉलिटिकल वर्कर।
3: हाउ डू यू डू?
6: हाउ डू यू डू? आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, अक्दा साहब से आप लोगों की बेहद तारीफ सुन चुकी हूँ। चलिए एक कप कॉफी हो जाए, आइए ना।
5: कॉफी? श्योर श्योर, क्यों सचिन, ख्याल तो बुरा नहीं है।
2: भाई आज माफी चाहता हूँ मिस अलका, एक मीटिंग है जिसमें पहुंचना जरूरी है, फिर कभी साथ दे दूंगा। अच्छा ओके।

0: बाय
1: बाय। और आप डॉक्टर चंद्र?
2: मैं
3: भाई हरीश, तुम्हें चलना पड़ेगा। तुम्हें कहाँ जाना है?
1: आइए ना डॉक्टर चंद्र।
2: चलिए, मैं आपकी सेवा में हूँ।
3: दैट्स गुड।
1: बैठिए ना डॉक्टर चंद्र।
3: बैठिए। बेरा बेरा।
4: जी साहब।
3: तीन कॉफी लाओ। कुछ खाओगी अलका?
1: जी नहीं।
3: तुम कुछ लोगे हरीश?
2: मैं कुछ नहीं लूंगा।
3: ओके, बस तीन गर्म कॉफी लाओ बेरा।
4: अभी लाए सर।
3: हरीश, अलका बढ़िया कहानियां लिखती है। गाना, नाचना और एक्टिंग तीनों में कमाल हासिल है।
2: That's a rare combination.
1: अख्तर साहब तो मेरी यूं ही तारीफ कर रहे हैं। मैं तो नहायत ही मामूली लड़की हूँ।
3: भाई ऐसी बात नहीं है।
4: साहब अभी फोन पर यह संदेश आपके लिए आया है।
3: अच्छा देखो। आई एम सॉरी अलका, मुझे फौरन बुलाया।
5: क्या हुआ?
3: अब्बा जान की तबीयत एक खराब हो गई। सॉरी हरीश।
5: चलो चलो हम भी चलते हैं।
3: नहीं नहीं नहीं, कोई खास बात नहीं है। उन्हें हर महीने 15 दिन में ऐसे दौरे आते ही रहते हैं। कॉफी के बाद तुम अलका को घर तक छोड़ दोगे हरीश? प्लीज।
1: जी नहीं, इनको क्यों तकलीफ देते हैं, मैं चली जाऊंगी।
2: मैं छोड़ाऊंगा।
3: ओके ओके ओके हरीश, आई एम सॉरी फॉर टीचिंग यू।
2: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
3: ओके
6: रितु, हरीश आखिर गायब कहां हो गया?
1: क्यों, क्या हुआ पापा?
6: हरीश का कई हफ्तों से पता नहीं। थोड़े दिन पहले तक मैंने उसे एक बदनाम लड़की के साथ कई बार घूमते फिरते देखा था।
1: समाज तो हर अकेली लड़की को बदनाम करता है, और लड़की के साथ घूमने में क्या दोष है?
6: हाँ, साधारण तौर से कोई दोष नहीं, लेकिन रितु वो सचमुच ही खराब लड़की है।
1: लड़की खराब होगी, पर हरीश बहकने वाला आदमी नहीं है।
6: हरीश कितना बहक सकता है ये शाम हम दोनों ही देख चुके हैं रीता। आम सड़क पर एक लड़की की कमर में हाथ डाले नशे में लड़खड़ाते देखकर हरीश के चाल चलन पर शक करने की काफी गुंजाइश है।
1: पापा आपने पहचानने में भूल की है, वो हरीश नहीं होगा।
6: मैंने तब भी कहा था और अब भी कहता हूँ, मेरी आंखों ने मुझे धोखा नहीं दिया, वो हरीश ही था। इतना ही नहीं, उसने भी हमें देख लिया था। तब से हरीश को किसी ने नहीं देखा, और मैं उस लड़की को भी जानता हूं, उसका नाम है अलका। वो एक्टिंग करती है, नाचती है, गाती है।
1: पापा आपको आज क्या हो गया है, अभिनय, नृत्य और गायन को आप कब से खराब मानने लगे?
6: जब से अलका जैसी बच्चन लड़कियों को इन कलाओं की आड़ से शिकार करते हुए देखा है। रीता, मेरा विरोध एक्टिंग और नाचने से नहीं है, विरोध है अलका से, वो बच्चन है। अभी उस दिन डीएसपी मित्रा बतला रहे थे कि पुलिस की उस पर कड़ी नजर है, स्मगलिंग से लेकर चोरियों तक में उसका नाम है। कुछ दिनों से वो एक नए गिरोह के साथ देखी जा रही है। मैं पूछता हूं हरीश का उसके साथ क्या काम?
2: अरे ये क्या, तू तो रोने लगी, अगली कहीं की?
1: मैं रो का रही हूं।
2: शायद इन सबके लिए जिम्मेदार मैं हूं। अगर मैं रुकने को नहीं कहता तो शायद हरीश भटकता नहीं।
1: पापा मैं आपको दोष नहीं देती।
2: दोष मेरा है। मैंने सोचा था कि हरीश अगर बेकारी की हालत में शादी करेगा तो उसे पैसों के लिए तुम पर निर्भर करना पड़ेगा। समाज तुम दोनों को पति पत्नी के रूप में देखकर हरीश की बेकारी पर उंगली उठाएगा, हरीश में हीन भावना पैदा हो जाएगी। अगर आज तेरी मां जिंदा होती तो शायद ये भूल न होने देती। शादी हो जाने से शायद हरीश भी रास्ते से नहीं भटकता।
1: पापा पापा हरीश के आदर्श काफी मजबूत हैं। आज अगर भटक भी जाएगा तो उसे ठीक रास्ते पर आने में अधिक समय नहीं लगेगा। अपनी मंजिल वो जानता है। आप जानते हैं जिस जगह पर मैं काम कर रही हूँ वो हरीश की होती। उसने जानबूझकर इंटरव्यू में गलत सलत जवाब देकर अपना रास्ता बंद करके मेरे लिए जगह की। इंटरव्यू के बाद प्रिंसिपल दीक्षित ने उसे बहुत डांटा था, हरीश उनका प्रिय छात्र था।
2: दीक्षित ने मुझसे भी कहा था, हेतु शायद हर नौजवान में शहीद कहलवाने की तमन्ना रहती है।
1: पापा आप हरीश के साथ अन्याय कर रहे हैं।
2: हाँ, शायद इसीलिए क्योंकि वो मेरी प्यारी बेटी के साथ अन्याय कर रहा है। न जाने वो इस वक्त कहाँ है।

0: पता नहीं मुझे क्या होता जा रहा है।
1: हरीश, बेकारी तुमने करवाहट पैदा कर रखी है। ये मत भूलो कि हर रात के बाद सुबह होती है।
2: ये भी गौरतलब है कि इंकलाब खुशियां सोचने से ज्यादा नई खुशियां पैदा करता है, और अक्सर होता यह है कि बुलंद इरादों से ये इंकलाब बेहाल होकर ऐसे रास्तों पर चल निकलते हैं कि मंजिल दूर के दूर रह जाते हैं।
3: देखो देखो, तुम हमेशा रिएक्शनरी रहते
0: हो। लगता है जैसे अपने तमाम आदर्शों को भुलाकर मैं एक अनजान रास्ते की तरफ बढ़ता चला जा रहा हूँ। मैं नहीं जानता मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। क्या इसी दिन के लिए मैंने इतनी ऊंची डिग्रियां हासिल की थी? मैं जानता हूँ मैं समाज का एक हिस्सा हूँ, और समाज के प्रति मेरा भी अपना कोई दायित्व है। लेकिन अब मैं किस हद तक इसे निभा सकूंगा नहीं कह सकता।

0: मुझे किस जहन्नुम में ले आए हो?
1: इसे तुम जहन्नुम कहते हो मेरे यार? ये नए जमाने की जन्नत है। हुरे हैं जिनके हाथों में लाल मय से भरे हुए पैमाने हैं। ये जन्नत है तरक्की पसंद नौजवानों की, जो सड़ी गली पुरानी दुनिया को तोड़कर एक नए समाज और एक नए जहां की तामीर करने का दम रखते।
2: शराब पीना और बैंक लूटना, बैंक लूटना और शराब पीना, क्या नई दुनिया बनाने का यही तरीका है?
1: शराब का एक प्याला चंद लम्हों में दुनिया बदल देता है मेरे दोस्त।
2: दुनिया ऐसे नहीं बदला करती, मैंने भी पीकर देखा है अख्तर। हम बदल जाते हैं तो समझते हैं दुनिया बदल गई। दुनिया बदलती है जब कोई बड़ा विचार, कोई ऊंचा आदर्श करोड़ों इंसानों के दिलों में झंझराहट पैदा करता है और क्रांति का राग बनकर दुनिया को झकझोर देता है। बदबूदार तंग कोठरियों से क्रांति नहीं, सिर्फ बदबू निकलती है।
0: अरीश, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, पहले एक्शन में तुम्हारा यह हाल है?
2: अगर रात के अंधेरे में बेगुनाह और बेखबर चौकीदारों की हत्या कर बैंक लूटने वाले लोग बहादुर हैं तो मैं सचमुच बुजदिल हूँ।
0: जब एक्शन के लिए सब तैयारी हो चुकी है तब तुम्हारा झिझकना गद्दारी है। अलका बैंक एजेंट को बनाकर चाबियों की छाप ले आई थी, नकली चाबियां तैयार है। 10 मिनट के एक्शन में कम से कम 2 लाख रुपए हमारे हाथ लगेंगे। अलका तो कह रही थी कि तुम तैयार हो।
2: अलका की बात मत करो, मुझे उसके नाम से चिढ़ है। औरत नहीं, वो नागिन है।
0: तुम उसे नागिन कहते हो? तुम जो अपने गले में नगीने की तरह उसे लटकाए घूमते थे। हरीश, तुम पाखंडी हो।
2: शट अप,
0: ज़बान संभालो हरीश। पुरानी दोस्ती का लिहाज ज्यादा देर नहीं टिकेगा। अगर तुमने जहर गला बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा।
2: शराफत की नकाब उतर जाने के बाद अब तुम्हारा असली चेहरा उभर आया है।
0: हरीश,
3: ये सब क्या है?
0: हरीश गद्दार है मेजर।
3: क्यों हरीश, क्या बात
2: है? मेजर, मुझे इस एक्शन में विश्वास नहीं है, मैं इसे गलत समझता हूँ।
3: तुम्हें ये समझने में इतना समय लग गया? तुम्हारी ट्रेनिंग और खाने पीने पर हम हजारों रुपए खर्च कर चुके हैं। हम जो कुछ कर रहे हैं समाज के भले के लिए।
2: समाज के भले बुरे का निश्चय करने के पहले समाज की राय भी ले ली जानी चाहिए।
0: ये बकता है मेजर।
3: हम जानते हैं कि जनता की भलाई किस बात में है।
2: आपके कई एक्शन और उसके बाद पैसे के दुरुपयोग को देखकर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आपका कोई सामाजिक उद्देश्य नहीं है। आप समाज से भागने वाले लोग हैं जिन्होंने बंदूक का रास्ता अपनाया है ताकत का नशा करने के लिए।

0: अपनी स्वार्थी हिंसात्मक भावनाओं को खुलकर खेलने का मौका देने के लिए और दुर्शराब के लिए।
1: अरे
0: आप लोग सफेद पोश डाकू हैं, डाकू हैं आप लोग।
2: हम लोग सफेद पोश डाकू हैं। अख्तर, तुम इस आदमी को हमारा दल मजबूत करने के लिए लाए थे या इसे रास्ते से हटाकर इसकी प्रेमिका को अपना बनाने के लिए?
1: ये आप क्या कह रहे हैं मेजर?
2: काफी दिनों से मेरे पास ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि तुम मिस रीता सिन्हा को अपना बनाना चाहते थे
1: मेजर।
2: इसीलिए तुमने हरीश के बारे में हमें गलत जानकारी देकर दल में भरने की साजिश की
1: मेजर।
2: शायद तुम्हारा प्लान हरीश को एक्शन में किसी बहाने गोली मारकर खत्म कर देने का था।
0: अख्तर, तुम जलील हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद न थी।
1: मैं जलील हूँ, मैं जलील हूँ, लेकिन लेकिन तुम मेरे चंगुल से बचकर नहीं जा सकते। मैं तुझे जान से मार डालूंगा।
3: Uh-huh.

0: ओहो, कौन है इतनी रात गए?
1: अरे हरीश, तुम क्या हुआ?
0: खून।
1: अरे तुम तो घायल हो, तुम्हें अस्पताल ले चलता हूं। चलो

0: हेलो, रीता स्पीकिंग।
1: हेलो, कौन? रीता?
0: जी हाँ, मैं रीता बोल रही हूँ।
1: देखो रीता, मैं सचिन बोल रहा हूँ।
0: अरे सचिन, हाँ हाँ मैं हूँ रीता।
1: हरीश को घायल हालत में बड़े अस्पताल ले आया। हाँ, पैर में गोली लगी। हाँ, ऑपरेशन हो रहा है। वैसे घबराने कोई बात नहीं, आशो को तो जल्दी चलिए। अच्छा
0: अच्छा अच्छा, मैं अभी आती हूँ।
2: क्या बात है रितु, किसका फोन था?
0: सचिन का फोन था। पापा, हरीश आ गया है, मैं जा रही हूँ।
2: कहाँ आ गया हरीश? रितु,

0: कैसी तबीयत है हरीश?
1: ठीक हूँ।
0: तुम्हें तो बहुत चोट लगी है, कहीं तुम्हारा पैर?
1: दोनों पैरों पर चलकर जो मंजिल नहीं मिल सकी थी वो एक पैर पर चलकर मिल गई, ये क्या सफलता नहीं है? तुम मेरे साथ रहो रीता, तो सब मंजिलें मिल जाएंगी और सच्चाई के रास्ते पर मैं हमेशा चलने के लिए तैयार हूँ। मैंने सीधा रास्ता देख लिया है, रास्ता सच्चाई की तरफ है और उसी पर मुझे चलना चाहिए था। काश मैंने तुम्हारे और अपने अंतर की बात सुन ली होती, लेकिन अब मुझे मेरी मंजिल मिल गई है।
2: वो मंजिल कहाँ? अभी आपने डॉक्टर रणवीर सक्सेना का लिखा ये नाटक सुना। निर्देशक थे स्वतंत्र कुमार ओझा। नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।
3: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
4: मैं और मेरी तन्हाई,
3: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: नमस्कार दोस्तों, बॉम्बे टॉकीज में आज हम लेकर के आए हैं संगीतकार जोड़ी दिलीप सेन समीर सेन के दिलीप सेन से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आइए सुनते हैं इस बातचीत का पहला भाग।
2: सभी सुनने वालों को आपकी दोस्त मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, विविध भारती के स्टूडियो में आज हमने आमंत्रित किया है एक बहुत ही प्रसिद्ध शख्सियत को। जी बिल्कुल, ठीक मेरे सामने बैठे हैं मुस्कुराते हुए जाने माने फिल्म संगीतकार की जोड़ी दिलीप सेन समीर सेन के दिलीप सेन साहब, और हम उनका स्वागत करते हैं विविध भारती के स्टूडियो में। तो स्वागत है आपका दिलीप सेन साहब जी।
3: नमस्कार जी, नमस्कार विविध भारती सुनने वाले सभी श्रोतागणों को। दिलीप सेन यानी दिलीप सेन समीर सेन का प्यार भरा नमस्कार।
2: आप कैसे हैं बताइए।
3: बहुत बढ़िया हूँ, वापिस आपने याद ताजा कर दी मेरी
2: जी।
3: बरसों पहले आया था तो चाचा भतीजे दोनों साथ में आए थे।
2: बिल्कुल।
3: और इस बात किसी कारण समीर जी के पास वक्त नहीं था, मगर कोई बात नहीं, सवाल तो वही है जो दोनों को बोलने हैं, मैं बोलूं या चाहे वो बोले।
2: बिल्कुल, हम तो आप में ही दोनों रूप देख लेंगे।
3: थैंक यू जी।
2: तो आज उन्हीं दिलीप सेन साहब को सामने बैठा देखकर मैं तो बहुत अभिभूत हूँ।
3: धन्यवाद जी, मैं भी बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे मेरे अतीत में ले गए पुराने
2: जी।
3: और विविध भारतीय आकाशवाणी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हमारी चार पीढ़ियां जुड़ी हुई है। मेरे पिताजी जमाल सेन जी,
2: जी
3: जो 1935 में मुंबई आए थे और एज ए म्यूजिशियन उन्होंने काम किया, जिनमें उन्होंने ढोलक डफ मटका और डेरू जो फिल्म में बजाना उन्होंने ही शुरू किया था
2: जी, जी।
3: उस वक्त वो गुलाम हैदर साहब के साथ में लाहौर से आए थे। 51 में उनको पहला मौका दिया केदार शर्मा जी ने एज ए म्यूजिक डायरेक्टर शौकिया फिल्म से
2: जी।
3: तो पिताजी ने रंगीला, धर्मपत्नी, पतित पावन, आला उदल कई फिल्में की, बगदाद वगैरह, कस्तूरी, मंचली। उसके बाद में बड़े भाई साहब आए 70 के दशक में, शंभू सेन जी।

0: था
1: जी जी
0: उस वक्त, वो गुलाम हैदर साहब के साथ में लाहौर से आए थे 51 में, उनको पहला मौका दिया केदार शर्मा जी ने एज ए म्यूजिक डायरेक्टर शोकिया फिल्म से
1: जी।
0: तो पिताजी ने रंगीला, धर्मपत्नी, पतित पावन, आला उदल, कई फिल्में की, बगदाद वगैरह, कस्तूरी, मनचली। उसके बाद में बड़े भाई साहब आए 70 के दशक में, शंभू सेन जी। 80-90 के दशक में हम चाचा भतीजे दिलीप सेन, समीर सेन आए
1: जी।
0: 2006 में मेरा पोता सोहेल सेन जी आए, और 2026 में अभी मेरा पड़पोता समर भी आ रहा है
1: जी।
0: तो ये 5 पीढ़ियां हो जाएगी हमारी संगीत क्षेत्र में।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने।
0: हम लोग बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे हैं कि हमें श्रोतागणों ने, दर्शकों ने और प्यार करने वालों ने, फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसरों ने, जनता ने इतना प्यार और इतना दुलार दिया कि आज 4 पीढ़ियां नहीं, 5वीं पीढ़ी भी संगीत देने के लिए मतलब उत्साहित है
1: जी, जी।
0: और बहुत बड़ी बात होती है कि 1935 से लेकर 2026 तक अगर किसी का परिवार फिल्म लाइन में सक्रिय है तो वो सिर्फ सेन परिवार है
1: जी,
0: जो जमाल सेन जी से लेके समर तक
1: जी।
0: मैं सेन परिवार का एक अलग योगदान रहा है, वो मैं अलग इसलिए कहना चाहूंगा क्योंकि मेरे परिवार में सिर्फ संगीत ही नहीं रहा, जैसे मैं बेसिकली डांस मास्टर रहा हूँ फोक और कथक का।
1: बिल्कुल,
0: मेरे बड़े भाई साहब शंभू सेन जी फोक और कथक के डांस मास्टर रहे, फिर मेरे बड़े भाई साहब मदन सेन जी जो भी डांस मास्टर, सिंगर, एज ए कंपोजर रहे, और उनके बाद में तान सेन जी वो सितार वगैरह बजाते थे, फिर इंदर सेन जी जो थे वो मैंडोलिन वगैरह बजाते थे, उनसे छोटे निहाल सेन वो सितार, मैंडोलिन और डांस वगैरह वो भी करते थे, छठा मैं, छठी मतलब छठा मैं था दिलीप सेन, तो करते करते निकला। और एक उम्मीद होती है इंसान को कि कुछ बड़ा बनना है, और फिर आप लोगों का आशीर्वाद हुआ तो संगीतकार बन गए।
1: बिल्कुल, और एक बहुत बड़े और सफल संगीतकार, जाने माने संगीतकार के रूप में आप हमेशा रहे। तो आपका घराना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और फिल्म संगीत के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है
0: जी, जी।
1: आपके परिवार का संगीत सफर जो है लगभग 4 या 6 पीढ़ियों से, अब तो कहेंगे छठी पीढ़ी से चला आ रहा है, और इस संगीत परंपरा को आधुनिक रूप देने में आपके पिता जमाल सेन साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो आप अपने पिता के बारे में थोड़ा और बताइए, कहां से
0: उन्होंने अपने कैरियर को शुरुआत की? कलकत्ता रेडियो से, वहां पखावज और जलतरंग बजाते थे, और कलकत्ता में उन्होंने टैगोर साहब के साथ, टैगोर दा के यहाँ शांति निकेतन में कुछ साल एज ए क्लासिकल संगीत टीचर के हिसाब से काम भी किया।
1: मतलब टैगोर साहब मतलब रविंद्रनाथ
0: टैगोर जी के यहाँ शांति निकेतन में कुछ साल रहे, और वहाँ अपना हिंदी शास्त्रीय संगीत जो होता है, क्योंकि उनका तो रविंद्र संगीत होता है, उनके साथ हमारा जो संगीत शास्त्र है तो वो पिताजी सिखाते थे वहाँ कुछ साल। बाद में 1923-24-25 में वो चले गए लाहौर, वहां पे फिर पंचोली स्टूडियो जो था जिसमें गुलाम हैदर साहब के साथ एज ए म्यूजिशियन उन्होंने काम किया, और 1935 में वो मुंबई आए। अब मुंबई आने के बाद में उन्होंने एज ए म्यूजिशियन तो काम किया ही किया गुलाम हैदर साहब के साथ में, कुछ फिल्मों में एज ए कैरेक्टर आर्टिस्ट भी उन्होंने काम किया, खजांची, मुनीम जी वगैरह में, क्योंकि मेरे पिताजी का एक पहनावा होता था, वो कान के अंदर लॉन्ग रखते थे
1: जी।
0: उस जमाने में डायमंड सस्ता ही था, तो डायमंड के लॉन्ग रखते थे, बड़ी बड़ी मुछियां होती थी, और धोती कुर्ता पहनते थे बंगाली स्टाइल का
1: जी, जी।
0: तो एक उनका एक अलग व्यक्तित्व होता था, तो उस हिसाब से उनको काम भी मिलता गया। सुजानगढ़ के रहने वाले हम लोग राजस्थान में, और हमारे यहाँ से और भी बहुत बड़े कलाकार हुए हैं, जिनमें सबसे बड़े कलाकार का नाम मैं लेना चाहूंगा, जिसमें मुझे फक्र होता है, हमारे खेमचंद प्रकाश जी वो भी हमारे ही गांव से थे, सुजानगढ़ से
1: जी।
0: और एक हमारे कवि बहुत बड़े कवि हुए, कन्हैयालाल सेठिया जी,
1: बिल्कुल,
0: वो भी मतलब हमारी धरोहर है ये राजस्थान की।
1: और वही आपके सुजानगढ़ के पास, चुरू से थोड़ा पास, बीकानेर शहर से जो है पंडित भरत व्यास
0: जी है, गुलाम मोहम्मद साहब। और भी आज मैं कहते हुए मुझे फक्र होगा और मुझे अभिमान भी होता है इस बात पे कि अभी तक जितने भी रिदमिस्ट हुए हैं, आप शुरू से लेके अब तक देखेंगे तो सारे राजस्थान से ही हुए हैं। और एक बात और बता दूं मैं, डांस मास्टरों में भी हीरालाल सोनलाल जी, वो भी सुजानगढ़ से ही थे, जिनका डंका बजता था, जिनके सरोज जी, चिन्नी प्रकाश जी, तरुण जी, कमल मास्टर जी, ये सारे हमारे एक परिवार की तरह हम लोगों ने काम किया है। तो हम लोगों को मतलब संगीत के साथ साथ डांस का भी अनुभव रहा। और एक बात मैं कहना चाहूंगा आपके प्रोग्राम के माध्यम से कि दुनिया में अगर कोई सच्ची चीज है आज, अगर सुकून वाली, तो वो सिर्फ संगीत ही है।
1: जी, जी।
0: जिसके जीवन में संगीत है उसके पास सबसे बड़ी दौलत है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी,
1: बिल्कुल सही। तो एक

0: आपने अपने भाई से शास्त्रीय संगीत और वाद्य यंत्र जैसे कि तबला आदि की विधिवत शिक्षा ली है और आप एक प्रशिक्षित नर्तक भी रहे हैं।
1: जी हाँ, कथक।
0: तो कथक के आप संगीत रहे कलाकार, तो कथक की दुनिया से, नर्तक की दुनिया से आप संगीतकार के रूप में कैसे इधर आ गए?
1: देखिए, मैं आपको पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि संगीत जो शब्द बना है ये तीन चीजों से बनता है, गायन, वादन, नृत्य।
0: जी।
1: और गायन, वादन और नृत्य का अनुभव होना, अब तीन चीजों को मिलाने से बनता है संगीत। और संगीतकार इन तीन चीजों को लेके चलना, तो मेरी ये सोच है या मेरी ये समझ है, मैं अपने आप से कहूंगा कि एक संगीतकार बनने के लिए उसको इन चीजों का अनुभव होना जरूरी है। तो मैं बड़ा भाग्यशाली रहा कि मैं बेसिकली डांस मास्टर भी रहा और मैं डांस करता भी था, किया भी है। मैंने गोविंदा जी के साथ एक फिल्म मेरी आई थी अनाड़ी नंबर वन, जिसमें मैंने गोविंदा जी के साथ काम किया, जबकि गोविंदा जी स्टार हैं और सुपरस्टार के अलावा उनके सामने डांस करना इतना मामूली बात नहीं थी। फिर भी सरोज जी ने और उन्होंने निभाया और वो गाना मेरा काफी लोगों को पसंद आया, आज भी लोग देखते हैं। तो नृत्य की एक रहा और उससे मुझे कंपोजिशन करने में बहुत मतलब आसानी रही, क्योंकि देखिए जब मैं कोई गाना कंपोज करता था, मैं और समीर जी जब बैठते थे, क्योंकि समीर जी भी कथक डांस सीखे हुए हैं।
0: अच्छा।
1: और उन्होंने भी बाकायदा गणेश जी हमारे हुए हैं, गणेश मास्टर जी से उन्होंने डांस की तालीम ली, क्योंकि अब हम भले ही हमारे भाई साहब से हमने सीखा, मगर जब तक बाहर का कोई गुरु आप अगर अपना नहीं लेते हैं जब तक आपकी शिक्षा पूरी नहीं होती, क्योंकि घर वाला ही होता है वो, और बाहर वाला जब आता है तो वो एक गुरु की नजर से आता है।
0: जी।
1: तो हम लोगों ने वैसे तालीम ली। और उसके अलावा मैं बता दूं कि आप अगर हमारे कुछ गाने देखेंगे तो कोरस प्रधान गाना होता है। कोरस आपको जो हम लोग इस्तेमाल किए हैं अभी तक, शायद मुझे नहीं लगता कि किसी संगीतकार ने किया हो। जैसे कि मिसाल पे, जैसे मेरा एक गाना जो हिट हुआ था, पहला गाना हम लोगों का जैसे चला, उससे पहले जुल्म की हुकूमत आ गई थी, उसमें भी जैसे जो हिट हुआ था, जैसे गोरिया रे गोरिया रे मेरा दिल चुरा के ले जा, ताक धिना के दिने दिन दिन ना दिने ताक, अब ये दिन ताक धिना दिने गाने का पार्ट ही है। अब जैसे गोरिया रे मेरा दिल चुरा के ले जा, टनारंग टनारंग टन टाऊ, ऐसे भी कर सकते थे, मगर ताक धिना दिन आने से उसके एक अंदर एक ब्लेंड हो गया। ऐसे ही एक गाना हमारा और चला था, जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले ओले ओले, तो इसमें ओले ओले एक पंचलाइन बने, फिर हम दो प्रेमी छत के ऊपर।

0: तो इस तरीके से जो कोरस पार्ट होता है हम लोगों का, ये कि गाने की शक्ल में ही होता है। ये हमारे दिग्गज जितने भी बड़े जो गुणीजन जिनको मैं स्कूल मानता हूँ,
1: जी
0: मेरी नज़र में जैसे नौशाद साहब, खयाम साहब, मदन मोहन जी, शंकर जयकिशन जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, कल्याण जी, आनंद जी, खेमचंद प्रकाश जी, मेरे पिताजी, या जयदेव जी, मदन मोहन जी, श्री रामचंद्र जी, बसंत देसाई जी, अपना ये जयदेव जी, सलील चौधरी जी, मैं इनको स्कूल मानता हूँ।
1: जी
0: क्योंकि
1: जी
0: ये स्कूल इसलिए मानता हूँ, खयाम साहब, इन्होंने जो काम किया है, आर डी बर्मन, एस डी बर्मन जी, इनका काम देखेंगे तो एक एक लाइब्रेरी नजर आएगी आपको। जब आप लक्ष्मीकांत जी की तरफ जाते हैं तो वो एक अलग स्कूल है, शंकर
1: जी
0: जयकिशन जी एक अलग स्कूल है, नौशाद साहब एक अलग स्कूल है, मदन मोहन जी एक अलग स्कूल है, ओपी नैयर साहब एक अलग स्कूल है, कल्याण जी अलग स्कूल है, एस डी बर्मन जी एक अलग स्कूल है, मदन
1: बिल्कुल
0: मोहन जी एक, तो ये मेरे लिए एक स्कूल है। तो हमें इनसे प्रेरणा मिलती थी जब हम संगीतकार बने, तो संगीतकार बनने के साथ साथ हमने इनको भी फॉलो किया, इनको भी सुना। मेरा ये आपके प्रोग्राम के माध्यम से जो लोग ये सुन रहे हैं
1: जी
0: और जिनको फिल्म लाइन में आके अगर संगीतकार बनना है, तो वो बनने से पहले अपने गुणीजनों को सुनो कि
1: बिल्कुल
0: हमारे पहले क्या म्यूजिक दिया लोगों ने। देखिए आज का साउंड जो है वो ठीक है, अपनी जगह है, क्योंकि टेक्नो साउंड भी जरूरी है, क्योंकि समय समय पर संगीत बदलता है,
1: बिल्कुल
0: वो अपना चोला चेंज करता है, मगर मेलोडी जो है, जो हमारी संस्कृति है,
1: वो वही
0: जो
1: है।
0: हमारी रागे हैं, जो हमारा फोक है, जो हमारा कल्चर है, वो हमें नहीं भूलना चाहिए, जो आजकल संगीत के अंदर नहीं मिलता आप लोगों को।
1: बिल्कुल
0: तो हम लोगों ने जो मेरी 90 के दशक तक हम लोगों ने जितनों ने भी काम किया, वो राइटिंग वाइज, कंपोजिशन वाइज, मेलोडी वाइज, हम लोगों ने वो चीज़ छोड़ी नहीं। और इसमें सबसे ज़्यादा अगर हमको कोई सपोर्ट मिला 90 के दशक में, तो मैं इसकी सारी क्रेडिट, बाकी प्रोड्यूसर डायरेक्टर अपनी जगह है, चाहे वो यशराज हो, गुड्डू धनवा जी हो, कुकू कोहली जी हो, दीपक सरीन जी हो, नरेश मल्होत्रा जी हो, के रविशंकर जी हो, राहुल गुप्ता जी हो, और भी कई लोग हैं जी, मगर इनमें एक शख्सियत ऐसी थी जिनका नाम है गुलशन कुमार जी।
1: जी
0: गुलशन कुमार जी के आने से म्यूजिक में एक अलग
1: क्रांति आ गई।
0: क्रांति आई और एक ऐसा बहाव आया कि जिस वक्त आप समझ लीजिए कि 90 के दशक के हम जो म्यूजिक डायरेक्टर थे या हम लोगों ने जो काम किया वो आज भी सुना जाता है। तो हम लोग बड़े भाग्यशाली रहे कि जब तक हम लोगों ने काम किया तो कहीं ना कहीं हम हमारी परंपरा को और हमारे कल्चर को हम लोग संभाल के रख सके।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो दिलीप सेन साहब, जैसा कि बात चल रही थी कि आपका जो घराना है शास्त्रीय संगीत का घराना है और आप लोगों ने विधिवत शिक्षा ली एक डांसर के रूप में और संगीत के रूप में, पहली फिल्म आपको कैसे मिली जिसका जिक्र अभी आप कर रहे थे, और किस तरह से 90 के दौर में अपना पहला ब्रेक पाने का जो अनुभव था वो कैसा था, किस तरह से फिल्म मिली?
0: देखिए फिल्म मैं बता दूं आपको, जब डांस मास्टर था तो थोड़ा सा समय लूंगा मैं आपका।
1: हाँ हाँ बिल्कुल
0: डांस मास्टर 70 के दशक में क्या था कि 1 पैसा 2 पैसा 3 पैसा चलता था,
1: हाँ
0: और बसों की टिकट होती थी 5 पैसा 10 पैसा 15 पैसा 20 पैसा 25 पैसा और 50 पैसा अंधेरी अगर आना हो तो, बोरीवली
1: बिल्कुल
0: से। तो हम लोग क्या करते थे कि डांस मास्टर के नाते कि यार ये 5 पैसा या 10 पैसा बचाना है, तो हम 2 स्टॉप पैदल चल लेते थे या
1: हाँ
0: कभी 3 स्टॉप पैदल चल लेते थे कि यार ये 10 पैसा 5 पैसा बच जाए। तो वो सब समय देखा हुआ था। तो जहन में एक, जब मैं सुजानगढ़ से मुंबई आया
1: जी
0: तो फिल्मों में एक्टर बनने आया था, तो शक्ल तो हीरो जैसी थी नहीं कि हीरो बन जाऊं, और इतने कोई पढ़े लिखे भी हम नहीं थे कि हम कोई करेक्टर रोल में या निकल जाएं। तो पिताजी ने मुझे दूसरी लाइन में पहले ट्राई किया कि मैं ये कर लूं या वो कर लूं, बाद में उन्होंने देखा कि ये कहीं नहीं जमेगा, तो मेरे बड़े भाई थे मदन सेन जी, उनके साथ एज ए मुझे असिस्टेंट के बतौर रखा लिया कि भाई तू भाई के साथ रहे। तो उन्होंने एक स्कूल खोली, तो वो स्कूल खोलना, उसमें जो बच्चे आते थे उनको अटेंड लेना, उनको देखना, तो देखते देखते 3-4 साल में मैं इस लायक हो गया कि मैं बच्चों को ट्रेनिंग दे सकूं।
1: अच्छा
0: तो वो जो चीज़ें थी, तो आगे बढ़ने के लिए एक था कि यार, मतलब उस जमाने में आप यकीन मानिएगा, जैसे 5 रुपया मेरे पास थे, तो मैंने फर्स्ट टाइम मैंने बैंक में खाता खोला, तो मेरे एक सहकारी बैंक थी, तो उस बैंक में मैंने 5 रुपये का खाता खोल लिया। अब 5 रुपये के खाते के लिए वो चेक लगता था, फोटो लगती थी कि जब आप चेक
1: जी
0: लेने जाएंगे
1: जी
0: या
1: जी
0: पैसे दो
1: बिल्कुल
0: के 2 रुपया या 1 रुपया या 8 आना लेना है,
1: बिल्कुल
0: तो बैंक में आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड के हिसाब से फोटो दिखानी पड़ती थी।

0: एक बहुत लिमिटेड बजट होता था और बड़ा आदमी बनना था। तो मैं अक्सर मेरे जो पार्टनर समीर सेन जी हैं, ये परकशन में नंबर वन है, इंडिया के एक माने हुए परकशन हैं, जो कि रिदम में मतलब अभी भी कोई उनका हाथ नहीं पकड़ सकता, चाहे ढोलक तबला कोंगो बोंगो तुम्बा ये जो वो प्ले करते हैं, अभी मुझे नहीं लगता कि उनके बराबरी में कोई ऐसा म्यूजिशियन हो
1: जी।
0: वो इसलिए नहीं कि मेरा भतीजा है,
1: नहीं नहीं, जो
0: सच्चाई है, जो उनकी अपनी मेहनत थी, लगन थी, बड़े भाई साहब ने उनको उस तरीके से तैयार किया था, उनको तालमनी टाइटल भी मिला हुआ है। मैं उनसे अक्सर बोलता था कि यार बड़ा आदमी बनना है यार, तो बोले क्या बड़ा आदमी कैसे बनोगे चाचा, तुम डांस मास्टर हो, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हो, क्या बनना चाहते? तो मैं बोले यार अपन संगीतकार बन जाए।
1: तो एक गाना सुन लेते हैं और उसके बाद आपकी और संगीत यात्रा पर चर्चा करते हैं।
0: जी बिल्कुल।

0: 80 के दशक में संगीतकार बनना इट इज नॉट जोक। उसने बोला यार मेरी अच्छी खासी दुकान चल रही है म्यूजिशियन में, मैं दिन में दो दो तीन तीन टेक बजा रहा हूँ, मुझे अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। उस वक्त 150-200-300 रुपया म्यूजिशियन को एक गाने का मिलता था, वो तीन चार गाने बजाए तो 1000 रुपया रोज मिल जाता था। बोले ये खामोखा म्यूजिक डायरेक्टर बनूंगा, लोग बुलाना भूल जाएंगे। अरे मैं बोला कोशिश तो करके देख, तो वो माने नहीं। तो उस दौर में क्या हुआ कि मैं रहता था महाकाली में, शमशाद खान इकबाल खान के यहाँ, तो वो एक फिल्म बना रहे थे प्यारी भाभी। तो एक उम्मीद थी कि यार ये फिल्मी प्रोडक्शन हाउस है, तो मैं पहली मरतबा उनके यहाँ लग गया कि चलो यार इन्हीं के यहाँ रहता हूँ, थोड़ा माहौल भी मिलता था। वहां असद भोपाली साहब आते थे।
1: अच्छा, गीतकार।
0: तो असद भोपाली साहब जब मुझे देखते थे, वो कोई लाइन लिखते थे तो मैं उस पर कोई ऐसी डमी धुन बना देता था। तो मुझे हर बार शाम के वक्त जो बैठक होती थी इन लोगों की, बड़े लोगों की, हम तो खैर बच्चे ही थे उस वक्त, तो उस बैठक में मेरे को मौका मिलता था उनको धुन बना के सुनाने का। कभी कभी वो दिन में मुझे बोलते थे यार तेरे में जम से तू म्यूजिक डायरेक्टर बन सकता है, तेरे पिताजी वाली बातें हैं तेरे में, क्योंकि मेरे वालिद साहब के काफी नजदीक में थे वो
1: जी।
0: तो मैं असद वो वालिद साहब को बोला मैं चाचा कौन, मुझे कौन म्यूजिक डायरेक्टर लेगा। उन्होंने एक दिन एक सीटिंग रख दी, बोले काम कर दो दिन बाद मैं तेरे को एक जगह लेके जाऊंगा। मुझे बताया नहीं कहाँ ले जाएंगे। मैंने जाके समीर जी को बोला, समीर सेन जी को, मैं बोला बेटा ऐसा ऐसा है समीर यार एक जगह सीटिंग है, अपने को फिल्म मिल सकती है। तो वो हंसने लगा, भाई साहब हंसने लगे। बोला तुमको कौन म्यूजिक डायरेक्टर लेगा यार, कौन इतना ऐसा बड़ा आदमी आ गया जो तुमको लेगा। मैं बोला जाके आने में क्या बुराई है। बोले जाओ। तो हम गए साहब, हम लोगों को सोचा कि शायद ये तो म्यूजिशियन है, कोई इनका बड़ा आदमी आएगा तो सुनाएगा। तो हम लोग 10-11 बजे गए, तो 3-4 बजे तक कोई हमारी से सुनवाई नहीं। तो असद भोपाली साहब ने जगदीप साहब को बोला यार जगदीप तुम आ जा गाने सुन ले। तो बोले इनका कौन सुनाने वाला कौन है इनमें। बोले यही बच्चे। बोले ये बच्चे सुनाएंगे। ये तो किसी एंगल से ही लग रही थे मुझे डॉक्टर, और वाकई में नहीं लग रहे थे। अब इस एंगल में तो कोई शक्ल तो थी नहीं हमारी,
1: बिल्कुल,
0: और दुबले पतले से थे हम। तो खैर उन्होंने जब सुना, सुनने के बाद में आप यकीन मानिए हम लोगों ने 4-4:30 बजे शुरू किया, रात के 12-1 बज गए। 12-1 बजे के बाद में उन्होंने कहा कि भाई देखो गाने तो तुम्हारे काफी अच्छे लगे हमको, हम खुद थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं कि इसमें से कौन सा ओके करें कौन सा नहीं करें, आप सुबह आ जाइए आप हमारी फिल्म कर रहे हैं। तो मेरे तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, मुझे रात भर नींद नहीं आई। हम सुबह पहुंचे, उस वक्त जगदीप साहब एक फिल्म कर रहे थे मोहब्बत, जिसमें अनिल कपूर, विजेता पंडित और जगदीप साहब थे। तो वो शूटिंग के लिए जा रहे थे, तो मैं घर पहुंचा, बोला भैया तुम लेट हो गए हो, मैं तो निकल रहा हूँ, बच्चे लोग हैं तुम अंदर चले जाओ। तो हम अंदर गए तो एक छोटा सा लेटर था, वो साइन करवाया, हमको एक छोटा सा लिफाफा दिया। तो मेरे तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मैं बोला भाई पिक्चर मिल गई
1: जी।
0: तो आप यकीन मानिए कि वो खुशी खुशी हम खुश हो गए।
1: वो फिल्म सुरमा भोपाली,
0: सुरमा भोपाली। मगर इस बात के लिए मैं एक चीज के लिए क्रेडिट देना चाहूंगा जगदीप साहब को। उन्होंने मुझे एक चीज सिखाई कि एक सिचुएशन पे एक ही मुखड़ी की कितनी धुन बन सकती है। तो ये स्टाइल उन्होंने सिखाया मुझे, तो मैं उनके यहाँ सीखता गया। उन्हीं के यहाँ मैंने एडिटिंग सीखी, उन्हीं के यहाँ मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक सीखा, फोली क्या होता है, जो इफेक्ट वगैरह होते हैं फिल्म के, यानी टोटल मेकिंग जो होती है फिल्म की, वो 5 साल में मैंने जगदीप साहब के यहाँ सीखी, जो मुझे बाद में इतना बेनिफिट की वो चीज़ कि आज जब मुझे, मतलब जब मैं सक्सेस हुआ, तो मेरी सक्सेस में कहीं ना कहीं जगदीप साहब का भी हाथ है
1: जी।
0: जैसे गुलशन जी को हम मानते हैं
1: जी,
0: मगर कंपोजिशन में बनाने में जगदीश साहब का हाथ रहा। तो आज अगर एक सिचुएशन आती है, तो जैसे एक एग्जांपल अगर आप बुराना माने तो सुनाना चाहूंगा, हमने ये दिलगी के सारे गाने कंपोज कर लिए थे। तो यश जी ने कहा कि मुझे तानसेन बोल देते
1: जी।
0: बोले तानसेन मेरा ये जो लड़का है ये करोड़पति घर का है मगर प्ले बॉय है। तो प्ले बॉय मतलब मैंने, वो क्या होता है, बोले बिगड़ा हुआ।

0: तो मैंने समीर राइटर जो हमारे अनजान है, मैं बोला यार बिगड़ा हुआ लड़का करोड़पति का क्या अलग होता है, या वो झोंपड़पट्टी का अलग होता है क्या, ये बिगड़ा हुआ क्या कर, बोला ये भी लड़कियां छेड़ता है। मैं बोला गरीब वाला, बोला ये झोंपड़पट्टी वाला भी लड़कियां छेड़ता है। तो मैं बोला यार धुन क्या बनेगी, तो हमने इसकी जगह धुन बनाई एक पहले, प्यार में दिल का मुर्गा बोले कुकड़ू कु आई लव यू तू ना धुन धुन तू ना धुन तुम,
1: बिल्कुल।
0: फिर उसके बाद में एक धुन इसी सिचुएशन पे बनाई, वो ये दिल तेरा है दीवाना अय्यो अय्यो, फिर इसी सिचुएशन पे तीसरा गाना हमने बनाया अपना, ये जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले। मगर हम अक्सर ये दो धुने यश जी को सुनाते थे, ये गाना सुनाते ही नहीं थे। तो इसका ये रहा कि ये हमको दो तीन महीने हो गए अब ये गाना, बाकी गाने सब कंपोज हो गए। यश जी का क्या सिस्टम था कि सारे गाने कंपोज करवा लेते थे और सारे गानों की राइटिंग और धुन और म्यूजिक तक फाइनल करके फिर रिकॉर्डिंग में जाते थे। ऐसे ही हमने आईना की थी, तो सेकंड पिक्चर के लिए भी सारे गाने कंपोज हो चुके थे, खाली ये एक बचा था। तो ये हम सुनाते नहीं थे क्योंकि इसका जो वर्ड था, जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले, मैं बोला कहीं यश जी ये नहीं पूछ ले यार ये ओले ओले क्या है,
1: क्या है?
0: तो फिर क्या जवाब दूंगा,
1: जैसे इलू इलू क्या है, ये प्रश्न उठा था।
0: नहीं ओले तो देखिए, ओले मराठी में ओले बोलते हैं गीलेपन को।
1: अच्छा,
0: और वैसे ओले जो गिरते हैं।
1: इस पर मैं बात करूंगी आपसे क्योंकि ये गीत कैसे रचा गया था। पहले आपकी पसंद का एक गीत सुन लेते हैं, आप बताइए और थोड़ा गा के सुनाइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप।
0: मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं सबसे ज्यादा फॉलो करता हूं इनको, अपना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को।
1: अच्छा,
0: इनका एक गाना मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है, वो इसलिए पसंद है, कुछ कहता है ये सावन क्या कहता है, ये जो अंदाज था उनका ये कमाल था।
1: तो ये गीत सुन ले
0: जी,
1: चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: बात चल रही थी दिलीप सेन साहब की गाना कैसे बनते हैं। आपने कहा कि आशा भोसले की आवाज में आपने पहला गीत ही रिकॉर्ड किया था जिसका जिक्र, तो उनके साथ आशा ताई के साथ काम करने का ये जो नया नया अनुभव था जब आप बिल्कुल नए थे, कैसा रहा?
1: मैं यही कहना चाहूंगा आपको कि मंगेशकर परिवार जो है, मेरे परिवार से वाबस्ता तो था ही, क्योंकि पिताजी को जानते थे, फिर बड़े भाई साहब को जानते थे,
0: जी।
1: तो वो एक रिस्पेक्ट, वो प्यार तो था उनके दिल में। मगर हम लोग अच्छा काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये तो जब उनके साथ बैठने से पता चला। पर आशा जी ने जब ये गाना सुना तो नुशा साहब आए हुए थे, तो गाने सुनने के बाद में समीर उनके साथ काम करता था पहले, अब मुझे देख के खुश भी हुई कि ये डरा डरा साहब बोल डर नहीं, अच्छा कर रहा है, तुम बहुत अच्छा करता है। नुशा साहब को बोला कि नुशा साहब ये गाना उल्टा लग रहा है, तो फिर समीर जी को बुलाया उसने, आशा जी ने बोला समीर इधर आ, ये गाना क्रॉस से आता है तो उल्टा हो जाता है। समीर ने जब देखा बादल सताए हम लोग गाना लगा, तो वो मेरे को समीर बोलता है यार गाना तो उल्टा हो गया। तो मेरे बड़े भाई साहब शंभू सेन जी थे मेरे साथ, तो भाई साहब बोले भाई तू गाना बनाया, तेरे को बनाते वक्त ध्यान नहीं था, अब इसको सब में कैसे लाएगा। मैं बोला भाई साहब ये 8 मात्रा का नहीं है, 4 मात्रा का है। बोले 4 मात्रा कैसे? मैं बोला लेजिम ठेका है, दिन ताक दे दिन आग दिन ताक दिन ताक दिन ताक दिन, तो 4 बीट का गाना है।
0: अच्छा,
1: ये जो लेजिम एक आते हैं हमारे मराठी में, आपने देखा होगा बच्चों को सिखाया जाता है, तो मैं बोला उस ठेके पे बना हुआ गाना है
0: जी।
1: ये, 4 बीट का ही है, तो आप सम 4 बीट में लोगे तो ये परफेक्ट आएगा, आप 8 मात्रा में गिनोगे तो उल्टा हो जाएगा।
0: हाँ।
1: तो इस तरीके से वो रहा। तो आशा जी इस बात को नोट करती रही और उनको लगा, उन्होंने
0: कि एक नई बात है,
1: नहीं नई बात के अलावा उन्होंने समीर को बोला कि यार लगता है तेरे चाचा में कुछ बात है। तो ये उन लोगों के आशीर्वाद और दुआ रही। और मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि एक म्यूजिक डायरेक्टर का एक सपना होता है, बाकियों की बात नहीं कहूंगा मैं अपनी करूँ, कि जिन्होंने मंगेशकर परिवार के साथ काम किया, जैसे लता जी के साथ आशा जी के साथ काम करना एक एक ड्रीम होता है, और वो ईश्वर ने यशराज फिल्म में मेरा कंप्लीट किया
0: जी।
1: कि दोनों बहनों के साथ मैंने 2 फिल्मों में काम किया
0: जी,
1: आईना और ये दिल लगे में
0: जी। तो आप कितने भाग्यशाली रहे दिलीप सेन साहब कि एक शुरुआत में आपको यश जैसा बड़ा बैनर मिला, यश चोपड़ा जी का, और आईना और ये दिल लगी जैसी फिल्में मिली, आशा जी और लता जी के साथ गाने का
1: मौका मिला
0: बहुत बड़ी बात थी आपके लिए।
1: बहुत बड़ी नहीं, तो ड्रीम था, सपना था।
0: मतलब पूरा हो गया इतनी जल्दी, जो उम्मीद भी नहीं होती, तो कैसा लगा होगा, आपकी मनस्थिति क्या रही होगी, और लता जी के साथ काम करने का भी कोई अनुभव हमसे साझा कीजिए आप।
1: देखिए दीदी के साथ तो पहला तो मैं ये कहूँ कि दीदी की एक आदत थी कि वो बहुत सॉफ्ट बोलती थी।
0: अच्छा।
1: बात करने से पहले चश्मे को थोड़ा नाक पे लेती थी।
0: अच्छा।
1: फिर ऊपर करके कैसा बरा ठीक है, इतना सॉफ्ट बोलती थी
0: जी।
1: तो पहला गाना जब मैंने उनके साथ किया था गोरिया रे गोरिया रे, तो क्योंकि डरा हुआ था तो एकदम खुल के बैठ भी नहीं सकता था एज ए म्यूजिक डायरेक्टर, तो सजना वे मेरी नींद उड़ा के ले जा।

0: तक दिन आगे दिन दिन तीन ना उन्होंने वैसे ही गा दिया
1: जी।
0: अच्छा, मुझसे इन लोगों ने कहा था, क्योंकि जब डबिंग हो रही थी तो दीदी अकेली थी जब उनकी डबिंग के वक्त, क्योंकि उस वक्त स्ट्राइक सिस्टम आ गया था, तो मुझे ये कहा गया था कि बार बार टॉक बैक से इनको बोला नहीं जाता था।
1: अच्छा।
0: दीदी से अगर कुछ बात करनी हो तो आपको कट करके फिर उनके रूम में जहाँ पे सिंगिंग रूम है वहां जाके बोलना पड़ता था। तो मुझसे कहा गया था बिल्कुल कुछ नहीं बोलोगे, तुम चुपचाप बैठे रहो, गाना होने दो। गाना पूरा हो गया तो मैं ऐसे रहा नहीं गया। फिर मैं उठ के गया, दीदी को हाथ वाथ जोड़े, तो दीदी ने मेरी तरफ देखा मुस्कुराते हुए, पूछा कैसा, ठीक हो गया? बोला दीदी गाना तो बहुत अच्छा हो गया, मगर एक जगह रह गई। फिर वो जरा क्वेश्चन मार्क से मेरी तरफ देखी, बोले मेरे से जगह रह गई? क्या रहा? जगह कैसे रह गई? कोई सुर कम लगा? मैं बोला नहीं नहीं सुर कम नहीं लगा, वो मींड रह गई। बोले कैसे? बोला आपने गाया सजना वे मेरे नींद के ले जा तक दिन आगे दिन। बोला हाँ ऐसे ही तो गाया है। मैं बोला यहाँ ये एक बार मेरा रह गया, तू कैसे चाहता था? मैं बोला सजना वे मेरे नींद के ले जा तक, तो मैं बोला ये ले जा तक। अच्छा अच्छा हाँ ठीक है मैं गाती हूँ। मैं बोला नहीं अब तो मेरे को गुस्सा करेंगे, रहने दीजिए हो गया, नहीं तो पूरा गाना गाना पड़ेगा। हाँ बोली मैं गाऊंगी ना। मतलब इतनी बड़ी स्टार सिंगर,
1: नम्रता, इतनी
0: नम्रता के अलावा उन्होंने मुझे ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं नया कल का लौंडा हूँ, जबकि उन्होंने मेरे पिताजी भाई साहब और उनके अलावा दिग्गजों के साथ काम किया।
1: लेकिन एक महान,
0: मगर उन्होंने ये देखा कि ये बच्चे ने काम किया है और ये जगह उसने सही बनाई है, तो मुझे इसको डोमिनेट नहीं करना है। उन्होंने सीधा प्रेम जी को बोला, टैगोर को बोला आप ये दोबारा करो, मैं गाऊंगी। तो गाया और वो गाना कमाल हुआ,
1: बहुत सुंदर गाना।
0: तो ये दोनों बहनों में ये बहुत खास बात थी कि इतने प्यार से। और एक किस्सा आपको और सुनाना चाहता हूँ दीदी का। हम जब सेकंड पिक्चर कर रहे थे ये दिल लगी तो उसमें एक गाने के लिए आई थी वो, गोरी कलाई कलाई में कंगना है कंगना ने लिया तेरा नाम हो सजे नाम।
1: वाह बहुत सुंदर।
0: तो दीदी को 12 बजे का टाइम हमने दिया था, तो हमारे पास पुरानी गाड़ी थी फिएट, तो हमको 12 बजे के बजाय 12:15 तक हम लोग पहुंचे। मैंने जाते ही दीदी के पैर छुए, माफी मांगी, तो फिर बैठी हुई गाना सुन रही थी। बोला नहीं नहीं ठीक है, दूर रहते हो ना, कोई बात नहीं, मैं गाना सुन लिया है, बोल कैसे क्या करना है। मैं बोला ऐसा ऐसा है, गाना हो गया। मैं बोला दीदी एक गाने में सिर्फ 3 लाइन है आपकी। तो मेरी तरफ देखी और बोली क्यों, मैं अच्छा नहीं गाती क्या? गाने में 3 लाइन ही मेरी रखी है। मैं बोला नहीं दीदी वो गाना ही ऐसा है। कैसा है? तो गाना 3 सिंगरों का था।

0: वाह सुंदर।
1: ना समझोरी से दिल लगी, सुना उन्होंने मैं बोला इस तरीके से। तो गाना ये भी हो गया। मैं बोला दीदी खाना आ रहा गहलोत से। बोला दीदी एक गाने में सिर्फ बातचीत करनी है। बोला क्यों, तूने धुन नहीं बनाई? मैं बोला नहीं, आपका एक गाना था ना वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का, अच्छा तो हम चलते हैं।
0: हाँ
1: तो बोले क्या तूने वो चोरी किया है धुन? मैं बोला नहीं चोरी नहीं की है, मेरा गाना सुन लीजिए आप वो कैसा है। मैं बोला नाम क्या है प्यार का मारा, घर का पता दो दिल
0: दिल
1: है
0: है
1: तुम्हारा,
0: तुम्हारा।
1: क्या करते हो तुमसे प्यार, इसका नतीजा कुछ हो यार, नाम क्या है प्यार का मारा। ये भी सुना उन्होंने, सुनते बोला ठीक है अच्छा है नया स्टाइल है गाती हूँ। ये भी गा दिया उन्होंने। तब तक खाने में थोड़ा और लेट
0: टाइम
1: हो रहा
0: लग
1: था।
0: गया। हाँ
1: मैं बोला दीदी अब खाना आने ही वाला है, एक काम कीजिए एक गाना सिर्फ आप सुन लीजिए, गाएंगे नहीं।
0: हाँ
1: बोला क्यों, तुझे मेरे पर कॉन्फिडेंस नहीं? मैं बोला दीदी बहुत है, ये मेरे दिल के करीब है।
0: जी
1: बोला अच्छा। तो अक्सर मैं क्या करता हूँ, जब कोई गाना है उस दौर में जब ये ट्रैक सिस्टम आ गया था, तो मैं अपनी वॉइस में गा के रख देता था कि अगर मैं थोड़ा लेट हूँ तो सिंगर वो गाना सुन के लिख भी लेता था और धुन भी याद हो जाती थी। तो मैंने मैंने बोला एक रफ गाया है मैंने, सुन लीजिए आप। तो गाना इस तरीके से था।

0: मतलब जब ये अंदाज उन्होंने सुना तो
1: जी
0: दो मिनट तो मेरी तरफ देखी, फिर मुस्कुराई, लाचा लिखा मुझे। लिखने के बाद में उन्होंने दमन सूद साहब से बोला कि सूद देख ले, अगर मेरी वॉइस करेक्ट नहीं होती हो तो एक ट्राई करके देखते हैं। मैं बोला रहने दीजिए दीदी, क्योंकि अब आप भी थक गई होंगी 3 घंटे। बोले नहीं, ट्राई करते, नहीं हुआ तो फिर बाद में देखेंगे। अब उन्होंने 1 टेक में ही गाना परफेक्ट गा दिया, गाना हो गया। उसके बाद में जब तक खाना आ गया था तो यश जी भी आ गए थे
1: जी।
0: तो यश जी बोला, यार मैं तो एक गाने के हिसाब से पेमेंट आया, तुमने तो चारों कर दिए। अरे ये जिंदगी में पहली मर्तबा हुआ
1: जी
0: कि दीदी ने, लता दीदी ने एक ही स्टूडियो में एक ही म्यूजिक डायरेक्टर का, एक ही फिल्म का,
1: चार
0: एक ही समय में 4 गाने गाए हूँ। ये मेरे लिए बहुत
1: क्रेडिट आपको गया
0: जी, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात रही
1: जी।
0: और मैं समझ रहा हूँ शायद दुनिया में ये पहला ऐसा मौका रहा होगा दीदी के लिए
1: जी।

0: फिर खाना खाते खाते मैंने दीदी से पूछा, मैं ये बात आपके रेडियो के माध्यम से पब्लिक तक जो सिंगर बनना चाहते हैं उनको कहना चाहूंगा कि देखिए सिंगर ऐसे ही बड़ा नहीं बनता है
1: जी।
0: सिंगर के कुछ नियम होते हैं जो कि हर आज नए सिंगर हो या पुराने सिंगर हो उनको ये बात का ध्यान रखना चाहिए। जब दीदी से मैंने ये बात कही कि दीदी आप क्या हर म्यूजिक डायरेक्टर से हर बार बोलती थी, क्यों, उनकी एक आदत थी, जैसे मैंने गाना गाया गोरिया रे गोरिया रे मेरा दिल चुरा के ले जाता, फिर बोलती थी एक बार और, ऐसे करके 5-6 बार सुनती थी।
1: अच्छा,
0: तो मैंने कहा दीदी बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं, आप क्या हर म्यूजिक डायरेक्टर से बोलती थी कि एक बार और एक बार और? तो हंसने लगी, बोले दिलीप मैं गाना तो सुनते ही मुझे याद हो जाता है।
1: अच्छा,
0: मगर मैं गाना बार बार इसलिए सुनती हूँ कि म्यूजिक डायरेक्टर जब गाना बनाता है उस वक्त वो अलग शक्ल में होता है, फिर उस पर वो गाना लिखता है तो वो अलग शक्ल बन जाती है, फिर वो गाना डायरेक्टर तक जाता है तो उसकी और शक्ल अलग हो जाती है, फिर वो प्रोड्यूसर सुनता है तो और शक्ल हो जाती है, फिर म्यूजिशियन के पास आते आते और अलग हो जाता है, और जब सारे म्यूजिशियन मिक्स होकर करते हैं तो वो परफेक्ट एक सॉन्ग बनता है, तो म्यूजिक डायरेक्टर के अंदर वो पूरा गाना वार्म अप हो जाता है। तो मैं म्यूजिक डायरेक्टर के एक्सप्रेशन नोट करती हूँ कि वो गाते वक्त उसके चेहरे के हाव भाव क्या हो रहे हैं,
1: क्या बात है,
0: और कौन से शब्द पे वो सांस ले रहा है, कौन से शब्द पे उसके चेहरे के क्या हाव भाव चेंज हो रहे हैं, तो मैं वो ऑब्जर्व करके फिर अपनी फील देती हूँ। और ये आज के सिंगर को हमेशा होना चाहिए कि आप जब गाना आते हैं किसी भी म्यूजिक डायरेक्टर का, चाहे वो नया म्यूजिक डायरेक्टर हो चाहे पुराना हो या आपके बराबर ही हम दोस्त भी हो, आप पहले गाने को सुने, उसकी सिचुएशन सुने, प्लस उसके एक्सप्रेशन के अलावा, क्योंकि जो शब्द आप गाओगे वही एक्सप्रेशन देगा आपका हीरो
1: बिल्कुल
0: या हीरोइन
1: बिल्कुल।
0: तो आपको ये चीज जरूर याद रखनी चाहिए कि भाई मैं जिस तरीके से गाऊंगी वही एक्सप्रेशन डांस डायरेक्टर वहां पिक्चराइज करेगा, वही एक्सप्रेशन हीरो हीरोइन देंगे, तो वो अच्छा लोकेशन भी पूछना चाहिए, पिक्चराइजेशन का समय भी पूछना चाहिए, जैसे कि पुराने सिंगर पूछते थे अच्छा कहाँ हो रहा है, नाइट में हो रहा है या डे में हो रहा है, आउटडोर हो रहा है कि इंडोर हो रहा है, नदी के किनारे हो रहा है कि गार्डन में हो रहा है, कि बर्फीली पहाड़ियों में हो रहा है, कि खंडर में हो रहा है, कि डेजर्ट में हो रहा है, कि रेतों में, तो ये जो सिचुएशन है पहले पूछते थे,
1: मतलब इतनी गहराई में जाना होता है एक कलाकार को, एक सिंगर को, एक संगीतकार को,
0: जिस तरीके से संगीतकार जाता है, जैसे मैं जाता था,
1: गीतकार भी जाता होगा निश्चित रूप से,
0: नहीं डेफिनेटली हमको सबको जाना पड़ता है उसमें, क्योंकि जब हम लोग, क्योंकि जो कंपोज हम करेंगे, जो शब्द हम कंपोज करेंगे, जो भाव सिंगर देगा गाने में, जैसे उतार चढ़ाव, जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग जब गाना गवाते हैं सिंगर से तो गाना तो उसी वक्त याद हो जाता है, मगर उसको डबिंग करते वक्त 2-3 घंटे क्यों लगते हैं, क्योंकि वो जो एक्सप्रेशन होते हैं शब्द के, हम वो उससे करवाते हैं। जैसे कि एक किस्सा सुनाता हूँ आपको, जैसे हरिहरन जी चित्रा जी हमारे बहुत ही सुलझे हुए सिंगर हैं, दोनों क्लासिकल के माहिर हैं,
1: चित्रा जी
0: मद्रास के, साउथ की,
1: चित्रा के
0: हम चित्रा जी बोलते हैं उनको, उनका जब मैंने पहली फिल्म उनके साथ की थी जिद्दी, तो मेरा गाना था हम तुमसे ना कुछ कह पाए, तुम हमसे ना कुछ कह पाए।

0: तुमसे
1: क्या बात है, बहुत
0: तो ये गाना उन्होंने 2 घंटे में गा दिया।
1: जी जी।
0: जब सैम दोनों सिंगर मेरी फिल्म आई अफलातून, जिद्दी में भी डायरेक्टर थे गुड्डू धनवा जी, बबुल पचीजिया जी प्रोड्यूसर थे, अफलातून के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे गुड्डू धनवा जी। तो उसका एक गाना था

0: किसी बड़े सिंगर के साथ काम करते हैं तो आप बार बार कट नहीं कर सकते हैं
1: जी।
0: तो आपको क्या है कि उनके रिस्पेक्ट को भी रखना है, उनकी जो ओहदा है, जो उनकी पोस्ट है
1: उसको भी रखना है,
0: उसको भी कायम रखना है, और हमें हमारी जो चीज चाहिए वो भी निकलवानी है। तो उसके लिए क्या करता था मैं, आधा घंटा 15 मिनट किया, फिर मैं ब्रेक ले लेता था। फिर उन लोग पूछते थे क्या हुआ, हम बोला नहीं मैं एक मिनट थोड़ा ब्रेक लेता हूँ, फिर जाता था उनके कैबिन में, हॉल में जाके फिर बैठते थे, आइए जरा 2 मिनट बैठते हैं, क्या हुआ सर कुछ, नहीं नहीं मैं बोला बहुत बढ़िया हो रहा है
1: जी,
0: उनको ये नहीं बता रहा हूँ कि क्या कमी हो रही है। फिर बैठ के बातचीत करते थे, फिर बातों बातों में मैं बोला जैसे ये जगह ना पलकों के साए में सो जा तू, फिर उधर थोड़ी सी बातें मैं अंदाजे से ही बता देता, ऐसा नहीं बताता था कि आपसे नहीं निकल रहा है। मैं बोला ऐसा कुछ सोच सकते हैं अपन लोग, हाँ हाँ सर कर सकते हैं, मैं बोला ऐसा कुछ सोच सकते हैं, अंजाऊ तुझे मैं छुपा लूं, तो ये मुर्गी रिमाइंड ये भी आ सकती है शायद, हाँ आ सकती है सर। तो जैसे बच्चों को कैसे हम लुभाते हैं
1: साइकोलॉजिकल,
0: तो वैसे उनके, क्योंकि इतने बड़े स्टार के साथ या इतने बड़े सिंगर को आप बार बार अगर ऐसे करेंगे तो वो कहीं ऐसा ना हो कि बुरा मान जाए, प्लस कहीं फंस ना जाए। अच्छा सिंगर अक्सर ऐसा फंस जाते हैं, वो लूप अगर लग गया उनको फिर अटक गए तो अटक गए, तो बहुत ही बच्चों की तरह ट्रीट करके उनके साथ वो निकालवा के, क्योंकि वो इस काबिल थे और काबिल है।
1: चलिए गीत सुनते हैं, पहले आपकी पसंद का
0: आप वो गाना लगाइए जिस गाने को दीदी ने बड़े प्यार से गाया है
1: जी।

आप सुन रहे थे संगीतकार जोड़ी दिलीप सेन समीर सेन के दिलीप सेन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग अंबालिका सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

FM 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। कुछ ही पलों में शाम के 5 बजने वाले हैं और आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार। बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं और ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सके और किसी भी छात्र का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में न उलझे, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के बाद सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी और परीक्षा रद्द कर दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने अगले वर्ष से इस परीक्षा को कंप्यूटर आधारित परीक्षा मोड में आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस बीच सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के बीच नई दिल्ली में तीसरे दौर की वार्ता जारी है। इसमें परीक्षा प्रणाली में सुधार और प्रश्न पत्र लीक की घटनाओं को रोकने के उपायों पर प्रतिनिधिमंडल की मांगों पर चर्चा हो रही है। भाजपा ने संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा से कांग्रेस के पीछे हटने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने यह बात कही।
1: कांग्रेस पार्टी से स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि सोमवार को संसद के वर्तमान सत्र का दूसरा सप्ताह प्रारंभ होगा, आप इस समस्या पर और आपके द्वारा जो भी विषय रखे गए जब सरकार संसद में चर्चा करने के लिए तैयार है तो आप सोमवार से संसद की चर्चा में भाग लेंगे अथवा पुनः चर्चा से भागेंगे।
0: उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोगों का एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक लाभ उठाना है, न कि छात्रों की चिंताओं का समाधान करना। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का 10 साल का सफर सार्वजनिक जीवन और विद्यार्थी कल्याण के प्रति आजीवन समर्पण का प्रमाण है। उन्होंने श्री धर्मेंद्र प्रधान को उनके अथक सेवा, सुधारों के प्रति प्रतिबद्धता और मजबूत देश के निर्माण में योगदान के लिए धन्यवाद दिया। श्री रिजिजू ने देश के शिक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने और लाखों युवा विद्यार्थियों को हर निर्णय के केंद्र में रखने के लिए श्री प्रधान के ईमानदार प्रयासों की सराहना की। दिल्ली पुलिस ने लोगों को नई दिल्ली क्षेत्र की ओर जाने से बचने की सलाह दी है, क्योंकि पूरे जिले में भारी भीड़ और यातायात जाम देखा जा रहा है। पुलिस ने यात्रियों को निर्देश दिया है कि वे देरी से बचने और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार खोल दिए हैं। प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया है। श्री शेखावत ने कहा कि सारनाथ शांति, ज्ञान और करुणा का शाश्वत प्रतीक है। कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में सिंगापुर

0: प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया है। श्री शेखावत ने कहा कि सारनाथ शांति, ज्ञान और करुणा का शाश्वत प्रतीक है। कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में सिंगापुर के कानून मंत्री एडविन टोंग एससी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। श्री मेघवाल ने दोनों देशों के कानूनी सहयोग को मजबूत करने, वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देने और संस्थागत तथा न्यायिक सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रोमानिया में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना करते हुए उन्हें दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बताया। बुखारेस्ट में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रवासी भारतीय अपनी मातृभूमि से गहराई से जुड़े हुए हैं और अपनी उपलब्धियों तथा समर्पण से हर भारतीय को गौरवान्वित करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। हरारे में भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरे T20 क्रिकेट मैच में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 7 ओवर में 2 विकेट पर 61 रन बना लिए हैं। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। अनहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में अनहत का सामना आज मिस्र की रुकैया सलेम से होगा। अनहत जोशना चिनप्पा के बाद विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र।

0: Piles Hospital. Call करें 9814128667 पर और Piles से मुक्ति पाएं।
1: प्रस्तुत है फिल्म संगीत। आइए सबसे पहले सुनते हैं फिल्म चांदनी का गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और बाबला मेहता ने। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं शिवहरी।

आइए अब सुनते हैं अगला गीत फिल्म घर से, जिसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। गीतकार हैं गुलजार और संगीतकार हैं आर डी बर्मन।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। इस समय आप हैं विविध भारती चंडीगढ़ के संग एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे।

Hi dear friends, welcome to Lamhe program with me, your RJ Chetan. Today I am talking about gentle parenting. क्या होती है gentle parenting? क्यों हो रही इतनी popular? आजकल के digital दौर में बच्चों के परवरिश करना भी एक challenge बन गया है. ऐसे में भी अब gentle parenting काफी चर्चे में है. इसे celebrities भी अपना रहे हैं. चलिए आज के लम्हे प्रोग्राम में हम जानेंगे कि gentle parenting क्या है, इसे कैसे अपनाएं और इसके फायदे क्या होते हैं. आज के दौर में जब टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया और भागदौड़ भरी जिंदगी ने बच्चों की परवरिश को भी मुश्किल बना दिया है, तब माता पिता के सामने सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि कैसे बने अच्छे पेरेंट्स, बच्चों को डिसिप्लिन कैसे करें लेकिन बिना डांटे या मारे, कैसे उनके साथ ऐसे रिश्ते बनाएं जहां वो खुलकर बात कर सके और साथ ही जिम्मेदार भी बने. इसी सवाल के जवाब में एक नया ट्रेंड सामने आया है जो है जेंटल पेरेंटिंग. कई मशहूर सेलिब्रिटी पेरेंट्स भी इस स्टाइल को अपना रहे हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ एक फैशन है या ट्रेंड है? वाकई में बच्चों के बेहतर परवरिश का रास्ता है या? आइए विस्तार से समझते हैं कि जेंटल पेरेंटिंग होती क्या है और क्यों ये स्टाइल इतनी पॉपुलर होता जा रहा है. आज के लंबे प्रोग्राम में आपके आरजे चेतन से. ये एक ऐसी परवरिश जिसमें बच्चों के साथ सख्ती नहीं बल्कि समझदारी, संवेदनाशीलता और सम्मान से पेश आया जाता है. ये तरीका कहता है कि बच्चों की गलतियों पर गुस्सा करने के बजाय उन्हें समझाया जाए, उनकी फीलिंग्स को सुना जाए और उन्हें इमोशनल तौर से सेफ माहौल दिया जाए. इस पेरेंटिंग स्टाइल में बच्चों को कंट्रोल नहीं किया जाता है बल्कि उसके व्यवहार को समझकर और उसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करते हुए गाइडेंस दी जाती है. अगर बच्चा जिद कर रहा है या गुस्से में है तो उस पर चिल्लाने के बजाय उसकी फीलिंग्स को पहचाना जाता है. जैसे मुझे पता है तुम गुस्से में हो क्योंकि तुम्हें अभी वो खिलौना चाहिए था, चलो मिलकर कोई हल निकालते हैं. तो दोस्तों क्या आप कभी सोचे कि जेंटल पेरेंटिंग क्यों हो रहा है इतना पॉपुलर? इमोशनल कनेक्शन को बढ़ावा देती है ये जेंटल पेरेंटिंग. बच्चे खुद को माता पिता के करीब महसूस करते हैं जिसे रिश्ते में गहराई आती है और बच्चे भी ज्यादा विश्वास के साथ कम्युनिकेट करते हैं. सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ कंट्रोल सिखाती है. जब बच्चों को उसकी बात कहने का मौका मिलता है तो वो सेल्फ डिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट बनता है. उसे पता होता है कि उसकी बात मानी गई है या नहीं, कम से कम सुनी जरूर जाएगी. डर के बजाय समझ से नियम सिखाते हैं. ट्रेडिशनल सख्त पेरेंटिंग में बच्चे अक्सर डर से सही व्यवहार करते हैं, लेकिन जेंटल पेरेंटिंग में वो खुद समझते हैं कि कौन सा व्यवहार क्यों गलत है. मेंटल हेल्थ के लिए बेहतर है ये जेंटल पेरेंटिंग. ये स्टाइल बच्चों के मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद करती है. इसकी मदद से उन्हें कम तनाव होता है और इमोशनल रूप से वे ज्यादा स्थिर होते हैं. क्या जेंटल पेरेंटिंग का मतलब है कि बच्चों को कुछ भी करने दिया जाए? बिल्कुल नहीं. जेंटल पेरेंटिंग में भी रूल और ब्रांडिंग होती है, लेकिन उनका पालन साझा या डर से नहीं, समझ और सहयोग से करवाया जाता है. एग्जाम्पल के तौर पर अगर बच्चा खाने से मना कर रहा है तो उसे डांटने के बजाय ये कहना, मुझे पता है अभी तुम्हारा मन नहीं है लेकिन खाना जरूरी है ताकि तुम हेल्थी रहो, चलो चलो साथ बैठकर खाते हैं. बच्चों के बात ध्यान से सुने भले ही वो छोटी सी बात क्यों न हो. तुम गलत हो कहने के बजाय पूछो तुम ऐसा क्यों महसूस कर रहे हो. गलत व्यवहार पर गुस्से के बजाय ऑप्शन दे, ऐसा नहीं ऐसा करके देखो. जो व्यवहार आप उनसे चाहते हैं पहले खुद अपनाएं. दोस्तों बच्चों की परवरिश करने के लिए पेरेंट्स तरह तरह के तरीकों को अपनाते हैं. ऐसा भी नहीं है कि हर बच्चे के लिए एक ही तरह का पेरेंटिंग स्टाइल कारगर हो. कई बार एक ही बच्चे पर

अलग अलग पेरेंटिंग तकनीक अपनानी पड़ती है। ये पूरी तरह से परिस्थिति पर निर्भर करता है। पहले के समय पर पेरेंटिंग का तरीका बिल्कुल अलग हुआ करता है, लेकिन अब ज्यादातर पेरेंट्स जेंटल पेरेंटिंग स्टाइल को अपना रहे हैं। आइए आज के लम्हे प्रोग्राम में इसे सुनेंगे आपके आरजे चेतन से। पारंपरिक पेरेंटिंग स्टाइल में जब बच्चा कुछ अच्छा करता है या अच्छा व्यवहार दिखाता है तो उसे शाबाशी और गिफ्ट दिए जाते हैं, लेकिन अगर बच्चा कुछ बुरा करता है तो उसे डांट दिया जाता है और कुछ मामले में बच्चों की पिटाई तक हो जाती है। हालांकि जेंटल पेरेंटिंग स्टाइल बिल्कुल अलग है। इस पेरेंटिंग स्टाइल में पेरेंट्स अपने बच्चों के भावनात्मक जरूरतों और स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं। इसमें बच्चे के लिए सुरक्षित और अच्छा माहौल बनाने पर जोर दिया जाता है। इस तरह के पेरेंटिंग स्टाइल को फॉलो करने वाले पेरेंट्स बच्चों को सख्त सजा नहीं देते हैं, बल्कि बच्चों को उसकी भावनाओं को समझकर ठीक तरह से व्यवहार करना सिखाया जाता है। जब आप अपने बच्चों की जरूरत और भावनाओं को सुनते हैं और सहानुभूति और समझ के साथ जवाब देते हैं तो आप उन्हें उसी तरीके से बातचीत करना सिखा रहे होते हैं। जेंटल पेरेंटिंग आपके बच्चों को हेल्थी और सही तरीके से अपनी भावनाओं को पहचाने और व्यक्त करने में मदद करती है। ये एक जरूरी लाइफ स्किल है। जेंटल पेरेंटिंग एक दयालु दृष्टिकोण है जो बच्चे के भावनात्मक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक जरूरतों को समझने और उनका पालन पोषण करने पर केंद्रित है। इसके मूल में यह माता पिता और बच्चों के बीच सहानुभूति, सम्मान और सकारात्मक संचार पर जोर देता है। इस पालन पोषण दर्शन का उद्देश्य बच्चों को एक सहायक, अहिंसक और समझदार माहौल में बड़ा करना है। सौम्य पालन पोषण बच्चों को उनके अपने विचारों, भावनाओं और अद्वितीय व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों के रूप में पहचानता है। यह उनकी स्वच्छता को महत्व देता है और उनकी उम्र और समझ के अनुरूप निर्णय लेने की प्रक्रिया में उन्हें शामिल करने का प्रयास करता है। चिल्लाना, पिटाई या टाइम आउट जैसे दंडात्मक उपायों का सहारा लेने के बजाय सौम्य पालन पोषण सकारात्मक अनुशासन रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करता है। इसमें स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करना, पुनर्निर्देशन का उपयोग करना और तार्किक परिणामों को नियोजित करना शामिल हो सकता है, जो शर्म या डर पैदा करने के बजाय मार्गदर्शन करता है। सौम्य पालन पोषण करने वाले माता पिता अपने बच्चे के दृष्टिकोण पर सहानुभूति रखने का प्रयास करते हैं, व्यवहार और जरूरतों के पीछे अंतर्निहित कारणों को समझकर माता पिता अधिक प्रभावी ढंग से और दयालु पूर्वक प्रतिक्रिया दे सकते हैं। सुसंगत नियम और सीमाएं स्थापित करने से बच्चों को सुरक्षा और पूर्वानुमान की भावना मिलती है। हालांकि ये सीमाएं बच्चों के व्यक्तित्व और विकासात्मक अवस्था को ध्यान में रखते हुए सहानुभूति और लचीलेपन के साथ निर्धारित की जाती है। सौम्य पालन पोषण माता पिता को बाल विकास, प्रभावी संचार और उम्र उपयुक्त अपेक्षाओं के बारे में लगातार शिक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये सहयोगात्मक समस्या समाधान को भी बढ़ावा देता है और माता पिता को संघर्ष या मुद्दे के समाधान खोजने में बच्चों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो दोस्तों, ये एक नया टर्म है, ट्रेंडिंग है, जेंटल पेरेंटिंग। दैट वाज ऑल अबाउट जेंटल पेरेंटिंग इन टुडेस लम्हे प्रोग्राम। आज के लिए बस इतना ही, अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे। तब तक आप चेतन को दीजिए इजाजत, नमस्कार। Call or messages on 0951522703 9, that's 0951522703 9, or write to us at feedbackamc1@gmail.com, that's feedbackamc1@gmail.com. You can also follow us at our social media handle spice.lamhe.vanilla, that's spice.lamhe.vanilla. This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.

0: आकाशवाणी के संग एक्टर पॉडकास्टर सुप्रीत सिंह से रमेश कपूर की बातचीत का दूसरा भाग।
1: सुहाना सफर आकाशवाणी के संग।
2: सुहाना सफर आकाशवाणी के संग कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रमेश कपूर का नमस्कार। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में एक बार फिर हमारे हम सफर हैं एक्टर पॉडकास्टर और एक सफल उद्यमी श्री सुप्रीत सिंह। सुप्रीत सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुहाना सफर आकाशवाणी के संग कार्यक्रम में।
3: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
2: इससे पहले कि हम आपकी जिंदगी के सफर की कहानी आगे बढ़ाएं, आपकी जिंदगी से जुड़ी कुछ बातों के अंश जो पिछले प्रोग्राम में आपने हमारे साथ शेयर की थी, वो हम उन श्रोताओं को सुनवा दें जो किसी कारणवश हमारा पिछला कार्यक्रम सुहाना सफर आकाशवाणी के संग नहीं सुन पाए। जरूर उनके लिए एक रीकैप।
3: मेरा जन्म फगवाड़ा में हुआ था, पंजाब में एक शहर है फगवाड़ा। आई थिंक मैं 3 या 4 साल का होऊंगा तब मेरे पिताजी चंडीगढ़ आ गए थे। उनकी ट्रांसफर हुई थी, वो उस समय जॉब में थे। वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से एरिया मैनेजर बने थे, फार्मास्यूटिकल कंपनी में, एक मल्टीनेशनल में थे। उसके बाद फिर सेक्टर 44 में ही बचपन निकला। बचपन में क्रिकेट पकड़ लिया था और क्रिकेट में सक्सेस भी अच्छी मिल रही थी। पर जैसे हर मिडिल क्लास फैमिली में होता है कि पेरेंट्स को, फादर को स्पेशली, एक समय के बाद होता है कि बच्चे पढ़ भी लो, साथ में हम रोक नहीं रहे पर पढ़ लो। तो 11th में मेरी परसेंटेज कम आई थी, तो उसके बाद पापा ने बोला कि अभी तेरा लग नहीं रहा इतना उस हिसाब से, एंड उस समय IPL और ये सब चीजें नहीं थी, तो यू फोकस ऑन योर स्टडीज। वो समय लगा कि यार एक सपना टूटा, फिर लगा कि नहीं चलो पढ़ के शायद कुछ करेंगे। CET में अच्छा रैंक आया था तो पंजाब से इंजीनियरिंग की थी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में। तो यहीं से चंडीगढ़ में ही बड़ा हुआ हूँ, चंडीगढ़ को बदलते भी देखा है और आपको सुना है बचपन से, तो वो भी बहुत अच्छी यादें हैं। मेरे फादर ने जब जॉब छोड़ के बिजनेस शुरू किया था तो एज अ बैकअप फैमिली का एक वीजा लगाया था। कोइंसिडेंटली जैसे इंजीनियरिंग खत्म हुई तो मैं कनाडा पहुंच गया। इनफैक्ट ड्यूरिंग माय इंजीनियरिंग आल्सो माय फादर ही मेट विद एन एक्सीडेंट, तो मैं थोड़ा-थोड़ा बिजनेस में उनके आ गया था, समझने लग गया था, फील्ड में भी जाता था, मैनेज करता था, बट अंदर से था कि एक्टर बनना है या कोई परफॉर्मर बनना है। तो जैसे कनाडा गया तो मेरे फादर ने बोला अब वहां गए हो तो जो करना चाहते हो वो करो। तो वहां जाते ही बस दो ही ऑप्शन है, या तो एक्टिंग का कोर्स ज्वाइन करूंगा या ब्रॉडकास्टिंग का करूंगा। एक्टिंग का कोर्स लेट था और महंगा भी था, ब्रॉडकास्टिंग का थोड़ा सस्ता और इमीडिएटली शुरू हो रहा था। तो आई ज्वाइन ब्रॉडकास्टिंग एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का डिप्लोमा आई डिड फ्रॉम वैंकूवर, एंड दैट चेंज माय लाइफ, क्योंकि कम पैसे में कैसे मैनेज करना है वो भी कनाडा जैसी कंट्री में। आई एम टॉकिंग अबाउट 2009 बॉक्सिंग डे के दिन वहां पहुंचे थे, और उसके बाद उस समय इतनी इन्फ्लेशन नहीं थी जितनी आज की डेट में है, बट फिर भी महंगाई थी। उसने पैसे की वैल्यू सिखाई, फैमिली की वैल्यू सिखाई, समय की वैल्यू सबसे ज्यादा सिखाई, एक तरह से कह सकते हैं डिसिप्लिन एक लाइफ में आया। मैं मैक्सिमम लोगों को मिलता था, हर कोई कहता था कि पैसे कमा के वापस चंडीगढ़ जाके कोठी बनानी है, सभी का यही होता था। और कहीं ना कहीं एवरीबॉडी यूज्ड टू लिव और मिस द लाइफ ऑफ पंजाब एंड चंडीगढ़, या इंडिया की लाइफ को मिस करते थे, और ये भी कहते थे कि एक बार जब यहाँ पे परिवार शुरू हो जाता है तो आप यहाँ फंस जाते हो, फिर आप निकल नहीं पाते यहाँ से। अपने पिताजी से

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे। इस समय आप हैं विविध भारती चंडीगढ़ के संग एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम सुहाना सफर।

0: फैक्ट्री वो प्रेम कहानी शुरू हो गई. बस वो एक डेस्टिनी है. नाउ वी हैव टू किड्स एंड वी आर मैरिड फॉर 13 मोर इयर्स.
1: सुप्रीत सिंह जी, ये तो थी वो बातें जो आपने पिछले प्रोग्राम में हमारे साथ शेयर की. उनके कुछ अंश हमने अपने श्रोताओं को सुनवाए. आपने जैसे बताया कि आपने थिएटर भी दोबारा शुरू कर दिया है, जो उसके बारे में थोड़ा बताइए, कौन कौन से लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं और किस तरह से आप एक अच्छा थिएटर जो है वो लोगों के सामने पेश कर रहे हैं.
0: सर, मेरे बेटे का नाम है रुद्रवीर और डॉटर का नाम है कायरा. तो हमने जब नाम रखना था तो हमने रुद्र कायरा प्रोडक्शन रख दिया. सो मेरी वाइफ क्या करती है कि वो शी नोज दैट के वो एक्टिंग का जो कह सकते हैं कीड़ा मेरे अंदर कितना डीप है. सो शी ऑल्सो रिकमेंडेड. एंड जब मैंने प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी शुरू की तो सबसे पहले तो जो भीतर हमारे नॉट्स होती हैं, जो हमने खुद बनाई होती हैं या हम लाइफ जीते जीते जो हम कंपल्सिव एक्शंस करते हैं, वो पहले नॉट्स खुली कि अपने आप को समझना शुरू किया और अपने आप से अलग भी करना शुरू किया, किस क्राफ्ट को समझना शुरू किया. एंड इट इज मेकिंग मी अ बेटर पर्सन. आई फील एवरी डे जब भी मैं कोई परफॉर्मेंस करता हूँ या रिहर्सल करता हूँ या कोई नई वर्कशॉप लगाता हूँ तो आई कम आउट एज अ बेटर पर्सन, सेल्फ से थोड़ा बाहर निकल के. एंड देन जब आप कोई एक कैरेक्टर प्ले करते हैं, जब उस थॉट में जाते हैं, जब वो महसूस करते हैं वो थॉट के उस समय वो क्या महसूस कर रहा है वो कैरेक्टर, आपका ईक्यू लेवल भी और बढ़ाता है. आई फील कि ये एक अनंत समुंदर है एक्टिंग. एक्टिंग को सिर्फ हम ग्लैमर से ना देखें, इसको एक क्राफ्ट की तरह देखें. एंड इट इज प्योर फॉर्म ऑफ मेडिटेशन और मैं उसी तरह ले रहा हूं. और ये तभी मुझे थिएटर में मजा आने लगा और थिएटर तो मैं करता ही रहूंगा, चाहे मैं अब विजुअल मीडियम में भी कुछ चीजें करना चाह रहा हूं और करेंगे भी, बट थिएटर तो एक प्योर फैशन बन गया. आउट ऑफ फ्रेम के जरिए मैं भी बहुत अलग अलग तरह के इमोशंस जी पाया हूं उस कैरेक्टर के थ्रू. तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर थिंग्स जो भी फ्यूचर में चीजें होंगी.
1: बिल्कुल, आपने फ्यूचर की बात की तो फ्यूचर में कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आपके चाहने वाले जिसका इंतजार कर रहे हैं, चाहे वो टीवी में हो, चाहे फिल्म में हो या थिएटर में हो या पॉडकास्ट में हो?
0: सर, पॉडकास्ट में अभी हमने एक थोड़ा डॉक्यूकास्ट सीरीज शुरू की है जिसमें हम थोड़ा सा हमारे स्टूडियो से बाहर निकल के पॉडकास्ट कर रहे हैं. मेरी एक ही शर्त होती है, जिद होती है कि अनस्क्रिप्टेड करना है, वो मेरी टीम पूरा मानती है. बट एट द सेम टाइम वी डू रिसर्च. हम अलग अलग जगह जाके कर रहे हैं और अलग अलग चीजें कवर कर रहे हैं. और मैं खुद चीजें दिखाना चाह रहा हूँ कि बीइंग एन इंडियन के जो हमें प्राइड दे कि एज एन इंडियन ऑल्सो. और एक ये भी कोशिश होती है कि हमारे अंदर एक पेट्रियटिज्म होना चाहिए कि हम सब एक हैं और एक दूसरे की स्टोरी से हम इंस्पायर हों. और बहुत स्टोरीज हैं सर हमारे आसपास ही स्टोरीज हैं. आपकी कितनी इंस्पायरिंग स्टोरी है? तो मुझे तो मौका मिला, मैं तो इस ओपन मोड से सीधा आपसे दरख्वास्त करूंगा. तो आप अगर मेरे पॉडकास्ट में गेस्ट आएंगे तो इट विल बी अ प्लेजर फॉर मी.
1: बिल्कुल जरूर.
0: तो ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ एक ओटीटी आई एम राइटिंग, तो वो कोशिश है कि अगले साल तक उसको किसी तरह हम लेकर आएं. थोड़ी डिफरेंट टाइप ऑफ राइटिंग, ओरिजिनल राइटिंग्स पे हम वर्किंग कर रहे हैं. प्लस चीजें सर, प्लेज अभी एक और प्रोडक्शन हम बनाएंगे थिएटर की, मोस्ट प्रोबेबली कॉमिकल होगी ये क्योंकि सीरियस आउट ऑफ फ्रेम. बट अभी आउट ऑफ फ्रेम को थोड़ा सा और पूरे हिंदुस्तान में घुमाएंगे.
1: जी बिल्कुल, बहुत से हमारे युवा भी ये प्रोग्राम सुन रहे होंगे. तो अगर कोई युवा एक्टर या पॉडकास्टर या फिर एक सफल उद्यमी आपकी तरह बनना चाहता है तो क्या टिप्स देंगे?
0: सर अभी तो ऑनेस्टली आई फील माय जर्नी इज जस्ट बिगन. तो मैं बस एक ही चीज हर किसी से दरख्वास्त करता हूँ कि ओरिजिनल रहें, खुद से प्यार करें. हम सबसे प्यार कर लेते हैं, खुद से प्यार करना भूल जाते हैं. तो एक वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि दैट सेल्फ लव इज इंपॉर्टेंट. और हम ह्यूमेन हो, जितना हम सेंसिटिव होंगे अपनी आसपास की चीजों को लेकर उतना बेटर करेंगे. और बहुत सिंपल लाइफ है, कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है. हम सीधे रास्ते चल के बड़ी बुलंदियों पे पहुंचेंगे. और हर अच्छी चीज को समय लगता है, वो समय देना जरूरी है. ओवरनाइट कुछ नहीं होता. हम जिसको सक्सेसफुल देखते भी हैं वो एक बड़ी लंबी जर्नी होती है, जो आज उसमें ग्लैमर दिख रहा होता है और कुछ नहीं होता, और वो भी ऑनगोइंग जर्नी होती है. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ग्लैमर जरूर हो पर ओवर ग्लैमराइज ना हो चीजें. एंड नॉलेज इज पावर, एंड विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी आती है, तो वो जरूर रखें हम. एक चीज जरूर रखनी चाहिए हर किसी को, एक इंडियन होने की एक प्राइड होनी चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए. हम सिर्फ ये ना हम ज्ञान दें कि यार लिटरिंग क्यों कर रहे हैं, हम खुद भी लिटर ना करें. और अगर कोई कर रहा है तो उसको प्यार से समझाएं. रोड रेज ना करें. रोड रेज हम जानते ही नहीं किसी को, लड़ने हम चले जाते हैं. हमें एक होना होगा तभी हम पूरी दुनिया से भी लड़ पाएंगे. तो वी नीड टू बी वन एज इंडियंस.
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने, एक होंगे तभी हम दुनिया से भी लड़ पाएंगे. तो सुप्रीत सिंह जी, क्योंकि जिस तरह से आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की, क्योंकि जिम्मेदारी बहुत है एक पॉडकास्टर के ऊपर, एक ब्रॉडकास्टर के ऊपर.
0: जी
1: समाज हमें इतना कुछ देता है, नेम देता है.

0: एफएम देता है, तो किस तरह से आप अपनी जिम्मेदारी बतौर पॉडकास्टर निभा रहे हैं, किन किन चीजों का ध्यान आप रखते हैं जब आप पॉडकास्ट करते हैं? तो
1: सर, शब्दांजलि सबसे इम्पोर्टेंट है। हम कुछ भी नहीं बोल सकते, जो भी हम शब्द यूज करें हम ये जरूर ध्यान रखें कि कोई भी सुन रहा हो सकता है एंड उसका कुछ भी इम्पैक्ट पड़ रहा हो सकता है। फॉल्स इन्फॉर्मेशन ना दें, अगर नॉलेज नहीं है तो मत बोलें, लेट द एक्सपर्ट्स डू द टॉकिंग। आपके अगर गेस्ट आ रहे हैं तो उन्हें बोलने दीजिए, आपको अगर नहीं पता चीज का मत बोलिए। फिर उसके बाद सर, वी नीड टू टॉक, पॉजिटिव कॉन्टेंट पे ज्यादा फोकस करें, पॉजिटिविटी की बात ज्यादा करें, सेंसेशनलाइज ना करें चीजों को। वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि पॉजिटिविटी आज नहीं चलेगी पर लंबी देर तक रहेगी, दूर तक जाएगी। वी शुड नॉट ओनली लुक फॉर नंबर्स, वी शुड लुक फॉर इम्पैक्ट। हम इम्पैक्ट पे ज्यादा फोकस करें। वो 10 महीने के जो डिप्लोमा हमें कराया था उसमें बहुत चीजें सिखाई थी सर, उसमें डोंट्स भी बहुत डिटेल में सिखाए थे कि ये बिल्कुल नहीं करना। जैसे फिर ये होता है कि देन यू हैव मोर रिस्पेक्ट फॉर ब्रॉडकास्टर्स लाइक यू, क्योंकि आप वो सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं एंड प्रोटोकॉल्स वो दायरे में अगर आप अच्छा कॉन्टेंट दे रहे हो उससे बड़ी कोई चीज नहीं होती। दैट इज रियल टैलेंट। थोड़ा सा अगेन भाषा पे दोबारा आऊंगा कि भाषा सही रखें।
0: जी बिल्कुल सुप्रीत सिंह जी, आपसे बातचीत का सिलसिला हम यूं ही जारी रखेंगे। यहाँ पर आपकी पसंद का एक गीत आपको और अपने सुनने वालों को सुनवाना चाहेंगे, तो कौन सा गीत सुनवाएं?
1: सर मोटिवेशनली सॉन्ग है, एक भाग मिल्खा भाग का।
2: जिंदा है तो प्याला पूरा।

0: गीत के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय आकाशवाणी चंडीगढ़ से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुहाना सफर आकाशवाणी के संग, और आज इस कार्यक्रम में हमारे हम सफर हैं एक्टर, पॉडकास्टर और एक सफल उद्यमी श्री सुप्रीत सिंह। सुप्रीत सिंह जी, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, क्योंकि आप भी कलाकार हैं, आप क्या समझते हैं कि कलाकारों की जिंदगी को कितना बदला है सोशल मीडिया ने?
1: पहले क्या होता था कि बड़े पर्दे पे ही आप आर्टिस्ट को देख सकते थे या टीवी सीरियल आते थे, फिर आया ओटीटी। ओटीटी में क्या हो गया, ईज हो गया, ओरिजिनल प्रॉपर कंटेंट भी और अच्छे एक्टर्स को प्लेटफॉर्म मिलना शुरू हो गया, रेगुलर काम मिलना शुरू हो गया। फिर उसके बाद सर यूट्यूब बढ़ा, यूट्यूब फेमस हुआ, तो यूट्यूब में कई तो पूरी सीरीज अब यूट्यूब पे आ जाती हैं। अ लॉट ऑफ पॉडकास्टर्स केम आउट, अ लॉट ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स केम आउट, आर्टिस्ट अलग अलग तरह के, चाहे वो डांस करते हो चाहे कुछ करते हो, तो इन अ वे एक पॉजिटिव रेवोल्यूशन आया। पर साथ में क्या हुआ सर, क्योंकि उसमें फिल्टर नहीं है, तो एक तरह से वो आजकल वर्ड यूज करते हैं ना क्रिंज कंटेंट, वो बहुत बढ़ गया। जो यंग माइंड्स हैं वो जैसा

0: देखेंगे वो वैसा बनना चाहेंगे, और जब वो देखते हैं कि यार ये ऐसे क्रिंज कंटेंट बना के ज्यादा व्यूज मिल रहे हैं, ज्यादा लाइक्स हैं, ज्यादा शेयर्स हैं। और अब एक ना मैंने पॉडकास्ट किया था सर, उसमें एक चीज उन्होंने बहुत अच्छी बोली कि बहुत अच्छी बात है कंटेंट क्रिएटर बनो, सब कुछ करो, बट फ्यूचर में हमें एक्सपर्ट्स चाहिए होंगे, साइंटिस्ट चाहिए, तो ऐसा ना हो कि वो सारा ब्रेन ड्रेन अब इस तरफ चले जाए कि कहीं ना कहीं ये साइंटिस्ट को ना लगने लग जाए, या फिर डॉक्टर्स को ना लगने लग जाए, या बड़े इंजीनियर्स को ना लगने लग जाए कि यार हमसे पहले तो ये है कि ये तो बस ऐसी डांस वीडियोस बनाते हैं, ऐसी एक्टिंग कर लेते हैं, इनके इतने मिलियन व्यूज हो जाते हैं, ये हमसे ज्यादा पैसे तो ये कमा रहे हैं, बेटर जिंदगी जी रहे हैं, तो छोड़ो ये करते हैं, तो वो एक गलत ट्रेंड शुरू होता है। तो देयर हैज टू बी सम फिल्ट्रेशन, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने किया कि 16 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे ही करें, सिमिलर कुछ ऐसे रूल्स अगर आ जाएं। अभी बात भी चल रही थी, अभी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर वॉज इन ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने एक्नोलेज भी किया और अपलॉड भी किया इस चीज को, अगर कुछ ऐसे अच्छे लॉज आ जाए, क्योंकि देखो सर मुझे नहीं लगता कि जिसने ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बनाए वो खुद इतना देख रहे होंगे जितना हम देखें यूज कर रहे हैं। अगर आप इसे प्रोफेशनली यूज कर रहे हैं, जैसे हम भी पॉडकास्ट डालते हैं, रील्स डालते हैं, सब चीजें करते हैं, बट आई डोंट कंज्यूम इट, मैं सारा दिन नहीं लगा रहता उस पे, मैं उतना देखता हूं जितनी जरूरत होती है, या कोई अच्छा अगर अपने पेज पे भी कुछ के सही हो रहा है नहीं हो रहा, दैट्स इट। अदरवाइज एंड ऑल्सो कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि फॉलो सब्सक्राइब उन्हीं को करो जहां पे अच्छा कॉन्टेंट मिले, नो डाउट कॉमेडी करो, स्टैंड अप कॉमेडियंस को करो, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेम्पररी एंटरटेनमेंट डोंट पल्यूट योर माइंड। माइंड पल्यूट हो रहा है कहीं ना कहीं है, और कहीं ना कहीं आर ब्रेन इज ऑल्सो गेटिंग डी वायर्ड आई वुड से, कि क्या हो क्या रहा है कि जैसे इमोशंस भी कैसे चलते हैं, एक कोई कॉमेडी वीडियो आई तो ग्राफ यहाँ चला गया, फिर अगली कोई आ गई मारकुटाई की वो नीचे चला गया। सर आजकल तो इट इज सो शॉकिंग एज वेल, जैसे एक्सीडेंट्स में किसी को कोई कुचल रहा है, किसी को कोई गन से मार रहा है, वो ऐसी आपके स्क्रोल करते आ जाती है, वो कोई बच्चा भी देख रहा हो सकता, कोई भी, वो आपके माइंड पे कितना इंपैक्ट डालेगा, तो ये एक तरह से आपके माइंड को कंफ्यूज कर रहा है, तो वो एक कहीं ना कहीं एक अलार्मिंग चीज है जो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ मिलके ही एक कुछ कंसेंसस बनाए जिसमें ऐसा ना हो कि वो एक तरह से नॉट एज एन एनार्की, बट जिसमें लोगों को पता चल जाए कि अगर हम अच्छा कॉन्टेंट नहीं डालेंगे या फिर गलत चीजें डालेंगे तो वो अप्रूव ही नहीं होगा, वो जाएगा ही नहीं ऑनलाइन।
1: बिल्कुल आपने सही कहा कि फिल्टर कहीं ना कहीं होना चाहिए, सेंसर जरूर होना चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर आपने खुद देखा होगा कि बहुत सारे वल्गर कॉन्टेंट जा रहे हैं और बच्चे भी देख रहे हैं जाने अनजाने, और जिस तरह से आपने बताया कि कोई एक्सीडेंट हो रहा है उसकी वीडियो, उसकी रील बना के डाल दी जाती है सोशल मीडिया पे, इस तरह का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और खास तौर पर एक जिम्मेदार पॉडकास्टर या एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आप कुछ कंटेंट डालने जा रहे हैं तो किन किन खास चीजों का और ज्यादा ध्यान रखें ताकि हम समझ पाए कि हम कोई भी कंटेंट बनाएंगे या पॉडकास्ट करेंगे तो समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा।
0: सर ओटीटी में तो कोई भी अगर आता है तो उसमें लिखा होता है कि ये एडल्ट कॉन्टेंट है, 13+ है, 16+ है, बट आई एम नॉट श्योर कि कितना वो फॉलो हो पाता है। नो डाउट किड्स का होता है, अगर लॉक लगा दें तो वो चीजें होती है, जैसे वी हैव पुट लॉक्स ऑन ऑल आर जो मेन स्ट्रीम जितने भी हैं, हालांकि वो हमारी डॉटर नाउ शी इज 11 वो डिकोड करती है, पर फिर हम लगा देते हैं, समझ आ जाता है कि ये, बट YouTube पे भी अगर हम फिल्टर लगाने के बाद भी ऐसी चीजें आ जाती हैं विच डोंट मेक एनी सेंस, और फॉल्स सा एक माइंड में इंप्रेशन क्रिएट होता है। एंड कमिंग बैक टू योर ओरिजिनल जो क्वेश्चन है सर, अगर हम पहले अंडरस्टैंड करें ये सोशल मीडिया है क्या, सोशल मीडिया इसलिए बना कि सो दैट यू कैन सोशलाइज थ्रू डिजिटल मीडिया, और साथ में अगर जैसे इंस्टाग्राम है, आपको याद होगा सर एक पहले ऑर्कुट आया था, एक हाई फाइव आया था, ये सब सारे आए थे, तो एक लगा था कि आप कनेक्ट कर सकते हो, पुराने दोस्तों से मिल सकते हो, और कहीं पुराने दोस्त मिले भी उससे, बहुत ऐसे कई रिश्तेदार कनेक्ट हुए
1: बिल्कुल, और फेसबुक पे ढूंढ ढूंढ के रिश्तेदार पहले तो ऐड किए और उसके बाद उन्होंने ढूंढ ढूंढ के ब्लॉक करने शुरू कर दिए लोगों ने। ऐसा भी हुआ,
0: ये भी चीजें हुई है, और वही एक एरा है सर, आई फाइंड दिस इज अ पासिंग एरा। सोशल मीडिया हैज बिकम अ ह्यूज इंडस्ट्री, डिजिटल मार्केटिंग हैज बिकम अ ह्यूज इंडस्ट्री फॉर बिजनेसेस एज वेल। अगर हमें कोई प्रोडक्ट अब प्रमोट करना है तो हम ज्यादा डिजिटल मीडिया पे ही करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग स्क्रोल कर रहे हैं, और वो एल्गोरिदम जैसे इनका होता है, मुझे ऑनेस्टली आज तक समझ नहीं आया, बट जो एल्गोरिदम जिसको समझ आता है दे आर एबल टू जनरेट अ लॉट ऑफ लाइक्स एंड रीच हो जाती है, तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स वेरी गुड, बट एज एज कंज्यूमर्स हमें देखना है कि हम कितना टाइम उस पे लगा रहे हैं, बिकॉज जो चीज फ्री में होती है वो आपका समय खरीद रही है, तो समय सबसे कीमती है इसका मतलब। तो हम अपना अगर समय किसी चीज को दे रहे हैं तो हर किसी को सोचना चाहिए, और हमें सबको अवेयर भी करना है कि आपका समय है, आपको चूज करना है कि किस चीज को देना है। तो वो एक डिस्कशन हैज टू बी वेरी नॉर्मल, एंड ज्यादा से ज्यादा ये बात होनी चाहिए कि समय सबसे कीमती है। अगर

0: है तो फ्री नहीं है, फ्री कुछ भी नहीं होता।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने, फ्री कुछ नहीं होता, लेकिन क्योंकि आप एक सफल उद्यमी भी हैं, बिजनेसमैन हैं, तो अगर हम स्टार्टअप की बात करें या उद्यमी बनने की बात करें, तो क्योंकि बहुत से लोग चाहते हैं कि वो भी अपना काम शुरू करें कुछ, तो किस तरह से वो शुरुआत करें ताकि वो भी एक सफल व्यवसायी बन सके।
0: एंटरप्रेन्योरशिप पिछले कुछ सालों में काफी प्रमोट हुई है, बट हिंदुस्तान में जो कहते हैं ना बिजनेस करने वाले या दुकानदारी करने वाले लोग, तो कई सालों से है, इसमें ग्लैमर आ गया है, तो इसलिए हर कोई स्टार्टअप करना चाह रहा है। स्टार्टअप बहुत अच्छी चीज है, अगर आप इनोवेटिव आइडियाज लाते हो, ग्लोबल सॉल्यूशंस दे सकते हो, तो आपको अच्छी फंडिंग मिलती है और आप स्केल पर कर पाते हो।
1: बिल्कुल, सरकार की तरफ से काफी मदद होती है।
0: जी जी, सरकार की तरफ से भी है, देन वेंचर कैपिटलिस्ट भी है, कई एंजल फंड्स भी है। मैं स्टार्टअप में भी इन्वॉल्व रहा हूँ, तो थोड़ा जानता हूँ कि कहीं ना कहीं जो राइट आइडियाज हैं उनको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म और बूस्ट मिल जाता है, क्योंकि जैसे पहले मुझे भी दिक्कत आई थी, एक इकोसिस्टम नहीं था, तो स्टार्टिंग में बिजनेस में बहुत दिक्कत आई थी कि किसके पास जाऊं, कहां से सीखूं, वो इकोसिस्टम बहुत अच्छा बन गया है। बट हम एंटरप्रेन्योरशिप को नहीं प्रमोट कर रहे। एंटरप्रेन्योर एक कंपनी में एक या दो हो सकते हैं, पर कंपनी को चलाते सब मिलके हैं, तो एंटरप्रेन्योर जो कंपनी के एम्प्लॉइज हैं, जो टीम है, जो हायर किए गए हैं, वो मिलके बनाते हैं, तो उसको भी हाईलाइट साथ साथ करना चाहिए। स्टार्टअप इज एन अमेजिंग थिंग, बट हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारे स्टार्टअप फेल कितने होते हैं, मतलब ऑलमोस्ट वो 90-95% का वो रेशियो है, वो क्या रीजन है, क्योंकि जब फंडिंग मिलती है लोगों को लगता है ये वो अपना पैसा नहीं होता, वो लौटाना होता है, क्योंकि जो आपको पैसा दे रहा है वो आपसे ज्यादा समझदार है। बट वहां पे यही ध्यान रखना है कि हमें वैल्यूएशन की गेम तरफ नहीं जाना, वैल्यू क्रिएशन की तरफ जाना है, क्योंकि अल्टीमेटली बिजनेस का मतलब होता है प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिट तो होना ही चाहिए कहीं ना कहीं।
1: बिल्कुल,
0: आज नहीं तो 2 साल बाद, 2 नहीं तो 5 हद से हद। अब ऐसा तो नहीं हो सकता 20 साल तक आप ऐसे ही चलाओ, नो डाउट वो भी बिजनेसेस हैं, कुछ ऐसे बने, बट वो नंबर बहुत कम है। तो काम करना है, चाहे छोटा काम करो, चाहे 1 लाख रुपए से काम शुरू करो, बट वो काम ऐसे करो कि स्टार्टिंग में मेहनत पूरी करनी पड़ेगी। आप शॉर्टकट नहीं है, और ऐसा नहीं है कि आपको पैसा मिल जाएगा, आप सीधा बिजनेस क्लास ट्रैवल शुरू कर दोगे, आप वो सब चीजें कर लोगे। सो आई थिंक एक इस पे भी ओपन डिस्कशन जरूरी है कि जो ट्रेडिशनल हमारे बिजनेसेस हैं उसमें भी अगर इनोवेशन की जाए, या अगर जो सेकेंड थर्ड जनरेशन बिजनेस ओनर्स हैं वो पिछली जनरेशन ऐसा इकोसिस्टम उन्हें दें कि वो उसमें भी इनोवेशन कर सकें, तो और बड़े होंगे बिजनेस, जो स्वदेशी है बढ़ सकता है हमारे यहाँ पे।
1: सुप्रीत जी, ग्लोबल आयुष फोरम के आप उपाध्यक्ष हैं, तो थोड़ा उसके बारे में आप बताइए, किन किन बातों पर आप काम कर रहे हैं?
0: सर, स्वदेशी जागरण मंच में स्वलंबी भारत अभियान में ग्लोबल आयुष फोरम बना है, तो मैं रिसेंटली ही जुड़ा हूँ, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री से हूँ और फोकस यही है कि आयुष को ग्लोबल करना है। जो हम आयुर्वेदा सिद्ध, यूनानी, होम्योपैथी, जो इंडियन ट्रेडिशनल हमारी साइंसेज हैं, योगा है, नेचुरोपैथी है, वो इंडिया से पूरी दुनिया में जाए, वो कैसे जाए और बेस्ट क्वालिटी जाए। एट द एंड ऑफ द डे हेल्थ केयर एक दुनिया में बर्डन बनता जा रहा है, और हमारे आयुर्वेद में बहुत सोल्यूशन है इसके, या ट्रेडिशनल मेडिसिन में बहुत सोल्यूशन है। तो ग्लोबल आयुष फोरम अभी रिसेंटली ही इसकी शुरुआत की गई है। विजन यही है कि हम इसको आयुर्वेद को पूरी दुनिया में लेके जाए, और कोशिश है कि जो इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन है या जो इसमें एंटरप्रेन्योरशिप करना चाह रहे हैं उनको सही दिशा भी दे सकें कि बेस्ट प्रैक्टिसेस कैसे कर सकते हैं और बेस्ट प्रोडक्ट्स और बेस्ट मेडिसिन कैसे बनाई जा सकती हैं। तो उसमें एक कोशिश है, अभी शुरुआती फेज है, जैसे आगे कुछ करेंगे तो आपको जरूर सर जरूर ये मौका चाहूंगा कि दोबारा हम इस पर बात कर सकें।
1: बिल्कुल, आप इंटरनेशनल आयुर्वेदा रिफॉर्म एसोसिएशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महासचिव भी हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए।
0: IRA चैम्बर ऑफ आयुर्वेदा है सर, इसमें डॉक्टर बातिश भी मेरे साथ हैं, वो भी ही सीनियर आयुर्वेदा डॉक्टर भी हैं, और इसमें भी यही है कि सर इंडस्ट्री रिसर्च और अकेडमिया को इकट्ठे जोड़कर हम आयुर्वेद को कैसे बड़ा कर सकते हैं। अगेन सर, आयुर्वेदा की ब्रांडिंग प्रॉपर होने की जरूरत है पूरी दुनिया में। मैं खुद आयुर्वेद से ठीक हुआ हूँ सर, हालांकि मुझे पता है कि सर सारी साइंसेज इंपॉर्टेंट है, एलोपैथी और जो ट्रेडिशनल साइंसेज है, देखो साइड बाय साइड, एलोपैथी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बिना आप अगर फॉर एग्जांपल कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम आती है तो एलोपैथी अगर ना हो तो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी नहीं होती। बट एट द सेम टाइम वी नीड टू कीप अ बैलेंस बिटवीन द बोथ, हमें अपनी चीजें नहीं भूलनी।
1: जी, आजकल वो कहते हैं ना कि जैन जी का जमाना है। तो आप एज ब्रॉडकास्टर या एज पॉडकास्टर क्या समझते हैं कि जेन जी और हमारी जो जनरेशन है इसमें किस तरह का जनरेशन गैप है, चीजें जो समझने की बात है वो किस तरह से समझी या समझाई जा सकती हैं?
0: मुझे ऐसा लगता है कि जनरेशनल गैप तो जब से दुनिया शुरू हुई है तब से है, अब ज्यादा बात हो रही है। ये जो टर्म है जेन जी, और हमें भी बाद में पता चला कि हम मिलेनियल्स हैं। तो फिर उसके बाद जो मैंने एक प्रॉपर

0: सीरीज की थी, तो जिसमें पता चला कि जो मेरे पेरेंट्स हैं वो बेबी बूमर्स हैं। अब नई जनरेशन है, जेन अल्फा है, जेन बीटा है, तो वो टाइमलाइंस के हिसाब से बनाया कि जो 97 से 2012 तक के हैं लगभग आई थिंक, तो वो जेन जी में आ जाते हैं। सर फर्क है नो डाउट, क्योंकि टेक्नोलॉजी एकदम एडवेंट हुई है और बहुत तेजी से गई है। हम लोग जब बड़े हो रहे थे 90s में या अर्ली 2000s में जब बड़े हुए थे, तो उस समय हम भी जैसे जब रेडियो था तो हमारे लिए ऑल इंडिया रेडियो था सर। उसके बाद लेट 2000s FM दूसरे आए, ऑप्शंस और हुए, डिजिटल मीडिया बढ़ा, तो वो एक फर्क था। तो एक ठहराव था हम में और एक ना चाह थी कुछ करना है, क्योंकि उस समय जैसे स्कूटर वाले को होता था कि गाड़ी लेनी है, छोटी वाले को होता था कि बड़ी गाड़ी लेनी है, या हम देखते थे कि कोई बाहर गया है, यूएस गया, कनाडा पढ़ने, तो हम बाहर जाके कुछ करना है, हमने फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ाना है फैमिली का, या ये सब चीजें होती थी। वो आज की डेट में बाय डिफॉल्ट है, बहुत चीजें फोन्स हो गए या डेटा इंटरनेट ये सब बाय डिफॉल्ट है। एनसाइक्लोपीडिया ढूंढने के लिए वो हम स्टेट लाइब्रेरी चले जाते थे, ऐसे कुछ है कि एनसाइक्लोपीडिया पकड़ते थे वहां से निकालते थे।
1: बिल्कुल, अगर आज के जमाने की बात करें तो AI का जमाना है
0: जी,
1: फिंगर टिप्स पे आपको हर चीज उपलब्ध हो जाती है। उसके बारे में थोड़ा बताएं, AI किस तरह से इंपैक्ट डाल रहा है पॉडकास्टिंग में या ब्रॉडकास्टिंग में या आपके एंटरप्रेन्योरशिप में?
0: सर बहुत, आई वुड से कि हमें समय के साथ इवॉल्व होना चाहिए और हर जनरेशन को पहले तो एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये ऐसे हैं, जो चीज पहले चली है वो भी नहीं चलेगी, फंडामेंटल सेम रहेंगे, फंडामेंटल्स नहीं बदल सकते। जो मैं फेथ का एक प्रिंसिपल फॉलो करता हूं, वो मैं देखे वो हमेशा से इंसानियत के लिए हमेशा वो सेम ही रहेगा। बट AI एक ऐसी चीज है, आप इसे नेसेसरी इविल बोल लीजिए या फिर आप इसे बोल लीजिए कि इट इज अ थिंग विच यू कैन नॉट इग्नोर। एंड आई फाइंड कि अगर AI को सही तरीके से यूज किया जाए तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है, बहुत फास्ट हो जाता है। आज की डेट में सर एडिटिंग हैज बिकम सो इजी, इवन गाने बन जाते हैं। सो इट इज इंपैक्टिंग एज वेल, बट अब ये इवॉल्व हो चुका है तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ चीजों में पीछे रह जाएंगे, हमें जानना सीखना पड़ेगा। अब कुछ चीजों में जैसे मैं भी AI यूज करता हूँ, जो मेरा एक घंटे का काम होता था वो 2 मिनट में हो जाता है। एंड AI भी वही अच्छा यूज कर सकता है जो एक्सपर्ट है, और एक्सपर्ट्स के लिए AI यूज करना और बेटर है, बिकॉज वो रिजल्ट्स बेटर आएंगे, क्योंकि प्रॉम्प्ट आ जाता है। फिर जैसे एजेंट्स बन जाते हैं, AI में असिस्टेंट बन जाते हैं, आप उसे ट्रेन करते हैं। फिर जैसे मेरा भी एक AI असिस्टेंट है, तो वो मुझे रिमाइंडर्स दे देता है, वो उसको पता होता है, वो मेरी पूरी ईमेल खंगाल के दे देता है कि इस ईमेल में से ये इंपॉर्टेंट है, आपको रिप्लाई करना है। वो चीजें थोड़ी आसान हो जाती है, बट यस इट कैन नेवर रिप्लेस अ ह्यूमन। मिथ तभी ब्रेक होंगे जब नॉलेज आएगी, तो इसके बारे में जानना जरूरी है सभी के लिए। जितना हम इसकी नॉलेज लेंगे आई थिंक वो मिथ ब्रेक होंगे, और हुआ ज्यादा है मुझे ऐसा महसूस होता है कभी कभी
1: जी। तो सुप्रीत सिंह जी, पिछले एपिसोड में आपने बात की थी कि आप कनाडा गए और उसके बाद आपको PR भी मिल गई, परमानेंट रेजिडेंट आप बन गए कनाडा के, फिर आप वापस आए। क्योंकि बहुत से युवा जो हैं वो उनके दिमाग में यही रहता है कि हम लोग आगे की पढ़ाई जाके कनाडा में करेंगे या वहां पे सेटल हो जाएंगे। तो क्या आप सोचते हैं कि अपने ही देश में अगर रहकर हम लोग पूरी तरह से मेहनत करें और जज्बे के साथ काम करें तो यहाँ पे बहुत कुछ है सीखने को, समझने को और करने को? तो चलते चलते आप हमारे युवाओं को क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से वो अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं ताकि वो भी सफल शख्सियत बन पाए?
0: सर इंडिया जो आज से 10-15 साल पहले था वो आज नहीं है, हम बहुत तेजी से इवॉल्व हो चुके हैं और अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है यहाँ पे। अगर किसी भी कंट्री में जाना है तो पहले और अब में सर एक फर्क थोड़ा सा है, पहले एक्सपोजर इतना नहीं था, कई बार कुछ रिश्तेदार भी ऐसी चीजें बता देते थे या दोस्त ऐसी चीजें बताते थे जो पूरी सच्चाई नहीं होती थी, और वो वहां जाके पता चलती थी। हम किसी भी जब नए देश जाते हैं तो सबसे पहले तो हमें पूरा कल्चर ही अडेप्ट करना पड़ता है, इट्स नॉट ईजी एट ऑल। तो पहले तो हमें ओपन माइंड के साथ जाना पड़ेगा कि अगर हम जा रहे हैं तो पहले एक साल तो हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, एक तरह से जीरो से आपको पैर पूरे करने पड़ेंगे, क्योंकि वहां पे लाइसेंस भी आपको अलग से लेना पड़ेगा, गाड़ी चलाने का सारे आपके IDs वहां पे बनेंगे, फिर अगर आप घर लेने जाओगे तो घर के वहां पे डिफरेंट स्टाइल है, सब कुछ खुद करना पड़ता है वहां पे। ऐसा नहीं है कि आप जैसे जितनी नॉर्थ अमेरिका में कनाडा हो गया, US हो गया, या इवन बाकी इन कंट्रीज में भी, यूरोप में भी, तो काम खुद करने पड़ते हैं। तो पहले गेज करके जाएं, और मेरी ये राय है कि 12th के बाद ना जाएं, कोशिश करें कि आफ्टर ग्रेजुएशन जाएं, क्योंकि थोड़ी एक मैच्योरिटी आ चुकी होती है, आप थोड़ा सा और आपके दोस्त भी सारे उसके बाद कहीं ना कहीं सेटल होने की तैयारी में होते हैं, तो आपके माइंड में सेटलमेंट होती है कि कुछ करना है, लाइफ में कुछ बनना है, पैसे कमाने हैं, तो उसमें आप सही दिशा में जाओगे। और गो टू द बेस्ट यूनिवर्सिटी, बेस्ट कॉलेज, और बेस्ट तरीके से जाओ। जो बेस्ट तरीके से जाते हैं सर, वो बेस्ट जगह जाते हैं, वो अच्छा करते हैं, चाहे वो रिसेशन हो ना हो, किसी भी देश में हो। ज्यादातर जब भीड़ में जाते हो ना, जो भीड़ में फंस जाते हो, तो जब वो भीड़ छड़ती है तो आप भी छड़ जाते हो, तो ज्यादातर यही होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि एकदम इम्पैक्ट हो गया। बट राइट नाउ मेरा ये मानना है कि बाहर जाने से बेटर है कि

0: एक बार घूमाओ, देखाओ, पूरा गेज करके आओ न्यूट्रल माइंड से। अगर फिर भी लगता है कि जाना है तो जाओ, नहीं है तो वो पैसा जो बाहर लगाना है यहाँ लगाओ और वो अपनी जमीनें कोशिश करो बचा के रखो।
1: जी सुप्रीत जी, आप आकाशवाणी चंडीगढ़ के स्टूडियो में आए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें पॉडकास्टिंग को लेकर, एक्टिंग को लेकर और उद्यमियता को लेकर आपने हमारे श्रोताओं के साथ शेयर की, हमारे साथ शेयर की। स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद सर, एंड मैं ऑल इंडिया रेडियो का और आपका मैं शुक्रिया करना चाहूंगा कि एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव आप लेकर आए हैं, बहुत इनोवेटिव इनिशिएटिव है एंड ये एक लीडिंग बाय एग्जांपल है। तो ऑल इंडिया रेडियो इज एक तरह से कह सकते हैं कि भीष्म पितामह है हमारे भारत के रेडियो का और ब्रॉडकास्टिंग का। मेरे लिए तो सबसे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है और हमेशा रहेगी, क्योंकि हम तो बड़े ही ऑल इंडिया रेडियो को सुनते हुए हैं। ये आकाशवाणी का चंडीगढ़ केंद्र है, ये तो लाइन एक ऐसी है जो आपकी बहुत फेमस है सर, ये आकाशवाणी का चंडीगढ़ केंद्र है।
1: तो आपको अगर आकाशवाणी चंडीगढ़ में ब्रॉडकास्टिंग का मौका मिले तो थोड़ा सा वो सैंपल हमारे सुनने वालों को आप बताइए।
0: जी हाँ, मैं हूँ सुप्रीत सिंह, मौसम सुहाना है और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का चंडीगढ़ केंद्र। धन्यवाद
1: जी सुप्रीत सिंह जी, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू सो मच सर, इट इज अ इमेंस प्लेजर। थैंक यू
1: दोस्तों, आज सुहाना सफर आकाशवाणी के संग कार्यक्रम में हमारे मेहमान थे एक्टर, पॉडकास्टर और एक सफल उद्यमी श्री सुप्रीत सिंह। इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड करने में तकनीकी सहयोग रहा हमारे साथी अरुण बाबा का। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं रमन भगत। अब आज का सुहाना सफर आकाशवाणी के संग कार्यक्रम समाप्त करने की अपने दोस्त रमेश कपूर को इजाजत दीजिए। नमस्कार।
2: सुहाना सफर आकाशवाणी के

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर आकाशवाणी के संग। इस समय आप हैं विविध भारती चंडीगढ़ के संग एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में शाम के 6 बजने वाले हैं और आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार। बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी ने तत्काल प्रभाव से आंदोलन वापस लेने की घोषणा की है। सीजेपी ने कहा कि हमारी सभी तीन मांगे मान ली गई हैं, इसलिए अब जंतर मंतर से लोग शांतिपूर्वक वापस लौट जाएं। नई दिल्ली में सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के बीच तीसरे दौर की वार्ता के बाद सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने इसकी घोषणा की।
1: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
0: केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बताया कि सरकार प्रदर्शनकारियों पर दर्ज सभी मामले वापस लेगी।
2: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा, इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स है और प्रोटेस्टर्स है उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
0: श्री नड्डा ने कहा कि परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए दिए गए सीजेपी के सुझावों पर विचार किया जाएगा।
2: हम एजुकेशन के एग्जामिनेशन के रिफॉर्म्स के लिए जो आपका चार्टर है उस पर हम गहन चिंतन भी करेंगे और आपके डेलीगेशन के साथ बातचीत करके जो कुछ भी हम डेलीबरेट कर सकेंगे वो हम करने का प्रयास करेंगे।
0: इससे पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं और ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सके, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने

0: का निर्णय लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के बाद सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी और परीक्षा रद्द कर दी थी। भारतीय जनता पार्टी ने संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा से कांग्रेस के पीछे हटने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने ये बात कही।
1: कांग्रेस पार्टी से स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि सोमवार को संसद के वर्तमान सत्र का दूसरा सप्ताह प्रारंभ होगा, आप इस समस्या पर और आपके द्वारा जो भी विषय रखे गए जब सरकार संसद में चर्चा करने के लिए तैयार है तो आप सोमवार से संसद की चर्चा में भाग लेंगे अथवा पुनः चर्चा से भागेंगे।
0: श्री त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों का एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक लाभ उठाना है, न कि छात्रों की चिंताओं का समाधान करना। दिल्ली पुलिस ने लोगों को नई दिल्ली क्षेत्र की ओर जाने से बचने की सलाह दी है, क्योंकि पूरे जिले में भारी भीड़ और यातायात जाम देखा जा रहा है। पुलिस ने यात्रियों को निर्देश दिया है कि वे देरी से बचने और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने राजीव चौक, मंडी हाउस, जनपथ और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार खोल दिए हैं। प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बताया है। श्री शेखावत ने कहा कि सारनाथ शांत

0: मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार खोल दिए हैं। प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बताया है। श्री शेखावत ने कहा कि सारनाथ शांति, ज्ञान और करुणा का शाश्वत प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये मानवता के लिए भारतीय सभ्यता के गहन आध्यात्मिक और दार्शनिक योगदान को दर्शाता है। कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में सिंगापुर के कानून मंत्री एडविन टोंग एससी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। श्री मेघवाल ने दोनों देशों के कानूनी सहयोग को मजबूत करने, वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देने और संस्थागत तथा न्यायिक सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। हरारे में भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरे T20 क्रिकेट मैच में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 19 ओवर में 4 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में उनका सामना आज मिस्र की रुकैया सलीम से होगा। अनाहत सिंह जोशना चिनप्पा के बाद इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 107.2 MHz ते आकाशवाणी ते तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: आओ सुनते हैं एक गीत। आपकी कसम फिल्म दाए गीत, किशोर कुमार दी आवाज, आरटी बर्मन दा संगीत।

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਫਿਲਮੀ ਗੀਤ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ FM 107.2 MHz ਤੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਕ ਸਮਾਚਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ 6:10 ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6:20 ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप आशुतोष से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंपा। श्री प्रधान ने कहा उन्होंने विद्यार्थियों के हित में इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम की स्वच्छता, सौंदर्यीकरण और व्यवस्थित शहरी विकास को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। कांग्रेस जनता पार्टी के प्रतिनिधियों ने अपना आंदोलन वापस लेने की घोषणा की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पुन्हाना में आयोजित मेवात विकास संकल्प रैली में मेवात क्षेत्र में करोड़ों रूपयों के विकास परियोजनाओं की सौगात दी। हरियाणा में विशेष गहन पुनरीक्षण के पहले चरण का कार्य पूरा हुआ। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि पिछले 10 से विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं और ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सके और किसी भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में न उलझे, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया। श्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन, विकास और निरंतर सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र सेवा उनके जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और वे इसके प्रति सदा समर्पित रहेंगे। श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के बाद सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी और परीक्षा रद्द कर दी थी। सरकार ने पुनर्परीक्षा की नई तिथि की भी घोषणा की थी। उन्होंने कहा 16 जुलाई को घोषित नीट यूजी के परिणाम संतोषजनक रहे, जिसमें वंचित पृष्ठभूमि के कई मेधावी विद्यार्थियों ने सफलता हासिल की है। श्री प्रधान ने कहा कि सरकार ने अगले वर्ष से इस परीक्षा को कंप्यूटर आधारित मोड में आयोजित करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी, दूरदर्शन, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि गुरुग्राम की स्वच्छता, सौंदर्यीकरण और व्यवस्थित शहरी विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। आज गुरुग्राम में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में श्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि उन्होंने अधिकारियों को शहर की स्वच्छता और सुंदरता पर ध्यान देने के निर्देश दिए हैं।
2: हमने आज इस बात को लेकर के स्पष्ट कहा है कि गुरुग्राम की स्वच्छता, गुरुग्राम के सौंदर्य को लेकर के किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होगा।

0: अधिकारी भी उस बात को सुनिश्चित करेंगे। और हमने ये भी कहा है कि कोई कंस्ट्रक्शन अगर चल रही है, कोई व्यक्ति कहीं पर भी इलीगल तरीके से सीएनडी वेस्ट नहीं डालेगा, उसके वो व्यवस्था करे। अगर कोई सीएनडी वेस्ट कहीं गलत डाल रहा है तो अधिकारी उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे।
1: मुख्यमंत्री ने बताया कि आज की बैठक में कुल 15 परिवाद रखे गए, जिनमें से 13 का मौके पर ही निपटारा किया गया, जबकि 2 मामलों को आगामी बैठक तक लंबित रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों को अगली बैठक में इन लंबित मामलों की स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि बैठक में सीएम विंडो को लेकर भी शिकायत मिली।
0: कुछ समस्याएं सीएम विंडो को लेकर के आई है, उसको लेकर के भी मैंने कहा है कि जो भी सीएम विंडो के ऊपर शिकायत आती है, अधिकारी उसका निवारण सुनिश्चित करे। और अगर, क्योंकि जब मैं स्वयं देख रहा हूँ, किसी की कोई दुर्भावना अगर सीएम विंडो के अंदर नजर आई तो कार्रवाई हो जाए। हमारी ड्यूटी है लोगों की समस्याओं का समाधान करना। सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि सीएम विंडो पर आई जो शिकायतें हैं उनको गंभीरता से लें, उनका निवारण करें, ताकि लोगों को इससे राहत मिले।
1: मुख्यमंत्री ने बताया कि बैठक में नगर निगम मानेसर क्षेत्र के वजीरपुर इनक्लेव की विभिन्न जनसमस्याओं को सुना गया। इनका संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को कॉलोनी की समस्याओं का संयुक्त रूप से सर्वेक्षण कर प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे YouTube चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। केंद्र सरकार द्वारा मांगे मान लिए जाने के बाद कांग्रेस जनता पार्टी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के साथ तीसरे दौर की बातचीत की, जिसमें परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर चर्चा की गई। बाद में नई दिल्ली से सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ एक संयुक्त पत्रकार वार्ता में श्री नड्डा ने कहा कि बैठक के दौरान सरकार ने सीजेपी की इन मांगों को मान लिया कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और न ही उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज की जाएगी। यदि कोई एफआईआर दर्ज की गई है तो उसे वापस ले लिया जाएगा और एफआईआर की प्रतियां भी उपलब्ध कराई जाएंगी। आत्महत्या करने वालों को मुआवजा देने के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार पूरी सहानुभूति रखती है और नियमों व विनियमों के अनुसार अधिकतम मुआवजा देना सुनिश्चित करेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज नूह के पुन्हाना में आयोजित मेवात विकास संकल्प रैली में मेवात क्षेत्र के लिए करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी और कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पुन्हाना की ये धरती एक नए युग की शुरुआत की साक्षी बन रही है। वर्षों तक उपेक्षा झेलने वाले मेवात ने अपनी नई पहचान बना रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा,
2: साथियों, विकसित भारत का रास्ता ये दिल्ली से चंडीगढ़ होकर के नहीं जाता, बल्कि विकसित भारत का रास्ता हमारे पुन्हाना, फिरोजपुर, झिरका, हमारे तावड़ू, हमारे नगीना और हमारे मेवात के हर गांव से होकर के चंडीगढ़ जाता है। मैं बड़े विश्वास के साथ आज आप लोगों के बीच में एक बात कहने के लिए आया हूँ कि हमारा मेवात विकास की एक नई पहचान बन सकता है, ये अवश्य बनेगा और हम सब मिलकर के इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बदलाव जनता के विश्वास, सहभागिता और डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता का परिणाम है। रैली में बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य सत्ता नहीं बल्कि सेवा है। हर पात्र व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ, हर जरूरतमंद तक सुविधा और हर परिवार तक विकास पहुंचाना ही सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का उल्लेख करते हुए विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पुन्हाना विधानसभा क्षेत्र के लिए पिनगवा या पुन्हाना में विश्वविद्यालय की स्थापना की संभावनाओं का अध्ययन करने के लिए समिति गठित की जाएगी। उन्होंने पुन्हाना नगर पालिका में 16,85,00,000 रुपए की लागत से ऑडिटोरियम एवं बहुउद्देशीय हॉल, 13,75,00,000 रुपए की लागत से खेल स्टेडियम, पिनंगवा खेल स्टेडियम के नवीनीकरण, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम का डिवीजन और सब डिवीजन कार्यालय खोलने की घोषणा की। इसके अलावा बिजली विभाग के 32 कार्यों के लिए 1 करोड़ रुपए, 84 कोस परिक्रमा मार्ग के सौंदर्यीकरण के लिए 1 करोड़ रुपए

0: उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए 2,40,00,000 रुपए देने सहित कई घोषणाएं की। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास ने कहा कि प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण के पहले चरण का कार्य 100% पूरा हो गया है। आज चंडीगढ़ में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अब 31 जुलाई को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की जाएगी, जिसे वेबसाइट के साथ हर जगह प्रकाशित किया जाएगा।
1: जो नेक्स्ट स्टेज हमारी है, जो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिशिंग का है, वो 31 जुलाई 2006 हम आपका पब्लिश करेंगे। इसमें इस ड्राफ्ट रोल को हर एक पॉलिटिकल पार्टी को हम बूथ लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बीएलओ द्वारा किया जाएगा, और सभी वेबसाइट पे, सीओ वेबसाइट में भी और डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो ईआरओ वेबसाइट में भी पूरा लिंक दिया जाएगा इसका। इसके अतिरिक्त हर एक ऑफिस में, लाइक जैसे पंचायत में भी, जहां भी बूथ है, अर्बन लोकल बॉडीज में एएसडीडी का लिस्ट पेश किया जाएगा। जो भी नाम उसमें और छूटे हैं, कोई भी क्लेम कर सकता है, कोई भी ऑब्जेक्शन कर सकता है।
0: अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंपा। श्री प्रधान ने कहा उन्होंने विद्यार्थियों के हित में इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम की स्वच्छता, सौंदर्यीकरण और व्यवस्थित शहरी विकास को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।

0: घर खर्चे दे पैसे दियो हस्बैंड जी।
1: ए राशन दे 15,000, सब्जियां दे 2,000,
0: ते बिजली दे बिल दे।
1: हुन 0 रुपए की मैं दवा।
0: ओहो भुली गई सी, हुन ता सोलर पैनल लग गए है ना, ता फिर जो बाकी बचे हुए 4,000 ने उसकी शॉपिंग करन चलिए।
1: जरूर, पीएम सूर्य घर मुफ्ती बिजली योजना जुड़ा नहीं, रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। हुन तुसी सरबजीत कौर तो प्रादेशिक खबरां सुनो। पहले इस बुलेटिन दिया खास खबरां। सिक्ख्या मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नू अपना अस्तीफा सौंप दिता है। पंजाब पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करदिया केंद्रीय एजेंसियां दी मदद नाल इंडोनेशिया दे जकार्ता तो पंजाब दे एक भगौड़े गैंगस्टर नू भारत वापस डिपोर्ट कराया है। पंजाब दे सेहत ते परिवार भलाई मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि पंजाब सरकार दा उद्देश हर नागरिक नू अपने घर दे नेड़े ही म्यारी ते मुफ्त सेहत सेवावां उपलब्ध कराना यकीनी बनाउणा है। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनां दौरान पंजाब विच कुछ थावां ते भारी मींह पैण दी उम्मीद जताई है। ग्लासगो विच राष्ट्रमंडल खेडां विच भारत लई पहला तमगा जितदिया चंडू कुमार ने मर्दा दे हैवीवेट पैरा वेटलिफ्टिंग मुकाबले विच कांसी दा तमगा हासिल कीता है। हुण खबरां विस्तार नाल। सिक्ख्या मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नू अपना अस्तीफा सौंप दिता। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच उन्होंने कहा कि वह पिछले 10 दिनों तो विद्यार्थियों के विरोध मुजाहरियां तो पैदा हुई स्थिति तो दुखी ने अते उन्हां लई निजी वकार दा मामला नहीं है। श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नू अपना अस्तीफा सौंपण दा फैसला कीता है तां जो देश विरोधी ताकतां जंतर मंतर अते देश भर विच मौजूदा स्थिति दा फायदा ना उठा सकण अते इह यकीनी बनाया जा सके कि किसी भी विद्यार्थी दा भविख कानूनी पेचीदगियां विच ना फसे। श्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे मार्गदर्शन भरोसे अते निरंतर हमायत लई उन्हां दा धन्नवाद कीता। उन्हें कहा कि देश की सेवा करना उन्होंने जिंदगी विच सब तो वड्डी तरजीह है अते वह हमेशा इस प्रति समर्पित रहेंगे। श्री धर्मेंद्र प्रधान ने यह भी कहा कि उन्होंने पहले दिन तो ही पूरी जिम्मेवारी ली अते स्थिति तो कदे भी पिछे नहीं हटे। उन्होंने कहा कि जिम्मेवार अहुदियां ते बैठे कुछ व्यक्तियों ने रुकावटा पैदा करन अते विद्यार्थियों नू गुमराह करन दी कोशिश की, उन्होंने इस ते डूंगा दुख प्रगट किया है। सूबे विच मुढ़लियां सेहत सेवावां नू होर मजबूत करन दे उद्देश नाल पंजाब दे सेहत ते परिवार भलाई मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने पटियाला देहाती दे विकास नगर नेड़े सोना चौक विखे नवें आम आदमी क्लीनिक दा उद्घाटन कीता। उन्होंने कहा कि सूबे भर विच 100 नवें आम आदमी क्लीनिकां दी शुरुआत नाल हुण पंजाब विच इन्हां क्लीनिकां दी गिणती 1,090 हो गई है। इस मौके संबोधन करदिआं सेहत मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार दा उद्देश इह यकीनी बनाउणा है कि हर नागरिक नू अपने घर दे नेड़े ही

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: नमस्कार, मैं मीनू ऑर्गेन इंडिया के कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार में आपका स्वागत करती हूं। ऑर्गेन इंडिया दिल्ली की एनजीओ पराशर फाउंडेशन की पहल है, जो अंगदान, उत्तक दान और देहदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने का काम करती है। आज के कार्यक्रम में हम अंगदान से जुड़ी एक बहुत ही खूबसूरत कहानी लेकर आए हैं।
2: आप सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आरजे सागर, आ चुका हूं लेकर के शो जीवन एक अनमोल उपहार। इस प्रोग्राम को आप लोगों तक पहुंचाने का श्रेय जाता है ऑर्गेन इंडिया को। आज का शो वापस से हर एक शो की तरह बहुत खास होने वाला है। हमारे साथ आज हैं डॉक्टर गिरिवर शर्मा जयपुर से। डॉक्टर गिरिवर जो हैं वो एक किडनी रेसिपिएंट हैं और इनको किडनी इनकी वाइफ ने डोनेट की थी। तो एक डॉक्टर की किडनी खराब होती है तो जाहिर सी बात है काफी सारे इनसाइट्स हमें यहाँ पर मिल सकते हैं, काफी कुछ वो टेक्निकल वे में अच्छे से हमें समझा पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपने शो की और सबसे पहले स्वागत करेंगे डॉक्टर गिरिवर शर्मा का। हाय सर, वेलकम टू आवर शो। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू नो अबाउट योर चाइल्डहुड, योर आपका बचपन कैसा सा था, कैसे माहौल में आप बड़े हुए वो थोड़ा सा बताइए।
3: सर मैं बचपन से एक मिडिल क्लास फैमिली से रहा और शुरू से जुझारू था। मेरा शुरू से ये रहा कंसलटेंट बनना है और स्कॉलरशिप मैंने ली, ऑल इंडिया स्कॉलरशिप एग्जाम दिया, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं एक रेजिडेंशियल एंड बोर्डिंग स्कूल, एक बहुत प्रतिष्ठित जो इंस्टीट्यूट था बिरला पब्लिक स्कूल पिलानी, वहाँ से मैंने 12th की पढ़ाई की और उसके बाद मैंने PMT की तैयारी की और जयपुर में, और उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ ऑल इंडिया में और मैंने फाइनली बॉम्बे हॉप किया और PNMC मेडिकल कॉलेज से मैंने MBBS किया था।
2: जी, और आपके परिवार का माहौल कैसा सा था थोड़ा सा वो भी बताइए। मेजरली जो सर हम यहाँ पर जानने की कोशिश कर रहे हैं ना वो ये कर रहे हैं कि समटाइम्स एज अ कॉमन पर्सन हम लोग ना काफी सारी गलतियाँ कर बैठते हैं, तो अगर आपके अनुभव से हम वो सीख पाएंगे या बाकी लोग सीख पाएंगे ताकि किसी ऐसी सिचुएशन को अवॉइड किया जा सके, तो वो वाली चीज यहाँ पर हम जानना चाह रहे हैं।
3: शुरू से एक स्पोर्ट्समैन रहा हूँ सर और बोर्डिंग स्कूल में सारे स्पोर्ट्स खिलाते थे हमें और पीरियडिकली खिलाते थे। शुरू से एक हर चीज एक बैलेंस रही है मेरी, स्पोर्ट्स में भी अच्छा था, पढ़ाई नेटवर्क की दया से मैंने बहुत स्कॉलरशिप्स ली और परिवार ने भी बहुत सपोर्ट किया था और खाना पीना बहुत जैसे कहते हैं देसी और अपना जो इंडियन स्टाइल का है वो मैंने शुरू से लिया। व्यायाम करता था, एक्सरसाइज करता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ऑटोइम्यून डिजीज थी जिसके कारण मुझे भी है अभी 10 साल पहले पता चला।
2: होती क्या है ऑटोइम्यून डिजीज?
3: सर बेसिकली ऑटोइम्यून डिजीज में सर बॉडी की इम्यूनिटी ही बॉडी के खिलाफ काम करती है। मेरे IgA नेफ्रोपैथी थी, उस

0: क्या होता है कि जो किडनी की सेल्स होती हैं, बैसिलर सेल्स वगैरह होती हैं, और उसी के खिलाफ है ना बॉडी की इम्यूनिटी काम करके उसको धीरे धीरे खराब कर देती है। एक जनरल लेमैन की भाषा में यदि इस चीज को समझें तो मुझे लगता है कि जैसे वुड में दीमक लग जाती है, वो धीरे धीरे छेले छेले उस चीज को खत्म करती जाती है, वैसे ही किडनी को या ऑटोइम्यून डिजीज खत्म कर देती है।
1: इसके सिम्टम्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या हम एज अ कॉमन पर्सन?
0: एक्चुअली सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सर, हम जब तक सिम्टम्स और डिजीज और साइन जब तक आने लगते हैं ना, तो किडनी बहुत हद तक खत्म हो चुकी होती है। हमारी बॉडी की खूबसूरती बहुत ये है कि बॉडी बहुत हद तक चीजों को हमें बर्दाश्त करती है, और जब बर्दाश्त करने की क्षमता खत्म हो जाती है और स्ट्रक्चर बहुत खराब हो जाता है, तब उसकी सिम्टम्स प्रेजेंटेशन होता है। तो एक क्योंकि हमारे यहाँ पीरियोडिकल चेकअप का कोई कल्चर नहीं है, तो इसलिए हमें बहुत लेट स्टेज में नॉर्मली ऑटोइम्यून डिजीज पता चलती है।
1: इसका डायग्नोसिस कैसे किया जा सकता है?
0: सर इसका डायग्नोसिस बहुत सिंपल है। अब जैसे मेरे किडनी की थी तो रेगुलर किडनी फंक्शन टेस्ट हो गया, रूटीन जो इन्वेस्टिगेशन है पीरियोडिकली साल में एक बार तक कम से कम करवाना चाहिए। ओल्ड एज में मुझे लगता है कि दो साल में दो बार भी होना चाहिए। फीमेल का रेगुलर स्क्रीनिंग होनी चाहिए। स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट मसला है जिसमें हम बहुत अर्ली डायग्नोसिस किसी भी चीज को कर सकते हैं। सिम्टम्स के आने के पहले ही यदि स्क्रीनिंग हो जाएगी और उसमें यदि हमें पता चल जाएगा क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, यूरिया बढ़ रहा है, तो उसमें जो सिम्टम्स हैं वो आएंगे, उसके पहले ही हम उसके प्रिवेंटिव मेजर्स या उसके ट्रीटमेंट के बारे में सोच सकते हैं।
1: परफेक्ट। सो बेसिकली आप कह रहे हैं कि अपनी बॉडी की जांच कराते रहें, हेल्थ को मॉनिटरिंग करते रहें। ओके, इसको चलिए हम एक एक्सेप्शन के तौर पे रखते हैं, एक ऑटोइम्यून डिजीज आपको थी। इसके अलावा कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं नॉर्मली जो लोग करते हैं जिसकी वजह से किडनीज हमारी खराब हो सकती
0: है? कॉमन मिस्टेक जो हम लोग करते हैं ना, तो हमारी एक्सरसाइज नहीं होती, खाना पीना आजकल बिल्कुल चेंज हो गया है। अर्ली स्टेजेस में आजकल MI के अटैक आ रहे हैं, CAD कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं, किडनी से फंक्शंस डिरेंज हो रही है, क्योंकि जैसे मैं किडनी पेशेंट हूँ और उसी के कारण मेरा है ना ये खराब हुआ। जैसे हम फास्ट फूड खाते हैं, नॉर्मली पिज्जा खाते हैं, उसमें अजीनोमोटर होता है, ये इट इज वेरी बैड फॉर द किडनी। जो हम फास्ट फूड खाते हैं दिस इज अ जंक फूड, दिस इज वेरी बैड फॉर आवर हेल्थ। एक्सरसाइजेस बिल्कुल कम हो गया है, लाइफस्टाइल बिल्कुल सेडेंटरी हो गया है, खाने पीने में इतना इंटॉक्सिकेशन है, मतलब अडल्ट्रेशन है, ये सब चीजें अल्टीमेटली है ना हमारी हेल्थ, हमारे जो एसेंशियल वाइटल ऑर्गन्स हैं उस पर बहुत इफेक्ट डालता है। तो मुझे लगता है कि है ना हमारी लाइफस्टाइल जो हमारे बुजुर्गों की हुआ करती थी उसको हमें फॉलो करना चाहिए। अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठना, लेट तक नहीं जागना, जल्दी सोना, सुबह एक्सरसाइज करना, खाना बिल्कुल नेचुरल वे में खाना, दही छाछ वगैरह, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिसे हम नकारते हैं। और जितना हम एक्सटर्नलाइज फूड की तरफ जा रहे हैं जैसे पिज्जा बर्गर या फास्ट फूड, ये हमारी हेल्थ के लिए मुझे लगता है बहुत खतरनाक है।
1: बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। एक और सवाल यहाँ पर है सर मेरा, ब्यूटिफिकेशन एक ऐसा ट्रेंड बन चुका है हमारे बीच में, लार्जर देन लाइफ, जहाँ पर अपने जीवन से ज्यादा हम मूल्य इस चीज को देते हैं कि हम दिख कैसे रहे हैं। सोशल मीडिया के इस कल्चर में बहुत सारी ऐसी गलतियां लोग कर बैठते हैं ब्यूटिफिकेशन के चक्कर में, डॉक्टर से पूछे बिना दवाइयां खानी शुरू कर देते हैं, इररिलेवेंट सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं।
0: सर इससे मेरा एक बहुत सुंदर कमेंट रहेगा, क्योंकि मैं खुद क्लिनिशियन हूँ और प्रैक्टिस माइंडेड हूँ और प्रैक्टिस करता हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे ये मैसेज जरूर कन्वे करना चाहिए सभी के लिए। प्लीज डोंट मेक योरसेल्फ टू योर डॉक्टर, डोंट बी अ डॉक्टर ऑफ योरसेल्फ, दिस इज द वर्स्ट थिंग वी आर डूइंग, है ना। कि दर्द हो रहा है ठीक है कुछ खा लिया, दर्द पेन किलर खा लिए, ये सेल्फ मेडिकेशन है ना सर इंडियन कल्चर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। कुछ भी हुआ कुछ दवाई ली ओवर द हेड काउंटर्स, और वो अल्टीमेटली हमें पता ही नहीं होता किडनी कब शट डाउन हो जाती है, कब किडनी फंक्शंस को इतना खराब कर देती है ये सेल्फ मेडिकेशन, तो अल्टीमेटली पता ही नहीं चलता। सर एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ, मैं ऑर्थोपेडिक्स प्रैक्टिस करता हूँ सर। नॉर्मली ओल्ड एज में सर हिप का अपने ADN होता है, ये वास्कुलर नेक्रोसिस, जिससे पूरा जो इसका हेड होता है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, फिर TKR करना पड़ता है सर। तो मेरी प्रैक्टिस में मैंने देखा है सर रिसेंटली 18 से 35 ईयर्स के बच्चे, आप देखिए 18 से 35 ईयर्स के बच्चे सिर्फ अपने ब्यूटिफिकेशन के लिए, अपनी बॉडी अच्छी रहे वैसा दिखे वो अच्छा दिखे, वो जिम जाते हैं, जिम में उसको ट्रेनर्स इतने मिसलीड करते हैं कि वो पाउडर्स खाते हैं जिसमें स्टेरॉइड होता है, और दैट स्टेरॉइड कॉजेज व्हाट इज कॉल्ड द एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द हेड, अल्टीमेटली इट हैज टू गो इनटू द टोटल हिप रिप्लेसमेंट। और इस एज में यदि 35 ईयर्स ऑफ एज में भी टोटल हिप रिप्लेसमेंट होएगा जिसका एज 10 to 15 years होता है, आप इमेजिन करिए सर उसकी लाइफ क्या होगी एट द एज ऑफ 55, तो उसके पास वो ऑप्शन नहीं होगा रिविजन का इतना अच्छा। तो अल्टीमेटली ये ब्यूटिफिकेशन जो आपने बात कही ना सर, तो इसमें सबसे बड़ा ये सेल्फ मेडिकेशन और अनऑथराइज मेडिकेशन जो होता है उसके कारण बॉडी बहुत खराब होती है।

0: स्पेशली इसका बहुत फर्क पड़ता है, पर अल्टीमेटली हम बहुत बड़े चैलेंज को फेस करने वाले हैं हेल्थ के रिलेशन में सर।
1: जी अभी हाल फिलहाल मैं कुछ रिसर्च कर रहा था तो मेरे सामने एक नया आया, नया जिसको काफी हाइप किया जा रहा है, ग्लूटाथायोन। खाना शुरू कर दिया है बिना किसी डॉक्टर से पूछे लोगों ने, सिर्फ इसलिए कि आपकी स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ जाए, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे। बहरहाल डॉक्टर यूनिवर, अभी तक हमने जाना है आपके ट्रांसप्लांट फेज के बारे में, आपकी अर्ली लाइफ के बारे में, अब बताइए पोस्ट ट्रांसप्लांट आपकी लाइफ कैसी है, कैसा है वो फैसला, और आपकी वाइफ की लाइफ कैसी है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है।
0: सर बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और मुझे ये क्वेश्चन हरदम बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है इसलिए क्योंकि मैं अब यही क्वेश्चन सबको कहता हूँ, इसी का ही आंसर देता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ। सर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को नया जीवन दिया है मेरी वाइफ ने, अपनी किडनी देखे उस जीवन में है ना बहुत रंग है। पहले जो सिर्फ मैं एक क्लिनिशियन हुआ करता था जो अपने खुद के लिए सोचता था, अब मेरे को मैं बहुत सारे सोशल वर्क से जुड़ा हुआ हूँ, अपना प्रैक्टिस भी करता हूँ, सोशल वर्क भी करता हूँ, घूमता भी हूँ, सोसाइटी में मैसेजेस भी कन्वे करता हूँ, तो मुझे लगता है अब मेरी लाइफ बेहतर है पहले से। सर मुझे लगता है कि अब जीवन में जीने का मजा है जिसमें सारे रंग हैं। यस सर, आई एम सो थैंकफुल टू द गॉड, आई एम सो थैंकफुल टू माय वाइफ हु हैज डोनेटेड हर किडनी टू मी एंड गिवन द सेकंड लाइफ टू मी।
1: एंड हाउ इज हर लाइफ, आपकी वाइफ के जीवन कैसा चल रहा है?
0: बहुत बढ़िया सर। सर एक बहुत खूबसूरत चीज मेरे साथ जुड़ी हुई है जिसको मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ।
1: प्लीज।
0: मेरे फादर इन लॉ लिम्का बॉक्स ऑफ एशियन, ही वाज द लॉन्गेस्ट सर्वाइवल किडनी रिसिपिएंट टिल लास्ट ईयर, 47 इयर्स डाउन द लाइन, एंड ही वाज द मोटिवेटर फॉर ऑल द किडनी पेशेंट अराउंड। तो मेरे फादर इन लॉ सर वो रिकॉर्ड रखते थे, और इसमें मेरी वाइफ ने वो दौर देखा है क्या ट्रॉमा होता है, तो वो बहुत जल्दी इस चीज को समझ ली उन्होंने, वो जो उनको डॉनर थे उनके बड़े भाई साहब थे, उनकी उनकी लाइफ भी देखी, आज भी ही इज वेरी एक्टिव, कोई खास फर्क नहीं पड़ता सर, शी इज लिविंग अ वेरी हेल्दी लाइफ।
1: तो आपके तो घर में एक अच्छा खासा एग्जांपल आपके ससुर जी रहे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो यही कहना चाहता हूँ सर
1: जी,
0: कि डोनर्स को कुछ नहीं होता, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ होती है। हमारे एक मेडिकली मैं एक फैक्ट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, आफ्टर 3 मंथ सेकेंड 70% ऑफ द वर्क ऑफ द बॉडी ऑफ द बोथ द किडनी इज टेकन ओवर बाय द सिंगल किडनी विच इज देयर इनसाइड द डोनर्स बॉडी। एक बहुत खूबसूरत फैक्ट है, और एक साल तक वो जो एक ही किडनी रह जाती है वो इतनी हाइपरट्रॉफीड हो जाती है और फंक्शनली इतनी एक्टिव हो जाती है कि वो दोनों किडनी का काम कर लेती है। तो कुछ भी नहीं होता डोनर को सर, तो हमें ऑर्गन डोनेशन करते वक्त बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए कि मेरी लाइफ पे क्या असर पड़ेगा, भगवान ने इतनी अच्छी मैनेजमेंट किया हुआ है कि इसमें दूसरी किडनी एक स्टेपने की तरह दी है, तो हमें बहुत इस चीज को प्रोपोगेट करना चाहिए, डरना नहीं है, किडनी डोनेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोनर इज माय वाइफ इज लिविंग अ वेरी हेल्दी लाइफ, सो आई मस्ट से प्लीज डोनेट ऑर्गन, प्लीज सेव लाइफ,
1: प्लीज टेक एटलीस्ट टेक अ प्लेज। सर कोई भी ऐसी चीज जो मैं ना पूछ पाया हूँ और आप कहना चाहते हो प्लीज फील फ्री।
0: सर मुझे लगता है कि सभी को है ना प्लेज ही नहीं लेना चाहिए, यू मस्ट कम फॉरवर्ड for the organ donation drive. We are going, sir, हम धन्यवाद करते हैं ऑर्गन इंडिया को जो हमें हरदम मोटिवेटेड रखता है सर, बिकॉज ऑफ द ऑर्गन इंडिया एंड फॉर माई स्पॉन्सर्स मैक्लाइड फार्मा, आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। एंड सर सबसे खूबसूरत बात है कि हम दो रेसिपिएंट्स मैक्लाइड के द्वारा स्पॉन्सर्ड होकर वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम ड्रेसडन में इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं सर, ये हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती है। हम प्रेरित करना चाहते हैं वहाँ जाके सभी नॉर्मल लोगों को, वहाँ जाके हम वर्कशॉप भी करना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं नॉर्मल लोगों को कि देखिए हम वर्ल्ड लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आफ्टर ट्रांसफर यू आर लिविंग अ नॉर्मल लाइफ। थैंक यू ऑर्गन इंडिया, इट्स वंडरफुल वर्क यू हैव डन।
1: थैंक यू सो मच सर। दोस्तों आज हमने डॉक्टर ग्रीवर से बात करी और उम्मीद कर रहा हूँ जितनी भी गुफ्तगू हमारी हुई है इसमें काफी कुछ आपको समझ में आया होगा, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हो सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं। यू ऑल मस्ट कम फॉरवर्ड क्योंकि एक बहुत बड़ा कॉज है और कोई अकेला इंसान इसको नहीं फुलफिल कर सकता है, इसके लिए हमें जरूरत है आप सबकी। हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.organindia.org, आप जाइए चेक करिए, प्लेज फॉर्म साइन करिए एटलीस्ट, और जानिए इस कॉज के बारे में। ऑर्गन डोनेशन का मतलब ये नहीं है कि आज आपने बोल दिया तो आपके ऑर्गन्स निकाल दिए जाएंगे, ये उससे कहीं गुना ज्यादा बड़ी एक चीज है जो 8 लोगों को नया जीवन दान दे सके, लेकिन इसके बारे में पहले आपको पता होना चाहिए। सर अब इसी के साथ अपने शो को हम खत्म कर रहे हैं, तहे दिल से शुक्रिया यहाँ पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।
0: थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, हाईली ऑब्लाइज्ड, आपने मुझे समय दिया, थैंक यू वेरी मच,
1: थैंक यू सो मच। दोस्तों अब इसी के साथ इजाजत दीजिए, फिर लौटेंगे लेकर एक और शो, लेकिन तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, खैरियत से रहें। नमस्कार, दिस इज आरजे सागर साइनिंग।
2: फिर लौटेंगे ऑर्गन इंडिया के कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार में। दोस्तों अंगदान से जुड़ी

0: अधिक जानकारी के लिए आप ऑर्गन इंडिया की वेबसाइट organindia.org पर जा सकते हैं या उनके टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-120-3648 पर संपर्क कर सकते हैं। अंगदान के बारे में आप अपने परिवार को जरूर बताएं और अपने आसपास सबको प्रेरणा दें।
1: Brought to you by TVS Credit, easy loans for all your needs.

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: धन्यवाद। नमस्कार।
2: रेडियो कार्यक्रम संबंधी अस्वीकरण द ऑर्गन, ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क, पराशर फाउंडेशन तथा रेडियो स्टेशन, उसके मालिक, कर्मचारी, प्रबंधन, प्रायोजक एवं सहयोगी, जिन्हें यहां सामूहिक रूप से हम कहा गया है, वार्ता कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ताओं या उनके अतिथियों द्वारा दी गई किसी राय अथवा वक्तव्य की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते।
3: सुन रहे थे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम ऑर्गन इंडिया। असी आकाशवाणी दे चंडीगढ़ केंद्र तो बोल रहे हैं FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ ते।
4: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है, घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करने लई स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलदा है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस ते करे हर काम एकदम तेजी नाल। यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा च ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो। शर्तां लागू।
5: हाँ, ये हेलमेट अच्छा है, सेफ है क्या?
6: चिंता मत कीजिए, इस हेलमेट पर ISI मार्क है।
5: और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये असली है?
6: BIS केयर ऐप से, जहाँ आपको ये इम्पोर्टेंट डिटेल एक ही क्लिक में मिल जाएगी।
7: बनिए जागरूक ग्राहक और कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी प्रामाणिकता चेक करने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
3: श्रोतियों, हम तो कुछ ही पलां च तुसी सुनोगे विविध भारती मुंबई तो अगला प्रोग्राम विशेष जयमाला।
8: नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में।
9: साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने उसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल हो गई तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज, बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, किसे दिखाऊं।
10: कि मैं तन मन की सुध बुध गावां बैठी।
8: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी।
11: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं देव दर्शन धूप अगरबत्ती, धूप स्टिक्स, कोन्स और हवन सामग्री।

0: सर्वोत्तम क्वालिटी, देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, कॉर्न व हवन सामग्री।
1: फौजी भाइयों की सेवा में आज का ये विशेष जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं जाने माने भजन गायक अनूप जलोटा।
2: फौजी भाइयों को अनूप जलोटा का नमस्कार।

आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे गाने सुनाने जा रहा हूं जो मुझे बहुत प्रिय हैं और मुझे विश्वास है कि आप लोगों को भी बहुत पसंद आएंगे। आप ऐसे माहौल में बैठे हैं जहां हर पल आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और इस कठिनाइयों से अगर मन को थोड़ा दूर करना हो, मन को थोड़ा हटाना हो, तो एक बड़े ही अच्छे एंटरटेनमेंट की जरूरत पड़ती है। तो मैं आपको पहला गाना ऐसा सुनाने जा रहा हूं जो आज का सबसे ज्यादा पॉपुलर गाना है, कजरारे कजरारे, मुझे भी बहुत प्रिय है। लीजिए आप भी सुनिए।

और जी भाइयों, आप हमारे देश के लिए अपने जीवन की कुर्बानी देते हैं, आपके चरणों को छूने की इच्छा होती है। जब भी कभी आर्मी के लिए अवसर मिलता है गाने का, तो हम अपने को धन्य समझते हैं। और ये वो देश है जो सच में सोने की चिड़िया है। तभी तो सारे संसार का इस ओर ध्यान है, सारे संसार की नजर, हर देश की नजर हमारे देश के ऊपर है। मेरे देश की धरती सोना उगले।

जी भाइयों, मन्ना डे साहब का एक गाना मुझे बहुत पसंद है। इस गाने से एक और बड़ा काम हुआ था कि प्राण साहब जो विलन का काम किया करते थे, इस गाने का कुछ ऐसा असर हुआ, उन्होंने इस पर जो एक्टिंग की थी कि उसके बाद वो एक बहुत अच्छे कैरेक्टर आर्टिस्ट बन गए, शरीफ रोल अदा करने वाले इंसान बन गए। कस्मे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों।

0: तेरा।
1: विशेष जयमाला कार्यक्रम का शेष भाग आपको सुनवाएंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, धूप स्टिक्स, कोन्स और हवन सामग्री।
3: सुबह जलाओ, शाम जलाओ,
4: देव दर्शन धूप।
3: सुबह जलाओ, शाम जलाओ,
4: देव दर्शन धूप।
5: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
6: लिखा भी कमाल है, कुमार सानू जी ने इसे बहुत अच्छा गाया है। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा।

फौजी भाइयों, मैं किशोर कुमार साहब का बहुत बड़ा फैन हूं। बचपन से उनके गाने गाता रहा हूं। एक गाना उनका जो गूंजता रहता है कानों में, चिंगारी कोई भड़के, आइए इसे सुनते हैं।

0: विशेष जयमाला कार्यक्रम का शेष भाग आपको सुनवाएंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
1: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
2: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
1: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
2: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
2: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
1: आकाशवाणी चंडीगढ़।

0: दोस्तों, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती चैनल और इस वक्त प्रसारित हो रहा है कार्यक्रम विशेष जयमाला। आज का ये विशेष जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं जाने माने भजन गायक अनूप जलोटा।
1: फौजी भाइयों, एक ऐसे सिंगर को मैं आपके सामने आज पेश करना चाहता हूँ जिनकी आवाज सुन के लगता था जैसे 100 आवाजें एक साथ गा रही हो, जैसे एक ऑर्गन बज रहा हो। हेमंत कुमार साहब, न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा कि मेरा हमदम मिल गया। न तुम

मिल गया। फौजी भाइयों, मदन मोहन साहब एक कमाल के कंपोजर हुए हैं और सोने में सुहागा लता जी की आवाज, इन दोनों ने मिलकर ऐसा ऐसा काम किया है जो हमेशा याद रहेगा।

फौजी भाइयों, मैं आपको एक अपना भजन जरूर सुनाना चाहूंगा इस कार्यक्रम में, क्योंकि इसी भजन से मेरी पहचान बनी। कई बार होता है मैं कहीं जा रहा हूं और पीछे से कोई ये भजन गुनगुना के मेरा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन

तो ये था आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम। इसे प्रस्तुत किया जाने माने गायक भजन सम्राट अनूप जलोटा ने। ये रिकॉर्डिंग हमें प्राप्त हुई विविध भारती के संग्रहालय से।

0: विविध भारती मुंबई तो हुने तुसी सुन रहे सी प्रोग्राम विशेष जयमाला असी आकाशवाणी दे चंडीगढ़ केंद्र तो बोल रहे एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज ते
1: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हम सफर एफएम 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़
0: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों तक
1: घर घर जन जन तक चंडीगढ़ के साथ साथ देश के 5 राज्यों तक पहुंचने वाला चंडीगढ़ का एकमात्र रेडियो चैनल
0: आपका अपना एफएम 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़
1: जो चंडीगढ़ के साथ साथ

0: पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यूपी और उत्तराखंड में बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
1: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान।
2: ना वो अखियां रूहानी कहीं, ना वो चेहरा नूरानी कहीं।
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ दुनिया के हर कोने में पहुंचाए आपका ब्रांड।
2: जग घूमे आधार जैसा ना कोई।
1: तो देर क्यों जनाब, अपने कारोबार की एडवर्टाइजमेंट बुक करवाएं।
0: चले आएं आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846, चंडीगढ़ का एसटीडी कोड है 0172
1: और हमारा ईमेल आईडी है akashwani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी चंडीगढ़।
3: आकाशवाणी चंडीगढ़ तो हुन पेश ने मुख प्रदेशक खबरां। केंद्र सरकार वल्लों मंगा मनन तो बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया। केंद्रीय सिख्या मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं अपना अस्तीफा सौंप दिता। श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि उन्होंने अस्तीफा देने का फैसला इसलिए किया ता जो देश विरोधी ताकतां जंतर मंतर अते देश भर विच मौजूदा स्थिति का फायदा न उठा सकन अते किसी भी विद्यार्थी का भविख कानूनी पेचीदगियां विच न फसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी ते मन की बात प्रोग्राम विच भारत अते विदेशां दे लोकां नाल अपने विचार सांझे करनगे। हरियाणा विच विशेष तीबर सोध SIR दा पहला पड़ा पूरा हो गया। ड्राफ्ट वोटर सूची 31 जुलाई नूं जारी कीती जावेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम दी सफाई, सुंदरीकरण अते योजनाबद्ध शहरी विकास नूं सरकार दीआं प्रमुख तरजीह दस्सिया। श्री नायब सिंह सैनी ने अज नू दे पुनहाणा विच रैली दौरान मेवात खेतर लई कई ऐलान कीते। पिनगवा जां पुनहाणा विच यूनिवर्सिटी स्थापित करन दी संभावना दा अध्ययन करन लई इक कमेटी बनाई जावेगी। ट्रांसपोर्ट मंत्री अनिल विज ने अंबाला तो मथुरा वृंदावन लई सीधी AC बस सेवा दी शुरुआत कीती। बस सवेरे 5:30 बजे रवाना होवेगी। 28 तो 30 तरीक तक पंजाब, हरियाणा अते चंडीगढ़ विच कई थावां ते हल्की तो दरमियानी बारिश होण दी संभावना जताई गई। मौसम विभाग ने अज कुछ थावां ते अते कल कुछ थावां ते बारिश होण दा अनुमान लाया। एसन हुण तक दियां मुख प्रदेशक खबरां। असी आकाशवाणी दे चंडीगढ़ केंद्र ते बोल रहे हैं FM 107.2 MHz ते। श्रोतों पेश कर रहे हैं दलेर मेहंदी दी आवाज़ कुछ पंजाबी गीत।

0: हवा महल में आज हमारी श्रृंखला सुनो कहानी।
1: दोस्तों, हवा महल कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला सुनो कहानी। सुनो कहानी में आइए आज सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी पिसनहारी का कुआं। ये है इस कहानी का पहला भाग, स्वर अमरकांत दुबे का।
2: गोमती ने मृत्यु शैया पर पड़े हुए चौधरी विनायक सिंह से कहा, चौधरी मेरे जीवन की यही लालसा थी। चौधरी ने गंभीर होकर कहा, इसकी कुछ चिंता न करो काकी, तुम्हारी लालसा भगवान पूरी करेंगे। मैं आज ही से मजदूरों को बुलाकर काम पर लगा देता हूं। देव ने चाहा तो तुम अपने कुएं का पानी पियोगे। तुमने तो गिना होगा कितने रुपए हैं। गोमती ने एक क्षण आंखें बंद करके बिखरी हुई स्मृति को एकत्र करके कहा, भैया मैं क्या जानू कितने रुपए हैं, जो कुछ है वो इसी हांडी में है। इतना करना कि इतने में ही काम चल जाए, किसके सामने हाथ फैलाते फिरोगे। चौधरी ने बंद हांडी को उठाकर हाथों से तौलते हुए कहा, ऐसा तो करेंगे ही काकी, कौन देने वाला है। एक चुटकी भीख तो किसी के घर से निकलती नहीं, कुआं बनवाने को कौन देता है। धन्य हो तुम कि अपनी उम्र भर की कमाई इस धर्म काज के लिए दे रही हो। गोमती ने गर्व से कहा, भैया तुम तो तब बहुत छोटे थे, तुम्हारे काका मरे तो मरे, हाथ में कौड़ी भी न थी, दिन दिन भर भूखी पड़ी रहती। जो कुछ उनके पास था वो सब उनकी बीमारी में उठ गया। वो भगवान के बड़े भक्त थे, इसीलिए भगवान ने उन्हें अपने पास जल्दी बुला लिया। उस दिन से आज तक तुम देख रहे हो कि किस तरह दिन काट रही हूं। मैंने एक एक रात में मन मन भर अनाज पीसा है बेटा, मन मन भर। देखने वाले अचरज मानते थे, न जाने इतनी ताकत मुझ में कहां से आ जाती थी। बस यही लालसा रही कि उनके नाम का एक छोटा सा कुआं गांव में बन जाए। नाम तो चलना चाहिए ना, इसीलिए तो आदमी बेटे बेटी को रोता है। इस तरह चौधरी विनायक सिंह को वसीयत करके उसी रात को बुढ़िया गोमती परलोक सिधार गई। मरते समय अंतिम शब्द जो उसके मुख से निकले वो यही थे, कुआं बनवाने में देर न करना। उसके पास धन है ये तो लोगों को अनुमान था, लेकिन 2000 है इसका किसी को अनुमान न था। बुढ़िया अपने धन को ऐब की तरह छिपाती थी। चौधरी गांव का मुखिया और नियत का साफ आदमी था, इसलिए बुढ़िया ने उससे ये अंतिम आदेश किया था। चौधरी ने गोमती के क्रियाकर्म में बहुत रुपए खर्च न किए। जो ही इन संस्कारों से छुट्टी मिली, वो अपने बेटे हरनाथ सिंह को बुलाकर ईंट चूना पत्थर का तखमीना करने लगे। हरनाथ अनाज का व्यापार करता था। कुछ देर तक तो बैठा सुनता रहा, फिर बोला, अभी 2-4 महीने कुआं न बने तो कोई बड़ा हर्ज है। चौधरी ने

करके कहा, हर्ज तो कुछ नहीं, लेकिन देर करने का काम ही क्या है। रुपए तो उसने दे ही दिए, हमें तो सैंत में यश मिलेगा। गोमती ने मरते मरते जल्द कुआं बनवाने को कहा था। हरनाथ बोला, हाँ कहा तो था, लेकिन आजकल बाजार अच्छा है। 2-3 हजार का अनाज भर लिया जाए तो अगहन पूस तक सवाया हो जाएगा। मैं आपको कुछ सूद दे दूंगा। चौधरी का मन शंका और भय के दुविधा में पड़ गया। 2 हजार के कहीं 2.5 हजार हो गए तो क्या कहना।

तू? हरनाथ ने तड़प कर कहा, घाटा क्या हो जाएगा, कोई बात है? मान लो घाटा हो गया तो? हरनाथ ने उत्तेजित होकर कहा, ये कहो कि तुम रुपए नहीं देना चाहते, बड़े धर्मात्मा बने हुए हो। अन्य वृद्ध जनों की भांति चौधरी भी अपने बेटे से दबते थे। कातर स्वर में बोले, मैं ये कब कहता हूं कि रुपए न दूंगा, लेकिन पराया धन है, सोच समझ कर ही तो उसमें हाथ लगाना चाहिए ना। बनेज व्यापार का हाल कौन जानता है, कहीं भाव और गिर जाए तो? अनाज में घुन ही लग जाए, कोई मुद्दई घर में आग ही लगा दे, अरे सब बातें सोच लो अच्छी तरह। हरनाथ ने व्यंग्य से कहा, इस तरह सोचना है तो ये क्यों नहीं सोचते कि कोई चोर ही उठा ले जाए या बनी बनाई दीवार बैठ जाए, अरे ये बातें तो होती ही हैं। चौधरी के पास अब और कोई दलील न थी। कमजोर सिपाही ने ताल तो ठोकी, अखाड़े में उतर पड़ा, पर तलवार की चमक देखते ही हाथ पांव फूल गए। बगलें झांक कर चौधरी ने कहा, तो कितना लोगे? हरनाथ कुशल योद्धा की भांति शत्रु को पीछे हटता देखकर बफर कर बोला, सबका सब दे दीजिए, 150 रुपए लेकर क्या खिलवाड़ करना है। चौधरी राजी हो गए। गोमती को उन्हें रुपए देते किसी ने न देखा था, लोक निंदा की संभावना ही न थी। हरनाथ ने अनाज भरा, अनाजों के बोरों का ढेर लग गया। आराम की मीठी नींद सोने वाले चौधरी अब सारी रात बोरों की रखवाली करते थे। मजाल न थी कि कोई चूहिया बोरों में घुस जाए। चौधरी इस तरह झपटते थे कि बिल्ली बिहार मान लेती। इस तरह 6 महीने बीत गए। पौष में अनाज बिका, पूरे 500 रुपए का लाभ हुआ। हरनाथ ने कहा, इसमें से 50 रुपए आप ले लें। चौधरी ने झल्ला कर कहा, 50 रुपए? अरे क्या खैरात ले लूं? किसी महाजन से इतने रुपए लिए होते तो कम से कम 200 रुपए सूद के होते, तो मुझे 2-4 रुपए कम दे दो वो चलेगा। हरनाथ ने ज्यादा बदबड़ाव न किया, 150 रुपए चौधरी को दे दिए। चौधरी की आत्मा इतनी प्रसन्न कभी ना हुई थी। रात को वो अपनी कोठरी में सोने गया तो उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि बुढ़िया गोमती सामने खड़ी मुस्कुरा रही है। और चौधरी का कलेजा धक धक करने लगा। वो नींद में न था, कोई नशा न खाया था। गोमती सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। हाँ, उस मुरझाए हुए मुख पर एक विचित्र स्फूर्ति थी। कई साल बीत गए। चौधरी बराबर इसी फिक्र में रहते कि हरनाथ से रुपए निकाल लूं, लेकिन हरनाथ हमेशा ही हीले हवाले करता रहता था। उस साल में थोड़ा सा ब्याज दे देता था, पर मूल के लिए 1000 बातें बनाता था। कभी लेने का रोना था, कभी चुकते का। हाँ, कारोबार बढ़ता जाता था। आखिर एक दिन चौधरी ने उससे साफ साफ कह दिया कि तुम्हारा काम चले या डूबे मुझे परवाह नहीं है, इस महीने में तुम्हें अवश्य ही रुपए चुकाने पड़ेंगे। हरनाथ ने बड़ी उड़नघाइयां बताई, पर चौधरी अपने इरादे पर जमे रहे। हरनाथ ने झुंझलाकर कहा, कहता तो हूं कि 2 महीने और ठहरिए, माल बिकते ही मैं रुपए दे दूंगा। चौधरी ने दृढ़ता से कहा, तुम्हारा माल कभी ना बिकेगा और न तुम्हारे 2 महीने कभी पूरे होंगे, मैं आज रुपए लेकर ही रहूंगा। हरनाथ उसी वक्त क्रोध में भरा वहां से उठ खड़ा हुआ और 2000 रुपए लाकर चौधरी के सामने जोर से पटक दिए। चौधरी ने कुछ झेप कर कहा, रुपए तो तुम्हारे पास थे, और क्या बातों से रोजगार होता है? हरनाथ ने कहा, तो मुझे इस समय 150 रुपए दे दो, बाकी 2 महीने में दे देना, अब सब आज ही तो खर्च ना हो जाएंगे। हरनाथ ने ताव दिखाकर कहा, आप चाहे खर्च कीजिए चाहे जमा कीजिए, मुझे रुपयों का काम नहीं। दुनिया में क्या महाजन मर गए हैं जो आपकी धौंस सुनूं? चौधरी ने रुपए उठाकर एक ताक पर रख दिए। कुएं की दाग बेल डालने का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। हरनाथ ने रुपए लौटा तो दिए थे, पर मन में कुछ और मंसूबा बांध रखा था। आधी रात को जब घर में सन्नाटा छा गया तो हरनाथ चौधरी की कोठरी की चूल खिसकाकर अंदर घुसा। चौधरी बेखबर सोए थे। हरनाथ ने चाहा कि दोनों थैलियां उठाकर बाहर निकल जाऊं, लेकिन जो ही हाथ बढ़ाया उसे अपने सामने गोमती खड़ी दिखाई दी। वो दोनों थैलियों को दोनों हाथों से पकड़े हुए थी। हरनाथ भयभीत होकर पीछे हट गया, फिर ये सोचकर कि शायद मुझे धोखा हो रहा।

0: उसने फिर हाथ बढ़ाया, पर अब की वो मूर्ति इतनी भयंकर हो गई कि हरनाथ एक क्षण भी वहां खड़ा न रह सका। वो भागा पर बरामदे में ही अचेत होकर गिर पड़ा। हरनाथ ने चारों तरफ से अपने रुपए वसूल करके व्यापारियों को देने के लिए जमा कर रखे थे। चौधरी ने आंखें दिखाई तो वही रुपए लाकर पटक दिया। दिल में उसी वक्त सोच लिया था कि रात को रुपए उड़ा लाऊंगा, झूठ मूठ चोर का गुल मचा दूंगा तो मेरी ओर संदेह भी ना होगा। पर जब ये पेशबंदी ठीक ना उतरी तो उस पर व्यापारियों के तकादे होने लगे। वादों पर लोगों को कहां तक टालता, जितने बहाने हो सकते थे सब किए। आखिर वो नौबत आ गई कि लोग नालिश करने की धमकियां देने लगे। एक ने तो 300 रुपए की नालिश कर भी दी। बेचारे चौधरी बड़ी मुश्किल में फंसे थे। दुकान पर हरनाथ बैठता था, चौधरी को उससे कोई वास्ता न था, पर उसकी जो साख थी वो चौधरी के कारण। लोग चौधरी को खरा और लेन देन का साफ आदमी समझते थे। अब भी यद्यपि कोई उनसे तकाजा न करता था पर वो सबसे मुंह छिपाते फिरते थे। लेकिन उन्होंने ये निश्चय कर लिया था कि कुएं के रुपए न छूंगा चाहे कुछ आ पड़े। रात को एक व्यापारी के चपरासी ने चौधरी के द्वार पर आकर हजारों गालियां सुनाई। चौधरी को बार बार क्रोध आता था कि चलकर मूछें उखाड़ लूं, पर मन को समझाया, हमसे मतलब ही क्या है, बेटे का कर्ज चुकाना बाप का धर्म नहीं है। जब भोजन करने गए तो पत्नी ने कहा, ये सब क्या उपद्रव मचा रखा है। चौधरी ने कठोर स्वर में कहा, मैंने मचा रखा है? अरे और किसने मचा रखा है, बच्चा कसम खाते हैं कि मेरे पास केवल थोड़ा सा माल है, रुपए तो सब तुमने मांग लिए। पत्नी ने कहा, चौधरी मांग न लेता तो क्या करता, हलवाई की दुकान पर दादा का फातिहा पढ़ना मुझे पसंद नहीं है। पत्नी ने कहा, ये नाक कटाई अच्छी लगती है क्या। चौधरी बोला, तो मेरा क्या बस है भाई, कभी कुआं बनेगा कि नहीं, 5 साल हो गए। पत्नी फिर बोली, इस वक्त उसने कुछ नहीं खाया, पहली जून भी मुंह झूठा करके उठ गया था। चौधरी बोला, तुमने समझा कर खिलाया नहीं है? अरे दाना पानी छोड़ देने से तो रुपए ना मिलेंगे। पत्नी बोली, तुम क्यों नहीं जाकर समझा देते। चौधरी फिर बोला, मुझे तो इस वक्त बैरी समझ रहा है। पत्नी ने बोला, मैं रुपए ले जाकर बच्चा को दिए आती हूँ, हाथ में जब रुपए आ जाएं तो कुआं बनवा देना। नहीं नहीं नहीं नहीं, ऐसा गजब ना करना, मैं इतना बड़ा विश्वासघात ना करूंगा, चाहे घर मिट्टी में ही मिल जाए। चौधरी बोला, लेकिन पत्नी ने इन बातों की ओर ध्यान न दिया। वो लपक कर भीतर गई और थैलियों पर हाथ डालना ही चाहती थी कि एक चीख मार कर हट गई। उसकी सारी देह सितार के तार की भांति कांपने लगी। चौधरी ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ है, क्या हुआ है, तुम्हें चक्कर तो नहीं आ गया। पत्नी ने ताक की ओर भयातुर नेत्रों से देख कर कहा, चुड़ैल, चुड़ैल वहां खड़ी है।
1: प्रसन्हारी का कुआं, अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी इस कहानी का पहला भाग, वाचन स्वर अमरकांत दुबे का था, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई।
2: सुनो कहानी।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो।
1: बजता है छाया गीत।

0: रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी देर में सुनवाएंगे कार्यक्रम चित्रलोक।

श्रोताओं, गीत आपने सुना फिल्म रंग दे बसंती से, आवाज मोहित चौहान की थी। गीत के बोल प्रसून जोशी के और संगीत ए आर रहमान का। आइए सुनते हैं अब ये गीत।

0: श्रोता, ये गीत आपने सुना फिल्म मेट्रो इन दिनों से। आवाज विशाल मिश्रा की थी। गीत के बोल नीलेश मिश्रा के और संगीत प्रीतम का।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे

अनोखा अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है। घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करने लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जेड़ा समझे तुहाड़ी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस, ते करे हर काम एकदम तेजी नाल। यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो। शर्तां लागू।
1: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदा बहार न

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म पुष्पा 2 से। आवाज़ें जावेद अली और मधुवंती बख्शी की थी। गीत के बोल रकीब आलम और सिजू थुरावूर के, संगीत देवी श्री प्रसाद का।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम

श्रोता, ये गीत आपने सुना फिल्म एक विलन रिटर्न से। आवाज अंकित तिवारी की थी, गीत की रचना की थी मनोज मंतशिर ने और संगीत अंकित तिवारी का।

विविध भारती मुंबई तो हुणे तुसी सुन रहे सी प्रोग्राम चित्रलोक। असी आकाशवाणी दे चंडीगढ़ केंद्र तो बोल रहे FM 107.2 MHz ते। हुण तो कुछ ही पलां च असी आकाशवाणी दे दिल्ली केंद्र तो समाचार रिले करांगे। 8:45 ते तुसी सुनोगे समाचार संध्या।

0: कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। कांग्रेस जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ बातचीत और सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना। उत्तर प्रदेश में सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और हरारे में भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सकें, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के बाद सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी और परीक्षा रद्द कर दी। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री प्रधान का मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री होंगे। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का 10 साल का सफर सार्वजनिक जीवन और विद्यार्थी कल्याण के प्रति आजीवन समर्पण का प्रमाण है। श्री रिजिजू ने देश के शिक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने और लाखों युवा विद्यार्थियों को हर निर्णय के केंद्र में रखने के लिए श्री प्रधान के ईमानदार प्रयासों की सराहना की। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि श्री प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल कार्यान्वयन और अन्य पहलों के माध्यम से भारत की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी ने सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ प्रतिनिधिमंडल की तीसरे दौर की वार्ता के बाद सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने लोगों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की।
2: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
1: श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने की मांग स्वीकार कर ली है।
3: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा, इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स है और प्रोटेस्टर्स है उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
1: नीट यूजी पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार नियमों तथा विनियमों के अनुरूप अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी।
3: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
1: परीक्षा सुधारों पर सीजेपी के 5 सूत्री प्रस्ताव पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने संसद में नीट पेपर

0: क्लीक मुद्दे पर चर्चा से कांग्रेस के पीछे हटने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने ये बात कही।
1: कांग्रेस पार्टी से स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि सोमवार को संसद के वर्तमान सत्र का दूसरा सप्ताह प्रारंभ होगा, आप इस समस्या पर और आपके द्वारा जो भी विषय रखे गए जब सरकार संसद में चर्चा करने के लिए तैयार है तो आप सोमवार से संसद की चर्चा में भाग लेंगे अथवा पुनः चर्चा से भागेंगे।
0: श्री त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों का एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक लाभ उठाना है, न कि छात्रों की चिंताओं का समाधान करना। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार से देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। नई दिल्ली में उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को छात्रों की जीत बताया। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी विजेंद्र कुमार गुप्ता और उसके सहयोगी इंद्रजीत विनय कुमार सिंह को भिवंडी की एक अदालत ने 30 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। दोनों को बिहार के समस्तीपुर से गिरफ्तार किया गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि पेपर लीक माफिया इन्हीं पार्टियों की देन है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पेपर लीक माफिया के खिलाफ सख्त कानून ला रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी करने के बाद नई दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। यात्रा के अंतिम चरण में उन्होंने रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशो डान के साथ व्यापार, निवेश, रक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से व्यापक चर्चा की। बुखारेस्ट में उन्होंने भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत की। राष्ट्रपति ने भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बताया।
2: भारतीय प्रवासी समुदाय एकजुट होकर रोमानिया में भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए। भारतीय IT इंजीनियरिंग स्कॉलर्स, रिसर्चर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स तथा विद्यार्थियों की नई पीढ़ी अब रोमानिया को अपना घर बना रहे हैं। रोमानिया की अर्थव्यवस्था और समाज में अपना योगदान तथा यहाँ भारतीय संस्कृति और मूल्यों के प्रसार के लिए आपके प्रयास आपको भारत का सच्चा प्रतिनिधि बनाते हैं।
0: विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में सिंगापुर के कानून मंत्री एडविन टोंग SC के साथ द्विपक्षीय बैठक की। श्री मेघवाल ने दोनों देशों के बीच कानूनी सहयोग मजबूत करने, वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देने और संस्थागत तथा न्यायिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। सरकार नियमित संवाद और रचनात्मक परामर्श के माध्यम से कर्मचारी संगठनों के साथ जुड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध भारतीय डाक कर्मचारी संघ के 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत के दौरान ये बात कही। डॉक्टर सिंह ने बताया कि लगभग 3 दशकों से लंबित कई पुरानी सेवा संबंधी शिकायतों का समाधान पारदर्शी और कर्मचारी केंद्रित संचालन के माध्यम से किया गया है। रसायन और उर्वरक मंत्री JP नड्डा ने आज नई दिल्ली में लघु उद्योग भारती फार्मा कॉन्क्लेव 2026 का उद्घाटन किया। श्री नड्डा ने कहा कि भारत का फार्मास्यूटिकल सेक्टर राष्ट्र निर्माण का एक प्रमुख स्तंभ है जो नवाचार को बढ़ावा देता है, रोजगार सृजित करता है और सस्ती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश के सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सारनाथ भारत की शाश्वत आध्यात्मिक और दार्शनिक विरासत का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे दुनिया भर के लोग सारनाथ आने और भगवान बुद्ध के आदर्शों से जुड़ने के लिए प्रेरित होंगे। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि सारनाथ मानवता के लिए भारतीय सभ्यता के गहन आध्यात्मिक और दार्शनिक योगदान को दर्शाता है। ओडिशा के पवित्र नगर पुरी में ग्रैंड रोड पर भगवान

0: जगन्नाथ भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा देश विदेश से आए श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पुरी में ग्रांड रोड पर अपने शानदार रथों पर विराजमान भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा आज पवित्र सुना वेश स्वर्ण वेश में बेहद भव्य लग रहे हैं। उन्होंने बेहद खूबसूरती से बने मुकुट, हार, बाजूबंद, झुमके और अन्य पारंपरिक आभूषण पहने हैं। सालाना रथ यात्रा की सबसे भव्य रस्मों में से एक इस

0: कर सकेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
1: लद्दाख में 27वें करगिल विजय दिवस समारोह का पहला दिन आज शाम द्रास स्थित करगिल युद्ध स्मारक पर आयोजित शौर्य संध्या समारोह के साथ संपन्न हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्रास पहुंचे और समारोह में शामिल हुए। समारोह के दौरान रक्षा मंत्री ने करगिल शहीदों के परिजनों को श्रद्धांजलि अर्पित कर ऑपरेशन विजय के वीर योद्धाओं के सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। आकाशवाणी कल करगिल विजय दिवस के अवसर पर पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत करगिल युद्ध के वयोवृद्ध और भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर डीपी सिंह से बातचीत प्रसारित करेगा। कार्यक्रम का प्रसारण कल दोपहर 12:30 बजे 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर होगा। आप इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी ने 1200 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की है। इससे 3000 लीटर से अधिक डीजल की खपत कम हुई है। इस रेलगाड़ी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जुलाई को जींद और सोनीपत के बीच रवाना किया था। ये परियोजना भारतीय रेलवे के नेतृत्व में एक स्वदेशी पहल है। राजस्व खुफिया निदेशालय ने सोने की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 27 किलो से अधिक विदेशी सोना जब्त किया है और 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस सप्ताह देश भर में खुफिया जानकारी के आधार पर कई अभियान चलाए गए। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में कल अत्यधिक वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में भी अगले दो दिन के दौरान तेज बारिश की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कल तेज वर्षा होने की आशंका है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिककाल में सोमवार तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम में बाढ़ से हुई जानमाल की हानि और तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने इस आपदा से प्रभावित सभी लोगों की सुरक्षा और बचाव, राहत और पुनर्वास कार्यों में लगे सभी कर्मियों के कुशल मंगल की कामना की। उन्होंने आश्वासन दिया कि पूरा देश असम के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। और अब बात खेलों की। हरारे में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 90 रन से हरा दिया है। 220 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 18वें ओवर में 129 रन पर सिमट गई। ईशान किशन ने शानदार 81 रन की पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत ने 2-0 की बढ़त बना ली है। अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में उनका सामना आज रात मिस्र की रुकैया सलीम से होगा। अनाहत सिंह जोशना चिनप्पा के बाद इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। कॉकरोच जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ बातचीत और सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना। उत्तर प्रदेश में सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और हरारे में भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: अस्सी आकाशवाणी दे चंडीगढ़ केंद्र तो बोल रहे हैं FM 107।

श्रोता, ये गीत आपने सुना फिल्म आर्टिकल 15 से। आवाज अरमान मलिक की थी। गीत के बोल शकील आजमी के और संगीत अनुराग सेकिया का। आइए सुनते हैं अब ये गीत।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म मन मर्जियां से। आवाज़ें एमी बिर्क और शाहिद मालिया की थी। गीत के बोल शेल के और संगीत अमित त्रिवेदी का।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद।

0: पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
1: और आ गया।
0: एक और आ गया।
2: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
4: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के। 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ

श्रोता, ये गीत आपने सुना फिल्म संजू से। आवाज़ सुखविंदर सिंह और श्रेया घोषाल की थी। गीत के बोल शेखर अस्तित्व के और संगीत विक्रम मोन्ट्रोज़ का।

0: के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर।

0: आज के फनकार
1: सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम बातें करने जा रहे हैं हिंदी फिल्म संगीत संसार के एक विरले म्यूजिक डायरेक्टर की।

ऐसा संगीतकार जिसने बहुत कम फिल्मों में संगीत दिया, लेकिन अपना बड़ा नाम किया और लोगों ने उनको दिल दिया।

संगीत संसार की विडंबना ये है कि यहाँ कामयाब लोगों को तो बहुत लोग याद करते हैं, पर कामयाबी सबको हासिल नहीं होती। बड़ी कामयाबी हासिल करना बहुत कम लोगों के बस की बात होती है। हिंदी फिल्म संगीत के संसार के इंद्रधनुष में बहुत अलग अलग तरह के रंग हैं। उनमें से एक पंजाबी संगीत का रंग है जो फिल्म संगीत को समृद्ध बनाता है। और इसमें एक बड़ा योगदान रहा है जीएस कोहली का। जीएस कोहली का पूरा नाम था गुरशरण जीत सिंह कोहली। उनका जन्म पंजाब में सन 1928 में हुआ था। संगीत में दिलचस्पी थी और कुछ कर गुजरने के लिए उनकी राहें मुंबई तक चली आईं। मुंबई में वो संघर्ष कर रहे थे। ये वो समय था जब भारत आजाद हो चुका था और देश के निर्माण की तैयारियां चल रही थीं। फिल्म जगत भी एक तरह से अपने हौले हौले कदम आगे बढ़ा रहा था। बहुत सारी ऐसी प्रतिभाएं हैं

जो अपनी कामयाबी के दिन का इंतजार कर रही थी। इनमें से एक थे जीएस कोहली और दूसरे थे ओपी नैयर। अब आप सोच रहे होंगे कि जीएस कोहली और ओपी नैयर का क्या कनेक्शन है, तो आपको बता दें कि जिंदगी की राहों में जद्दोजहद करते हुए नैयर मुंबई पहुंचे। मकसद था संगीतकार बनना। संघर्ष करते हुए यूं हुआ कि निर्माता दलसुख पंचोली ने उन्हें मौका दिया फिल्म आसमान में। नैयर जीएस कोहली को जानते थे और उन्होंने फिल्म संगीत संसार में बतौर संगीतकार अपना पहला कदम बढ़ाते हुए असिस्टेंट के तौर पर जीएस कोहली को अपने साथ लिया और बस फिल्म आसमान से जीएस कोहली और ओपी नैयर का जो साथ बना वो लगातार जारी रहा।

आसमान में वैसे तो ओपी नैयर का संगीत था और आसमान के बाद ओपी नैयर धीरे धीरे कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। यहां आपको बता दें कि ओपी नैयर की संगीत टोली में बतौर असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर जीएस कोहली होते थे और ओपी नैयर के अरेंजर हुआ करते थे सेबेस्टियन, जो संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के अरेंजरों में से भी हुआ करते थे। लेकिन सेबेस्टियन ने काम किया ओपी नैयर के साथ भी। अब ओपी नैयर की कामयाबी की इस यात्रा में अगर आप रिदम का हिस्सा देखेंगे तो ये मान लीजिएगा कि इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है जी एस कोहली का।

गोपी नैयर के कुछ कामयाब गानों की झलक आपने सुनी, और ये झलक इसलिए कि इसमें योगदान रहा है बतौर असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर जीएस कोहली का। यहां आपको बता दें कि ओपी नैयर और जीएस कोहली का साथ 1952 में शुरू हुआ और ये 1968 तक चलता चला गया। हालांकि जीएस कोहली स्वतंत्र संगीतकार के रूप में काम करना काफी पहले शुरू कर चुके थे। सन 1960 में उन्होंने पहली बार किसी फिल्म में बतौर स्वतंत्र संगीतकार संगीत दिया। ये फिल्म थी लंबे हाथ। कलाकार थे महमूद और नाज, और इस फिल्म का ये गाना आपने जरूर सुना होगा, मोहम्मद रफी की आवाज।

इसके ठीक बाद निर्माता जीपी सिप्पी ने जी एस कोहली को बतौर संगीतकार मौका दिया। फिल्म थी मिस्टर इंडिया और इसके बाद आई फिल्म फौलाद। ये वो फिल्म है जिसके गाने खूब चले थे। यहां एक नए गीतकार की यात्रा शुरू हुई थी और वो गीतकार थे फारूख कैसर।

1963 में जीएस कोहली के संगीत वाली सबसे कामयाब फिल्म आई। इस फिल्म का नाम था शिकारी। फिल्म शिकारी में लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर का गाया ये गाना आज इतने बरसों बाद भी आपको झूमने पर मजबूर कर देता है। आप इस गाने को सुनकर इतने मगन हो जाते हैं कि आपकी गर्दन थिरकने लगती है। सुनिए फारूक कैसर का लिखा ये गाना और ध्यान दीजिए इस गाने में क्लैप सेक्शन और रिदम पर।

इस फिल्म में मोहम्मद रफी की आवाज में ये रूमानी गाना भी था। इस गाने को सुनते हुए शायद ही कभी हमने ये ध्यान दिया हो कि इसके संगीतकार जी एस कोहली हैं।

और फिर सैक्सोफोन की तरंगों पर सवार होकर आती हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें, शिकारी फिल्म का ये बेमिसाल गाना।

बाद आई चार दरवेश और उसके बाद द एडवेंचर्स ऑफ रॉबिन हुड। सन 1965 में आई ये एक स्टंट फिल्म थी, बी ग्रेड की एक फिल्म, लेकिन इसमें गानों की अच्छी खास

सी गुंजाइश थी। ये वो दौर था जब गीतकार योगेश फिल्म संगीत संसार में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। शुरुआती दौर में योगेश को जीएस कोहली ने गाने लिखने का मौका दिया था और योगेश का लिखा मोहम्मद रफी का गाया ये गाना खूब कामयाब हुआ। यहां एक दिलचस्प बात, इस गाने में योगेश जी लिखते हैं, माना मेरे हसीं सनम तू रश के महताब है, पर तू है लाजवाब तो मेरा कहां जवाब है। दरअसल बात यूं थी कि योगेश जी शुद्ध हिंदी में गाने लिखने में यकीन रखते थे और उन्हें एक चुनौती दी गई थी कि क्या वो उर्दू शब्दों के साथ कोई गाना लिख सकते हैं। योगेश जी ने चुनौती स्वीकार की थी और उन्होंने ये गाना रचा था, माना मेरे हसीं सनम तू रश के महताब।

कोहली के संगीत की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि बतौर अरेंजर उन्होंने जो कमाल ओपी नैयर के रिदम में दिया वो ओपी नैयर के नाम से मशहूर हो गया, उनकी शैली के नाम से मशहूर हो गया। इसलिए जब बतौर स्वतंत्र संगीतकार उन्होंने अपने गाने बनाए तो लोगों ने उन गानों में ओपी नैयर की झलक देखी। लोग ये भूल गए कि जीएस कोहली असल में ओपी नैयर के संगीत के पीछे बैठे असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर हैं, एक अनसंग हीरो हैं, एक ऐसी प्रतिभा हैं जिन्हें उनका मोल नहीं मिला। इसलिए जीएस कोहली के गाने सुनते हुए हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि कहीं ना कहीं नैयर शैली जीएस कोहली की अपनी भी शैली है, कहीं ना कहीं नैयर के गानों में जीएस कोहली का भी पसीना और खून शामिल रहा है, उनकी मेहनत शामिल रही है। अब फिल्म नमस्ते जी का ये गाना सुनिए, साल 1965, आवाजें लता मंगेशकर और मुकेश की। ये गाना अज्जान का लिखा हुआ है।

60 के दशक के मध्य में कुछ और फिल्में आईं जिनमें जीएस कोहली का संगीत था, जैसे नौजवान और संग दिल वगैरह। सन 1969 में आई फिल्म जालसाज, ये जीएस कोहली के संगीत निर्देशन वाली तकरीबन आखिरी फिल्म थी। ये वो दौर था जब ओपी नैयर का जादू भी टूट रहा था। जाहिर है कि जब ओपी नैयर और जीएस कोहली की राहें अलग अलग हो गईं, तो उसके बाद संगीत की एक पूरी शैली नेपथ्य में चली गई। ये वो शैली है जिसे हम ओपी नैयर की मस्त शैली के नाम से जानते हैं, जिसमें ढोलक और तबले का शानदार रिदम है और पंजाबी संगीत की मस्ती है।

25 जुलाई 1996 को जीएस कोहली ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया, आखिरी सांस ली। जीएस कोहली चले गए, पर रह गए उनके गाने जो हमें जिंदगी में राहें दिखाएंगे। कभी हमें रूमानी एहसास से भर देंगे और कभी हमारे भीतर गम का सागर लहराएगा उनके बनाए

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था संगीतकार जीएस कोहली पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

0: सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। बस थोड़ी ही देर में प्रस्तुत होगा छाया गीत, कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वज्रतंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: रिको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: कभी किसी सुनहरे सवेरे में, तो कभी भीड़ के बीच अचानक हुई मुलाकात में, प्यार चुपके से दिल का दरवाजा खटखटा देता है। और जब ये एहसास दस्तक देता है तो साधारण दिन भी खूबसूरत लगने लगता है। वो पहली मुलाकात का पल अपने साथ एक अलग ही एहसास लाता है। वो मुलाकात कुछ खास थी जब पहली बार मिले थे हम। क्या था उस लम्हे में कि धड़कनों ने तेज रफ्तार में आकर कह दिया कि दिल ढूंढ रहा था जिस खास को, वो तुम हो, बस तुम। याद है तुम्हें वो चांद की ठंडी चमकती चांदनी रातें, जब बेहिसाब प्यार लुटाते थे हम एक दूसरे पर। तुम्हारा यूं एक टक देखना और कह उठना कि तुम एक परी सी दिखती हो, इस सारे जहां में बस तुम ही तुम दिखती हो, जिसे सारे दुख सुख कह सकूं, तुम वो एक हमसफर सी दिखती हो।
3: हम

कभी शोर मचाकर नहीं आता, वो तो चुपके से बिन कुछ कहे दिल के किसी कोने में उतर जाता है। पहले एक एहसास बनकर, फिर एक आदत बनकर, और धीरे धीरे पूरी जिंदगी

बन जाती है और कब उसकी मौजूदगी से हर मौसम सुहाना लगने लगता है, जैसे लंबे अंधेरे के बाद सूरज की पहली किरण। उसकी मौजूदगी से मन को एक अजीब सा सुकून मिलता है। उसके साथ बिताया हर पल किसी खूबसूरत कविता की तरह लगता है, जिसमें शब्द कम और एहसास ज्यादा होते हैं। जब कोई दिल के करीब होता है तो उसकी खुशियां और दुख अपने लगने लगते हैं और उसके साथ भविष्य के सपने सजने लगते हैं।

प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि किसी की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेने का नाम है। किसी के इंतजार में वक्त का ठहर जाना, किसी की आवाज सुनकर चेहरे पर मुस्कान आ जाना और बिना कुछ कहे भी एक दूसरे को समझ लेना, यही तो है प्यार की सबसे खूबसूरत भाषा। ये वो एहसास है जिसमें दो दिल अलग होते हुए भी एक दूसरे की धड़कनों को सुन लेते हैं और खामोशियां भी कह उठती हैं कि मेरे दिल की हर धड़कन का नाम तुम हो, क्योंकि अब हर धड़कन में तुम्हारी मौजूदगी महसूस होती है। मेरे हर ख्वाब का मुकाम तुम हो, क्योंकि भविष्य की हर कल्पना में तुम्हारा साथ शामिल है और मेरी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा भी तुम हो, क्योंकि तुम्हारे बिना ये कहानी अधूरी है।

अंतराल के बाद आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं छाया गीत। कोई ऐसा जिसके साथ जीवन जीने का अर्थ समझ आने लगता है, जिसके साथ बिताया हर पल किसी खूबसूरत कहानी की तरह लगता है, जिसमें भावनाएं हैं, सपने हैं, इंतजार है और प्यार की वो गहराई है जिसे शब्द पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सकते। कभी कभी ये डर भी लगता है कि कहीं ये सपना टूट ना जाए, क्योंकि जो चीज दिल के सबसे करीब होती है उसके खोने का डर भी सबसे ज्यादा होता है। लेकिन फिर उसकी एक मुस्कान, उसका एक विश्वास भरा शब्द सारे डर मिटा देता है और दिल फिर से उम्मीदों के आसमान में बेपरवाह सा उड़ने लगता है। और जब जिंदगी को पीछे मुड़कर देखें तो लगता है कि जैसे जिंदगी की हर राह, हर मोड़, हर संघर्ष सिर्फ उस तक पहुंचने के लिए था, जैसे सारी दूरियां, सारे इंतजार और सारी अधूरी दुआएं बस एक उसके मिलने पर आकर पूरी हो गईं।

तुम्हारे मिलने के बाद ऐसा लगा जैसे जिंदगी ने अचानक मुझे अपना लिया हो, जैसे बरसों से बंद पड़ी किसी खिड़की से धूप दबे पांव भीतर चली आई हो। उस पल एहसास हुआ कि कभी कभी एक व्यक्ति का मिल जाना पूरी दुनिया के मिल जाने जैसा होता है। तुम्हारे आने से पहले लोग तो बहुत थे लेकिन कोई अपना नहीं था। सपने तो बहुत थे लेकिन उन्हें साझा करने वाला कोई नहीं था। फिर तुमने मेरी जिंदगी में कदम रखा और हर अधूरा एहसास पूरा होने लगा। अब खुशियां आने की वजह नहीं ढूंढती। तुम्हारी एक मुस्कान दिल को रोशनी से सराबोर कर देती है। तुम्हारी एक आवाज मन के सारे शोर को शांत कर देती है। तुम्हारा साथ ऐसा लगता है जैसे किसी लंबे सफर के बाद मुसाफिर को अपनी मंजिल मिल गई हो।

तुम्हारे साथ बिताया गया कोई भी पल साधारण नहीं होता। तुम्हारी बातों में एक ऐसा जादू है जो थके हुए मन को सुकून देता है, जो बिखरे हुए ख्वाबों को फिर से सजाने का हौसला देता है। कभी कभी तो मन सोचता है कि आखिर प्यार इतना सुंदर क्यों होता है। शायद इसलिए कि वो हमें ये एहसास कराता है कि हम अकेले नहीं हैं, कोई है जो हमारी खामोशियों को समझता है, कोई है जो हमारी मुस्कानों के पीछे छिपी हुई

भावनाओं को पढ़ लेता है और हमारे हर सुख दुख को हमारे साथ बांट लेता है। अगर कोई मुझसे पूछे कि मेरी सबसे बड़ी खुशी क्या है, तो मेरा बस यही जवाब होगा, तुम केवल मेरी कहानी का हिस्सा नहीं हो, तुम ही तो मेरी कहानी की खूबसूरती हो, तुम केवल मेरा सपना नहीं हो, तुम तो मेरी सपनों की ताबीर हो। तुम्हारे मिलने के बाद मुझे किसी और चीज की चाह नहीं रही, क्योंकि प्रेम का सच्चा सुख किसी चीज को पाने में नहीं, बल्कि किसी अपने को पा लेने में होता है।

0: ना बिछड़ेंगे हम पाग पालिया है तुम्हें पाके हम।
1: अपनी दोस्त आरती श्रीवास्तव को छाया गीत समाप्त करने की दीजिए अनुमति। नमस्कार।
2: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रतंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
3: वीको टर्मरिक।

0: प्रजा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही। वीको टर्मर क्रीम मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।
1: विविध भारती मुंबई तो हुणे तुसी सुन रहे सी प्रोग्राम छाया गीत। असी आकाशवाणी दे चंडीगढ़ केंद्र तो बोल रहे एफ एम 107.2 मेगा हर्ट्स ते। हुण पेश ने मुख प्रदेशक खबरां। केंद्र सरकार वल्लों मंगा मनन तो बाद काकरोच जनता पार्टी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया। केंद्रीय सिख्या मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं अपना अस्तीफा सौंप दिता।

लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है। घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करने लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस ते करे हर काम एकदम तेजी नाल। यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो। शर्तां लागू।

0: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए।
1: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
2: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।
3: सुरनल सजी शाम प्रोग्राम का नाम है सुरसां, जिस वेले तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी चंडीगढ़ तो FM 107.2 MHz ते अज दे इस प्रोग्राम विच असी तुहानू सुनवा रहे हैं सतिंदर सरताज दे गाए कुछ गीत। आओ सुनते हैं प्रोग्राम दा अगला गीत।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ तो इस वेले तुसी सुन रहे हो सुरा नाल सजी शाम प्रोग्राम सुर सांझ ते आहुं सुनदे आ सतिंदर सरताज दा गाया ए गीत।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार सेवा के साथ मैं अपर्णा सिंह। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं। उन्होंने कहा कि उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठा सके, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को त्याग पत्र सौंपने का निर्णय लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी और सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री प्रधान का मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से मंजूर कर लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी शिक्षा मंत्री होंगे। उपभोक्ता कार्य, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त

0: सौंपा गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का 10 साल का सफर सार्वजनिक जीवन और विद्यार्थी कल्याण के प्रति आजीवन समर्पण का प्रमाण है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि श्री प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल कार्यान्वयन और अन्य पहल के द्वारा भारत की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी ने सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की तीसरे दौर की वार्ता के बाद सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने लोगों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की।
1: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
0: श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने की मांग स्वीकार कर ली है। नीट यूजी पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार नियमों अनुसार अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी।
2: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
0: परीक्षा सुधारों पर सीजेपी के 5 सूत्री प्रस्ताव पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेगी। सरकार सोमवार को लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षाएं अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सदन के सोमवार के कामकाज सूची में शामिल है। इस विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ये विधेयक पेश करेंगे। प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए ऐतिहासिक पल बताया है। उत्तर प्रदेश के सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने से देश का सांस्कृतिक गौरव और बढ़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। हरारे में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 90 रन से हरा दिया है। जीत के लिए 220 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 18वें ओवर में 129 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: FM 107.2 MHz ते ए आकाशवाणी ते तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र। इस वेले रात दे 11:05 ते 9 सेकंड होए ने। साडी अज दी सभा हुण खत्म हुंदी है। कल सवेरे 5:55 ते तुहाडे नाल फेर मुलाकात होवेगी। तद तक लई सानू दवो इजाजत। जय हिंद।